0: अभी आप सुन रहे थे सुनील कुमार के स्वर में राग भैरव। स्वरंजनी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। कुछ ही बोलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता में सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV कैप डाओ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारतीय नाविकों की जल्द स्वदेश वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों के सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर से होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। यह फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाए।

0: 40 new initiatives and undertaken many electoral reforms, including special intensive revision in the recent months across the country. The Enforcement Directorate, ED, has initiated search operations at 26 places across Delhi, Mohali, Chandigarh, Panchkula and Ludhiana in a case related to Tirupati Infra Projects Private Limited. The operations are being carried out under the Prevention of Money Laundering Act. Reigning world champion D. Gukesh and R. Pragnananda registered victories as India defeated England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. Gukesh and Pragnananda secured wins for India, while Arjun Erigyasi was held to a draw by veteran Michael Adams. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Anantjeet Singh Naruka, Bhavtek Singh Gill and Mehraj Ahmed Khan on winning the bronze medal in the men's ski team event. Sharing a social media post, Mr. Modi noted that their focus and teamwork have been exemplary. He also extended best wishes to them for their future endeavours. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक समय हो चुका है सुबह की 6:10 और पूरे हो चुके हैं लीजिए 24 सेकंड। शुरुआत करते हैं एक नए दिन की ईश्वर के आशीर्वाद और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, जहां सुरों और शब्दों के माध्यम से हम जुड़ते हैं आस्था की उस डोर से जो दिल को सुकून देती है और हमें पूरे दिन के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर देती है। और श्रोताओं, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आजकल गणपति उत्सव की धूम है, आज अंतिम दिन है, तो सबसे पहले इस कार्यक्रम में हम गौरी नंदन विघ्नहर्ता, जो कि सबकी झोली भरने वाले हैं, उन गजानन के चरणों में प्रणाम करते हैं और सुनते हैं उन्हीं का एक खूबसूरत भजन। अनूप चिलोटा जी के स्वर में आप सुन रहे हैं गणेश देवा जी का ये भजन।

अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने श्री गणेश जी की वंदना, उनके आराधना से की। आप भी जानते हैं कि आजकल गणेश जी की धूम, गणेश पूजा, गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में मनाया जा रहा है, उसकी धूम है चारों तरफ। हर कोई बड़े ही प्यार से गणपति बप्पा जी को अपने यहाँ बिठाते हैं और फिर उनका पूरा स्वागत सत्कार कर उनको अपने हिसाब से जितने भी दिन उनको अपने घर पर आमंत्रित करते हैं उसके बाद उन्हें विसर्जित किया जाता है। आज अंतिम दिन है गणेश पूजा का और आज सभी धूमधाम से अपने अपने घर पर, अपने क्षेत्र में गणपति पूजा का आयोजन कर रहे हैं और कई जगह पर आज विसर्जन होगा तो कई जगह पर कल विसर्जन होंगे। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और क्योंकि प्रोग्राम है भक्ति संगीत का वंदना, जी हाँ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम है वंदना, और भक्ति की बात ना हो तो फिर क्या करें क्योंकि फिर बात नहीं बनेगी ना। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आपके साथ है सुषमा और अब हम शांताकारम भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगविधारणम नगण्यम। जी, आप समझ चुके होंगे हम विष्णु भगवान जी की बात कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान जी की आराधना करेंगे अब हम। अगला जो आप भजन सुनेंगे, जो ओम जय जगदीश, ये हमारा अगला हरे, ये आरती है विष्णु भगवान जी की। इस आरती के लिए तो दोस्तों हर घर में ये आरती होती है। जो भी परिवार हैं, जो पूजा करते हैं, विष्णु जी के आराधक हैं, तो जहाँ हर श्वास में उनका नाम हो और हर पल उनका आशीर्वाद होता है और हर पल, और ये जो सुबह सुबह का मौसम है, ऐसे में अगर भगवान विष्णु जी का वंदन करते हैं तो मन को शांति अनुभव होती है और सारा दिन बहुत ही खुश और अच्छे से रहता है। मन खुश रहता है तो दिन भी अच्छे से ही बीत जाता है। तो जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आरती।

0: जिसके रोम रोम में राम है उसका जीवन पावन और हर पथ पर आसान हो जाता है। तो सबके कष्टों को दूर करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आराधना हम सबको करनी चाहिए। कहते हैं ना कि रघुकुल नंदन की का जो नाम है राम राम, ये जीवन और मरण सब बंधनों से दूर करता है, उससे पार पाता हमें करवाता है। और ओम नमो नारायण भगवते वासुदेवाय, अलग अलग नामों से इन्हें याद किया जाता है। जगत के पालनहार, बैकुंठ वासी और हर संकट में ढाल बनकर खड़े होने वाले भगवान नारायण के चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन। अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम के स्वर में अब आप सुनेंगे भगवान नारायण की स्तुति।
1: जय नारायण।
0: कहते हैं कि इनके इनकी कृपा से संसार चलता है और इनके स्मरण मात्र से ही सबका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे पीताम्बरधारी भगवान नारायण का आशीर्वाद हम सबके जीवन में सुख शांति लाए, यही हमारी कामना है। और आनंद लेते हैं इस भजन का।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, और अब बढ़ते हैं हम अगली रचना की तरफ। आप सुनेंगे शब्द भाई बलविंदर सिंह रंगीला के स्वर में। सतनाम वाहे गुरु, जहाँ वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है, ऐसी धन्य गुरवाणी के पावन चरणों में नमन। अमृत वेले की ठंडक, रूह को छूत जाने वाले सुर और शब्दों में छिपा ब्रह्मांड का सच, जो कि एक एक हकीकत को बयां करता और दिल को छू जाता है और हमारा मार्गदर्शन।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब समय हुआ है चिंतन का। चिंतन में आज आप मंत्र योगा के बारे में जानेंगे। वार्ताकार हैं डॉक्टर इंदु शर्मा।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए जानते हैं मंत्र योग के बारे में। जानकारी दे रही हैं डॉक्टर इंदु शर्मा।
2: योग का अर्थ होता है जुड़ना। स्वयं से जुड़ने के लिए साधन रूप से उपनिषदों, योग ग्रंथों में विधियों की बात की गई है। योग शिखो उपनिषद में महायोग के रूप में चार विशेष योग विधियों की चर्चा मिलती है, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग। शिव संहिता में भी प्रारंभिक अभ्यासी निम्न स्तर के साधक के लिए मंत्र योग की साधना बताई गई है। मंत्र योग ध्वनि के माध्यम से योग की साधना है। मंत्र योग, मंत्र का सामान्य अर्थ है मननात त्रायते इति मंत्रः, अर्थात जिसका मनन करने से बंधन मुक्त हो जाते हैं वह मंत्र है। मंत्र योग जप के द्वारा किया जाता है। जब हम किसी मंत्र को बार बार बोलते हैं तो उसे जप कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, वाचिक अर्थात जोर जोर से उच्चारण करना, उपांशु केवल होठों को हिलाते हैं, फुसफुसाहट होती है, मानसिक केवल मन में। ये ही सबसे ज्यादा प्रभावी अभ्यास है। मंत्र रचना के संबंध में बात करें तो मंत्र ब्रह्म की वाणी है। ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लिखे गए, ये अपौरुषीय हैं। ध्यान की उच्च अवस्था में मंत्र दृष्टा ऋषि मुनियों ने ब्रह्म की वाणी वेद की रचना की, जिसमें मंत्र निहित हैं। जिस प्रकार विभिन्न फूलों को विशेष प्रकार से पिरोने पर अलग अलग प्रकार की माला बनती है, उसी प्रकार मंत्र अक्षरों का विशेष गुंथन है, जिसका उच्चारण विशेष तरंगे उत्पन्न करता है, उसी के अनुरूप उसका विशेष लाभ मिलता है। मंत्र अनेक प्रकार के होते हैं। अक्षर के आधार पर ओम नमः शिवाय 5 अक्षर का मंत्र है, शिव का मंत्र है। गायत्री महामंत्र ज्ञान की प्रार्थना है, 24 अक्षर का मंत्र है। ऐसे विस्तृत मंत्र का छोटा रूप भी होता है, जिसको बीज मंत्र कहा जाता है। उसकी शक्ति भी अधिक होती है, जैसे क्रिंग, श्रिंग, रिंग, ऐंग आदि। इसके अलावा लिंग के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, गुणों के आधार पर भी मंत्र के प्रकार होते हैं। मंत्र ध्वनि की शक्ति है, ये भाव शक्ति और शब्द शक्ति पर आधारित है। शब्द सामान्य होते हैं, फिर भी उनका प्रभाव होता है। तो मंत्र तो दिव्य हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी विशेष होता है। मंत्र साधना वाणी का तप है। मंत्र ध्वनि कंपन है और कंपन कभी नष्ट नहीं होता। मंत्र ध्वनि चाहे उच्चारित हो या परा, दोनों में ही कंपन होता है। उच्चारित ध्वनि से उत्पन्न कंपन वातावरण में फैलता है, किंतु यदि ध्वनि जब सूक्ष्म होते होते परा ध्वनि में बदल जाती है

0: तब इसके सूक्ष्म ध्वनि कंपन के प्रभाव से शरीर के सूक्ष्म मर्म स्थलों पर प्रभाव होता है। आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र में लेजर ऑपरेशन, अल्ट्रासाउंड, यह सभी ध्वनि विज्ञान से ही संबंधित हैं। मंत्र योग के माध्यम से हर व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर पाने में सक्षम होता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। चिंतन में आज आपने जाना मंत्र योग के बारे में। वार्ताकार थी डॉक्टर इंदु शर्मा। और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का संगीतमय पाठ, अयोध्या कांड का 58वां भाग, जिसमें आप सुनेंगे

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकती। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

0: चास्मिन् मासरे रविवासरे सप्तविंशति दिनांके उद्घाटिताः भविष्यन्ति। भारतस्य पुरुष बैडमिंटन दलं जापान देशस्य आईची नगरे उपांत्य चक्रे चीन दलेन एकं त्रीणि इत्यंकांतरालेन पराजितम्। अनेन पराजयेन भारतेन कांस्य पदकं प्राप्तं। सहैव भारतस्य पदक संख्या 12 जाता, यस्मिन् एकं सुवर्णं, पंच रजत पदकानि तथा 6 कांस्य पदकानि सन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जनसेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। इनमें से 1170 महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए आरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से महिलाओं और ट्रांसजेंडर को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के अंतर्गत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों का अंतर क्षेत्रीय समूह L69 की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता सुधार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। डॉ. जयशंकर ने कहा कि L69 और C10 के सदस्य संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है और भारत नाविकों की जल्द स्वदेशी वापसी के लिए ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी नाउरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमनिंग तियास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक हासिल किया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7वें दौर में इंग्लैंड को हराया, जबकि महिलाओं ने जर्मनी को करारी शिकस्त दी। कल खेले गए मुकाबले

0: Omani authorities for early repatriation of the Indian seafarers. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the L69 consultative ministerial interaction on UNSC reform along with his St. Lucia counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing. Reigning world champion D. Kukesh and R. Pragananda registered victories as India defeated England 2.5 to 1.5 in round 7 of FIDE Chess Olympiad in Samarkand yesterday. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब समय हो गया है संगीतिका का। संगीतिका में आज आप सुनेंगे प्रतीक श्रॉफ के गाए भजन। आपके साथ सितार पर साथ दे रहे हैं खालिद मुस्तफा। हारमोनियम पर संगति कर रहे हैं दामोदर लाल घोष और तबले पर साथ दे रहे हैं शिवम भारद्वाज।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगीतिका में आज आपने सुने प्रतीक श्रॉफ के गाए भजन। आपके साथ

सितार पर संगति कर रहे थे खालिद मुस्तफा। दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर साथ दे रहे थे और तबले पर संगति कर रहे थे शिवम भारद्वाज। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब श्रोताओं, कैसे हैं आप जी। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सुषमा हाजिर है आपके लिए लेकर प्रोग्राम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करती हूँ कि इस वक्त आप काम जो है आपके उन्हें तो आप निपटा ही रहे हैं, उन्हें कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप हमें ज़रूर सुन रहे होंगे। और बहुत सारे साथी ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी उठे नहीं होंगे, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे साथी हैं जो सुबह सुबह जल्दी जल्दी अभी टिफिन्स पैक कर रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेज चुके होंगे, या फिर बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी कर रहे हैं, अपने दफ्तर भी जा रहे हैं, वहाँ के लिए तैयारियां चल रही हैं, और बहुत सारा काम है, और भी काम दूसरे करने हैं, तो इतने सारे काम करने हैं, थोड़ा सा हम घबरा जाते हैं। कई बार ऐसे लगता है सुबह सुबह है क्यों इतने सारे काम करने पड़ते हैं। और वहीं कुछ साथी होंगे जो बड़े सुकून के साथ अपने सुबह की चाय का मजा ले रहे होंगे। तो सभी साथियों का जो कि भाग दौड़ कर रहे हैं, जो कि हबड़ तबड़ में है, जिन्हें जल्दी से ऑफिस पहुंच रहे हैं, बॉस की डांट नहीं खानी है, और जो बच्चे स्कूल जाने के लिए जा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों के यूनिट टेस्ट भी लगे हुए हैं, इतने सारे काम हैं, क्योंकि बच्चे हैं तो मम्मी पापा भी उनके साथ बिजी हैं, उन्हें उनकी प्रिपरेशन भी करानी है, ये सारे काम सब करने हैं हमें, क्योंकि हमें ही ये सारी चीज़ें करनी है, तभी तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर शांति से हम करेंगे, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लाकर हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को सहारा देंगे, तो इससे बड़ी कोई नए दिन की शुरुआत नहीं हो सकती। तो नए दिन की शुरुआत में बस हम इतना ही कहेंगे कि भाई, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाएं, चाहे दफ्तर हो, घर हो, बाहर हो, आप सड़क में हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, या फिर बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे हैं, सीरियस क्यों भाई, थोड़ी सी मुस्कान लाइए चेहरे पर। देखिए कितना जादू करती है मुस्कान की। अगर आप एक मुस्कान देंगे तो वहाँ सामने से भी आपको रिटर्न में मुस्कान ही मिलेगी। और इतना खूबसूरत मौसम है, दिल्ली भी अब हल्के हल्के रुमानी मौसम में बदल रही है, क्योंकि जो गर्मी उमस थी वो थोड़ी कम हो चुकी है, सुबह सुबह घूमने में भी मज़ा आता है। तो अपनी दिनचर्या के कामों में तो आप लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप हमें सुन रहे हैं, ये हम उम्मीद करते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत, जिन्होंने थोड़ा लेट ट्यून इन किया है हमारे इस स्टेशन को। तो साथियों, सबसे पहला गीत आप सबके लिए, हम चाहेंगे कि अगर आप मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं या प्रकृति के आसपास कहीं भी बैठे हैं, भाग दौड़ है जिंदगी में, लेकिन फिर भी प्रकृति की छोटी छोटी जो धुनें होती हैं, जैसे पक्षियों की चहचहाट, पेड़ों का सरसराह कर लहराना, या आसपास कहीं आराम से पेड़ों के बीच में बैठ जाना, आप उसे महसूस करें और स्माइल के साथ, जी हाँ, मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत करें।

जी हाँ, आसपास छूने के सपने और बड़े बड़ी उम्मीदें ये हम सब पाल के रखते हैं, लेकिन जब दिन की शुरुआत करते हैं तो इन उम्मीदों को सोच सोच कर जब हमारी ये ख्वाहिशें ख्वाब होते हैं और सुबह की भाग दौड़ होती है तो लगता है क्या ये पूरे होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। कहते ना कि हमेशा जो सोचते हैं हमारे आस पास वैसी ही चीज़ें होने लग जाती हैं। तो जो प्रकृति है वो हमें वही देना शुरू कर देती है जो हम उसे देते हैं और जो हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें और अपने साथ साथ

दूसरों के लिए भी सोचें, क्योंकि देखिए मनुष्य जीवन एक बार मिलता है और जो जीवन मिला है वो अपने लिए ही नहीं बल्कि सभी को एक साथ ले जाने के लिए है। प्रकृति भी उसमें शामिल है, पशु पक्षी भी उसमें शामिल है, और हमारे आसपास जो लोग हमारे रहते हैं, हमारे साथ ही हमारे भाई बंधु, हमारे परिवार के लोग, हम सबको एक साथ मिलकर आगे बढ़ना है और एक साथ मिलकर ही आगे चलना है। तो हंसते खिलखिलाते हुए सबको एक साथ लें, प्रकृति के लिए भी अपना थोड़ा सा समय निकालें, पौधों में पानी दें, साफ सफाई का ध्यान दें, और छोटी छोटी आदतें जैसे कि इधर उधर थूक देना, गंदगी फैला देना, कूड़ा यूं ही बाहर फेंक देना, इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति तो खुश रहेगी, गंदगी नहीं फैलेगी और रिश्ते भी संवरते रहेंगे। जब आप खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और अच्छा सोचेंगे। और हंसते खिलखिलाने की बात होती है तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत है जो मुझे बेहद पसंद है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते। जी हाँ, चाहे कितने भी मुश्किलों कितने भी परेशानियां हो, हंसते हंसते हम किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सारे काम अच्छे हो जाते हैं। खून भरी मांग से ये गीत जो है वो मुझे बहुत पसंद है, नितिन मुकेश और साधना सरगम और साथियों की आवाज़ में। और इससे पहले आपने सुना था कोई मिल गया फिल्म का शान की आवाज़ में गीत। इसीलिए तो हम कहते हैं आपसे कि हंसते हंसते हर एक काम की शुरुआत करें, हंसते हंसते मिलें, हंसते हंसते एक दूसरे का साथ दें।

जिंदगी बहुत छोटी है और इसलिए हर सुबह की शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान और अटूट विश्वास के साथ हम सबको करनी चाहिए। अगर कहते हैं ना कि इरादे मजबूत होते हैं तो कोई भी रुकावट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, वो किसी को नहीं रोक सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि उदास मत होएं, जब मुस्कुराहट रहती है, हंसते हंसते आप किसी भी काम को करेंगे तो जिंदगी आपको आसान ही लगेगी और आपका काम भी झट से हो जाएगा। इसी मंत्र को अगर आप पूरी जिंदगी अपने साथ गांठ बांध के रख लेंगे तो कभी भी कोई भी काम आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा।

श्रोताओं, आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल ipradiodelhi@gmail.com। इस पर आप हमें अपने संदेश भेज सकते हैं

दोस्तों सुबह सुबह हमारे साथी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हमारे पास एक मैसेज मिला है, हमें जो संदेश हम देख रहे हैं ये है कल्पना मलौदे का। इन्होंने सुरेश और वर्षा श्रद्धा मानसी मलौदे के साथ कोपर गांव से ये संदेश हम तक पहुंचाया है। और साथियों आप सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। वैसे हम जानते हैं कि सुबह की भागदौड़ बहुत ज़्यादा होती है और इसमें थोड़ा समय निकालना क्योंकि सबके लिए पॉसिबल नहीं होता, तो आपने निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि हमारे और भी साथी हमारे साथ ज़रूर जुड़े होंगे और सुन रहे हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आज है आपके साथ आपकी दोस्त सुषमा जी। आज वीकेंड पे नहीं बल्कि कहते ना सप्ताह के मध्य में बात हो रही है, आज मुलाकात सप्ताह के बीचों बीच यानी वीरवार को। तो चाय की चुस्कियों के साथ अपनी सारी चिंताओं को भाप में उड़ा दीजिए और अगर ऐसे भी आप चाय नहीं पीते, आप बोलिए अरे भी चाय तो नहीं पीता तो क्या करें, तो हम यही करेंगे चिंता जब आए तो थोड़ा सोचें लेकिन उसके बाद उसके सलूशन पर काम करें, ना कि ज़्यादा चिंताओं में डूब जाएं।

तो अपने आप से वादा करिए कि ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि कहते हैं ना चिंता का नाम ही दूसरा चिता है। तो हम तो चाहते हैं आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, मोटिवेटेड रहें, और जब भी आपको मौका मिले तो आप जो भी आपके आसपास उत्सव के कोई भी सामूहिक कार्यक्रम होते हैं, भजन कीर्तन या भी कोई भी किसी भी तरह का कार्यक्रम, आप उनमें ज़रूर शामिल हों, क्योंकि कई बार अकेलापन इंसान को खोखला कर देता है, उसे खाता रहता है अंदर अंदर। तो उससे उभरिए, बाहर निकलिए, अपनी हॉबीज़ को, अपनी जो आपकी काम करने की इच्छाएं, अलग अलग शौक हैं, उन्हें जिंदा रखिए, और अपने आप को पूरा दिन व्यस्त रखते हुए हमारे साथ बने रहें 24 घंटे 7 दिन। और यही कहेंगे कि हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, और चिंताओं को दूर करें, चिंताओं से बढ़कर सॉल्यूशन यानी समाधान पर काम करें। इसी के साथ अपने दोस्त सुषमा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। और ये बहुत ही खूबसूरत गीत साथियों आपको सुनवा रही हूँ खिलाड़ी फिल्म से, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज में। विदा आप सब से।

0: गीतों भरी गुड मॉर्निंग, कुछ ही पलों में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। जापान में एशियाई खेलों में रोशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। रोइंग में सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। और भारत ने समरकंद में आयोजित फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें दौर में इंग्लैंड को मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान सेवा यात्री प्रधानमंत्री के साथ अपनी यात्रा के अनुभव साझा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: सेवा यात्रा का उद्देश्य युवाओं की भागीदारी और जन सेवा को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से जोड़ना है। सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चलाए जा रहे व्यापक सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। सेवा यात्री विभिन्न राज्यों, जिलों, तहसीलों और गांवों से गुजरते हुए जन सेवा और जन भागीदारी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। इनमें स्वच्छता अभियान, स्थानीय लोगों और लाभार्थियों से संवाद तथा स्कूलों, अस्पतालों और अन्य सामुदायिक स्थानों पर सेवा गतिविधियां शामिल हैं। यात्रा का उद्देश्य सेवा, संवाद, युवाओं की भागीदारी, सामाजिक कल्याण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है। वडनगर से वाराणसी के बीच 10 समूह मोटरसाइकिल यात्रा कर रहे हैं। यह यात्रा 7 अक्टूबर तक जारी रहेगी। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत 17 सितंबर को वडनगर से गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे जल जीवन मिशन के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया।
3: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में देश के दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए गए जल जीवन मिशन का हिमाचल प्रदेश में लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है। प्रदेश में अब तक लगभग 17,09,000 ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध करवाया जा चुका है और जल जीवन मिशन के प्रावधानों के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिमला जिला के बढ़ई गाँव की निवासी ममता ने बताया कि जल जीवन मिशन से उनके गाँव में हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है, जिससे विशेष तौर पर महिलाओं को बड़ी राहत मिली है।
4: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी। जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
3: वहीं आकांक्षी जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दुर्गम क्षेत्रों तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है।
5: बहुत अच्छी बात जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया। जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
3: भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन को लगातार प्रोत्साहित किया है और जल शक्ति मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2026-27 के तहत जल जीवन मिशन 2.0 के लिए प्रदेश को 258,07,00,000 रुपए की राशि का अस्थायी आवंटन किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
6: नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस योजना को स्वीकृति दी गई। इस योजना के पहले चरण में 1300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 1170 ऑटो महिलाओं के लिए और 130 ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह योजना महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राजस्व जिले में महिलाओं के लिए अधिकतम 90 और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए 10 इलेक्ट्रिक ऑटो आवंटित किए जाएंगे। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि यह योजना दिल्ली को अधिक सुरक्षित, हरित और समावेशी शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। अक्षित के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दो पहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
7: भारत टैक्सी का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में शुरू हो गया है। लखनऊ हवाई अड्डे, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस सहित विभिन्न संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रयागराज महाकुंभ 2025 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि कैसे लाखों युवाओं ने रैपिडो के माध्यम से श्रद्धालुओं को संगम, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक पहुंचाने में मदद की थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत किसानों को बड़ी राहत दी गई है। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर को 11% से घटाकर मात्र 6% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेती और मशीनरी के लिए फंड की कमी ना हो, इसके लिए दीर्घकालिक ऋण की व्यवस्था की गई है, जिससे आने वाले समय में 5 लाख लघु और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। इस बीच राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते का एकमुश्त भुगतान करने का फैसला भी किया है। वित्त विभाग ने बताया है कि अप्रैल 2008 से दिसंबर 2015 तक 7 साल की अवधि का महंगाई भत्ता बकाया सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार पूरा दिया जाएगा। इसका भुगतान इस महीने के अंत तक किए जाने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
8: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, ATM से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सरकार और बैंक प्रबंधन ने यूनियनों से प्रस्तावित हड़ताल टालने की अपील की है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्पविकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। भारत ने ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक पोत MV केप डाउ पर कल हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि पोत पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो गई है।

0: राजस्व आसूचना निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी कर लाया गया 12 किलोग्राम सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि भारत बांग्लादेश सीमा पर होने वाली सोने की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए कई बड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया है कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रुपए मूल्य के 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
1: खेल खबरों की शुरुआत एशियाई खेलों से, जहां भारत की रुशिबिना देवी नाओरेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक, वहीं सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। रुशिबिना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शिया उई से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। ये एशियाई खेलों में रुशिबिना का तीसरा पदक है। उधर सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने पुरुष डबल स्कल्स नौकायन स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर थी, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर आ गई। इससे पहले सतनाम सिंह ने हांगझू एशियाई खेलों में पुरुष क्वाड्रपल स्कल्स में भी कांस्य पदक जीता था। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में चल रहे फिडे शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सातवें दौर में इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 अंकों से हरा दिया। कल खेले गए मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंद ने भारत के लिए शानदार जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में सविताशी ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लगातार सातवीं जीत दर्ज की, जिससे भारत ने सातवें दौर में जर्मनी को करारी शिकस्त दी। सविताशी इस ओलंपियाड में अपने सभी सातों मैच जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी बनी हुई हैं। प्रतियोगिता में अब केवल 2 दौर बाकी हैं और इस धमाकेदार जीत ने भारत की पदक की उम्मीदों को मजबूती से बनाए रखा है।
0: बंगाल की खाड़ी में बना गहरे दबाव का क्षेत्र कलिंगपट्टनम के पास उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी ओडिशा तट को पार कर अब आंतरिक क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार बारिश से कई जिलों, खासकर दक्षिणी जिलों में आम जनजीवन पर असर पड़ा है। संवेदनशील इलाकों में पानी भरने, जमीन खिसकने और सड़कों के संपर्क टूटने की खबर है। आईएमडी ने आज नवरंगपुर के लिए बहुत भारी बारिश की रेड वार्निंग जारी की है, जबकि 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग और 8 अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहें, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR News Alerts को फॉलो करें।
0: और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद प्रियंका। दुनिया कर रही तारीफ, 4 बड़ी एजेंसियों ने बढ़ाया भारत का वृद्धि दर अनुमान। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, S&P, फिच, ADB और OECD ने भारत की 2026-27 की GDP का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। अमर उजाला ने चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रकाशित किया है। मंत्रियों को मोदी का मंत्र, महिलाओं और युवाओं के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। निर्वाचन आयोग में मतभेद को लेकर उठे सवालों पर दैनिक भास्कर ने आयोग का स्पष्टीकरण प्रकाशित किया है। असहमति होना सामान्य बात है, हमारे बीच दरार नहीं। हिंदुस्तान और दैनिक जागरण की खबर है, बैंकों की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 25 सितंबर को ही वेतन और पेंशन देने का फैसला किया। राजस्थान पत्रिका ने बताया है, रेल मंत्रालय ने नेशनल पेंशन सिस्टम में आने वाले कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नियमों की घोषणा की है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत गुजरात के वडनगर से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक सेवा यात्रा कर रहे प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी। भारत टैक्सी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में शुरू। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंक ग्राहकों की सुविधा के लिए इस रविवार को खुले रहेंगे। और जापान में एशियाई खेलों में रुशिबिना देवी ने वुशु में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान ने रोइंग पुरुष डबल्स में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के सातवें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम के साथ इस गुफ्तगू से सेवा यात्रियों को अपने सफर के तजुर्बात शेयर करने का मौका मिलेगा, जिसका मकसद सफर में आने वाले मकामात पर नौजवानों की शमूलियत और कम्युनिटी खिदमात को मुंसलिक करना है। ये सेवा यात्रा 17 सितंबर को शुरू हुई थी और ये अवामी खिदमत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 25 साल को उजागर करने के वसीतर सेवा संकल्प अभियान का हिस्सा है। इसमें शामिल अफराद कस्बों, जिलों, तालुकों और गांवों से होकर सफर करते रहे हैं। इसमें कम्युनिटी खिदमात और अवामी राब्तों की सरगर्मियों को सबसे निचली सतह तक ले जाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। यह सफर मोटरसाइकिल मुहिम तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये इस तरह तरतीब दिया गया कि यात्रा के रास्ते पर मुख्तलिफ मकामात पर खिदमत, राब्तों, नौजवानों की शमूलियत, समाजी बहबूद, सकाफती राब्तों और लोगों को यकजा किया जा सके। वडनगर से वाराणसी के इस सफर में 10 ग्रुप हिस्सा ले रहे हैं। वडनगर और वाराणसी के दरमियान दोनों तरफ से होने वाली मोटरसाइकिल यात्राओं में नौजवान अफराद मुख्तलिफ रियासतों, जिलों और गांव से होकर गुजर रहे हैं। दिल्ली की काबीना ने दुर्गा इलेक्ट्रिक ऑटो स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन और मुखन्नस अफराद को रोजगार के महफूज और बावकार मौके फराहम करना है। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
1: कल नई दिल्ली में वजीर आला रेखा गुप्ता के जेर सदारत मुनक्किद काबिनी मीटिंग में इस स्कीम को मंजूरी दी गई। इस स्कीम के तहत पहले मरहले में 1300 पिंक इलेक्ट्रिक ऑटो फराहम किए जाएंगे, जिनमें से 1170 ऑटो खवातीन के लिए जबकि 130 ऑटो मुखन्नस अफराद के लिए मखसूस होंगे। वजीर आला ने कहा कि इस स्कीम से खवातीन और मुखन्नस अफराद को इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और ड्राइवर बनने का मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि हर एक रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट खवातीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 और मुखन्नस अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रिक ऑटो मुख्तस किए जाएंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ टैक्सी ड्राइवरों और किसानों के लिए बड़े इकदामात करते हुए भारत टैक्सी और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना का आगाज किया। भारत टैक्सी के जरिए टू व्हीलर टैक्सी और थ्री व्हीलर ड्राइवरों को रजिस्ट्रेशन पर कोई कमीशन नहीं देना होगा। इन ड्राइवरों को 5 लाख रुपए की सोशल सिक्योरिटी भी मिलेगी। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में इसकी खिदमात शुरू हो चुकी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ मेट्रो और लखनऊ पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों के साथ मुफाहमत नामों पर दस्तखत भी किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस वे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से कम अज कम 9 मुसाफिरों की झुलसने से मौत हो गई। कई दिगर मुसाफिर खिड़कियों से बाहर कूदकर जान बचाने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाकया जेवर थाने के तहत आने वाले इलाके में दयानतपुर गांव के नज़दीक आधी रात के आसपास पेश आया। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें तकरीबन 35 मुसाफिर सवार थे। वजारत खजाना ने

0: इधर वजारत खजाना ने कहा है कि सरकार और बैंकों की इंतजामिया ने यूनियनों से अपील की है कि वो मुजवजा हड़ताल मुलतवी कर दें। साथ ही इस बात को यकीनी बनाने के लिए इकदाम भी किए गए हैं कि जरूरी बैंककारी खिदमात बिला रुकावट जारी रहें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से वाबस्ता एक केस में दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला और लुधियाना में 26 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। कालेधन को जायज शक्ल देने की रोकथाम से मुतालिक एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। एजेंसी के मुताबिक बैंक फ्रॉड केसों के तहत प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स और इसी तरह की प्राइवेट फर्मों के दीगर एसोसिएट्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईडी के मुताबिक तिरुपति इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोजेक्ट के ताल्लुक से 290 करोड़ रुपए मालियत के बैंक फ्रॉड में मुलव्वस है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नज़रिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के समत लगातार काम कर रही है। जामे तरक्की और समाजी एतबार से बाख्तियार बनाए जाने से इस पुख्ता अज़्म के जरिए लोगों की ज़िंदगी बदल रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि जल जीवन मिशन के जरिए इस नज़रिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: मरकजी हुकूमत के जरिए 2019 में शुरू किए गए जल जीवन मिशन का मकसद मुल्क के दूर दराज और देही इलाकों में रहने वाले लोगों को नल से पानी फराहम करना था, जिससे हिमाचल प्रदेश में लोगों को फ़ायदा हो रहा है। दुश्वार गुजार जोग्राफियाई इलाके के बावजूद हिमाचल प्रदेश ऐसी पहाड़ी रियासतों में से एक बनकर उभरी है, जहाँ तकरीबन हर घर में नल के जरिए पीने का पानी सप्लाई हो रहा है। अभी तक रियासत के तकरीबन 17,09,000 देही घरों को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए गए हैं और जल जीवन मिशन के प्रोविजन के मुताबिक यौमिया फी कस 55 लीटर साफ पीने का पानी दस्तयाब कराया जा रहा है। शिमला ज़िले के बदेई गांव की रहने वाली ममता ने कहा कि जल जीवन मिशन ने उनके गांव के हर घर को नल से पानी के कनेक्शन फराहम किए हैं, जिससे ख़ास तौर से ख़वातीन को काफ़ी राहत मिली है।
2: हमारे गांव में पहले पानी की बहुत परेशानी होती थी, जब से जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में घर घर नल लगे, उसके बाद हमारी जितनी भी महिला और बहनें हैं उनके लिए बहुत सुविधा हुई है। मैं नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
1: इसी तरह से उमंगों वाले जिला चंबा के रहने वाले अजय शर्मा ने भी जल जीवन मिशन के तहत दूर दराज इलाकों में नल से पानी की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया।
3: बहुत अच्छी बात, जो वर्षा जल संग्रहण है, हमने भी इस प्रकार का टैंक बनाया, जब भी बारिश होती है टैंक के माध्यम से स्टोर हो जाता है और जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो हम उस पानी का यूज कर लेते हैं।
1: फ़ालियत के जायजे और पीने के पानी के मेयार में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से हिमाचल प्रदेश की मुसलसल हौसला अफजाई की जा रही है। जल शक्ति की वजारत ने माली साल 2026-27 के लिए जल जीवन मिशन के दूसरे मरहले के तहत रियासत के लिए 258,07,00,000 रुपए की आर्जी रकम मुख्तस की है। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: खलीज बंगाल के ऊपर बनने वाला हवा के गहरे दबाव का हल्का कालिंगापट्टनम के नज़दीक शिमाली आंध्र प्रदेश और जनूबी उड़ीसा के साहिल को पार कर गया है और अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। इसके ज़ेरे असर उड़ीसा के कई हिस्सों, खासतौर पर जनूबी ज़िलों में कहीं तेज़ और कहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही है। भारतीय मौसमियात महकमे ने तेज़ हवाओं के साथ शदीद बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की है। मज़ीद तफ़सील हमारे नामा निगार से।
4: उड़ीसा में लगातार बारिश होने से कई जिलों में रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई इलाकों में पानी भर जाने, चट्टानों के टुकड़े गिरने और सड़क रास्ते मुनक़ता हो जाने की इत्तला मिली हैं। कल रात देर गए हवा के गहरे दबाव का हल्का कलिंगापट्टनम के नज़दीक साहिल को पार कर गया। उस वक्त 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा के तेज झक्कड़ चल रहे थे, अब ये अंदरूनी इलाकों की तरफ बढ़ते हुए रफ्ता रफ्ता कमजोर होता जा रहा है। उड़ीसा सरकार ने कुदरती आफात की सूरत में तेजी के साथ काम करने वाली 33 टीमों को बचाव से मुतालिक साजो सामान के साथ मुतय्यन किया है। कई जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद हैं, जबकि मुतासरा

0: इलाकों में सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टी मनसूख कर दी गई है। भुवनेश्वर से प्रकाश दाश की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
1: मगरबी बंगाल के बेशतर हिस्सों में आज बारिश होने का इम्कान है। मशरकी और मगरबी मिदनापुर और झारग्राम में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोलकाता और कई जनूबी जिलों में भी तेज बारिश होने का इम्कान है। इनमें शिमाली और जनूबी 24 परगना, हावड़ा, बांकपुरा, पुरुलिया और बीरभूम शामिल हैं। शिमाली बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुर द्वार में भी शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। साहिली जिलों जनूबी 24 परगना और मशरकी और मगरबी मिदनापुर में हवा के तेज झक्कर चलने की भी पेशगोई की गई है। माहीगीरों को सलाह दी गई है कि वो कल तक समंदर में न जाएं। भारतीय मौसमियात महकमे ने मगरबी बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी तेज बारिश होने की पेशगोई की गई है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अंडमान, निकोबार, जजायर, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे और मराठवाड़ा में भी मूसलाधार बारिश हो सकती है। इधर गोवा, महाराष्ट्र और रायलसीमा में अगले 2-3 दिन के दौरान तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी और वुशू के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है। वो फाइनल में चीन के झांग शियाऊ यू से 3-0 से हार गईं। रोशबीना ने 2023 के हांगजू एशियाई खेलों में भी चांदी का तमगा जीता था। कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। इस मुकाबले में चीन ने सोने का तमगा जबकि उज्बेकिस्तान ने चांदी का तमगा जीता। समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इस तरह मौजूदा आलमी चैंपियन डी गुकेश और आर प्रज्ञानंदा ने जीत हासिल की है, जबकि आजमुदाकार खिलाड़ी माइकल एडम्स के साथ अर्जुन एरिगेसी का मुकाबला ड्रॉ पर खत्म हुआ। इधर निहाल सरीन को लूक मैक्शेन के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। प्रज्ञानंदा ने सफेद मोहरों से खेलते हुए निकिता वित्युगोव को हराया, जबकि सियाह मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने डैनियल हार्वर्ड फर्नांडिस को शिकस्त दी। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
2: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात की शह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर खारजा एस जयशंकर के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि तरक्की पजीर ममालिक को फैसला साज इदारों में जगह दी जानी चाहिए। अखबार इनकलाब वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के हवाले से लिखता है, भारत अचानक रूस से खाम तेल खरीदना बंद नहीं कर सकता और न ही फौरन दूसरे सप्लायर्स पर शिफ्ट हो सकता है। अखबार की एक अहम सुर्खी है, सरकारी बैंकों में 27 सितंबर बरोज एतवार भी होगा काम, हुकूमत ने हिदायत जारी की। जीरो कमीशन पर चलेगी भारत टैक्सी, ड्राइवरों को मिलेगा 5 लाख रुपए का समाजी तहफ्फुज।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा में शामिल अफराद के साथ आज सुबह गुफ्तगू करेंगे। दिल्ली सरकार ने दुर्गा स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद कौमी राजधानी में खवातीन को महफूज, साफ सुथरे और बावकार रोजगार के मौके फराहम करना है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में भारत टैक्सी का आगाज किया गया है। इलाकाई देही बैंकों समेत सभी बैंक लोगों की सहूलत के लिए इस इतवार को खुले रहेंगे। जापान में जारी एशियाई खेलों में भारत की रोशबीना देवी ने वुशु के मुकाबले में चांदी का तमगा जीता है, जबकि कश्ती रानी में मर्दों के डबल्स स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान को कांसे का तमगा मिला है। और समरकंद में फिडे शतरंज ओलंपियाड के 7वें राउंड में भारत ने इंग्लैंड को 1.5 के मुकाबले 2.5 पॉइंट से हरा दिया। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आरब अली खान का राग अहीर भैरव में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे हैं असीम अली खान।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वरगंगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आरब अली खान का राग अहिर भैरव में वायलिन वादन। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे असीम अली खान। और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे उद्योग पत्रिका। आज भेंट वार्ता रहेगी यूपीआई आसान लेनदेन की नई पहचान। श्री मनीष मिश्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए कमल किशोर जी की बातचीत होगी।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
3: अपने सभी श्रोता मित्रों को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आज के डिजिटल दौर में मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। खरीदारी से लेकर बिल भुगतान और पैसे भेजने तक डिजिटल भुगतान ने वित्तीय लेन देन को काफी आसान बना दिया है। हमारी जिंदगी आसान भी हो गई है। इनमें यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ने विशेष रूप से अपनी पहचान बनाई है। अब नगद रखने की कोई परेशानी नहीं होती है। यूपीआई क्या है, ये कैसे काम करता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कई सवाल आते हैं। आज यूपीआई से जुड़े आर्थिक और वित्तीय पहलुओं पर समझने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष मिश्रा जी को। हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार।
4: धन्यवाद कमल जी।
3: बिल्कुल आसान शब्दों में ये समझाइए कि ये यूपीआई क्या है और ये किस तरह काम करता है।
4: इसको मैं एक आम आदमी की लैंग्वेज में आपको मैं पूरा बताता हूँ। जैसे अगर आपने देखा होगा जो डिजिटल पेमेंटें जो होती हैं, या तो NEFT हो रही है या RTS हो रहा है, तो जो बैंकिंग रूट से जा रही है, जिसको क्लियरिंग में या उसको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने में एक बैच में जाती है। जैसे जो RTGS होती है वो रियल टाइम सेटलमेंट होती है, यानी कि जब हम करते हैं तुरंत ही रिफ्लेक्ट कर जाता है, या IMPS होता है इमीडिएट। वो भी NEFT की 6 साइकिलें हैं, जो दिन में हर घंटे में साइकिल है उसकी, उस साइकिल पे वो प्रोसेस होती है, यानी कि बैच प्रोसेस होती है। तो उसी श्रृंखला में जिसको फिनटेक इंडस्ट्री की बोले अगर, तो फिनटेक इंडस्ट्री जब इवॉल्व हुई तो उसमें जो पेमेंट सोल्यूशन है उसमें इनोवेशन हुआ। तो उसमें सबसे पहले तो क्रेडिट कार्ड आया था, आपको पता ही है क्रेडिट कार्ड, उसमें एक चिप होती थी, वहां से स्वैप होता था, उससे सारा ट्रांजेक्शन चलता था।
3: साथ साथ डेबिट कार्ड भी था।
4: डेबिट कार्ड मतलब क्रेडिट कार्ड मतलब कार्ड का एक समझ लीजिए प्रीपेड कार्ड या क्रेडिट कार्ड में उसमें क्रेडिट लिमिट होती थी, डेबिट कार्ड में लिमिट नहीं होती थी। तो वो ऐसा, अब जब स्मार्टफोन का जब चलन हिंदुस्तान में बढ़ा तो उसमें मोबाइल ऐप, ये पहले अगर आपने देखा होगा आपने, तो पहले केवल जो वॉलेट सिस्टम चलता था, यानी कि उसमें कंपनियां प्रीपेड पैसे उसमें डाल के, या आप उसमें पैसे डालते थे, 1000 रुपए डाला आपने, 500 डाला, केवल वही आप यूज कर पाते थे, वो भी केवल पीयर टू पीयर, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी, कोई उसमें मर्चेंट या दुकानदार इन्वॉल्व नहीं होता था, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती थी, यानी कि पैसे आप नहीं भेज सकते थे, जितने पैसे आपने वॉलेट में रखे हैं, आपने पॉइंट आपको जो मिले हैं उससे आपका होता था। आप 10 साल पहले की बात करेंगे, जब जिस श्रृंखला में कंपनियां जब हिंदुस्तान में आई थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती गई, अब इस पेमेंट सिस्टम में फिर RBI ने एक लाइसेंस इशू किया जिसको पेमेंट गेटवे का लाइसेंस बोलते हैं, या पेमेंट एग्रीगेटर या पेमेंट गेटवे, जिसमें बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन होने शुरू हुई, यानी कि ऐसी कंपनी को राइट दिया गया कि वो पैसे इधर उधर भेज सके, तो उसको बोलते हैं पेमेंट गेटवे का लाइसेंस या पेमेंट का लाइसेंस। जो लाइसेंस पहले रेजर पे या बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो आप देखते होगे, जो आप क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करते होगे, तो उसमें आप अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर डालते हैं या बैंक अकाउंट का यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं, OTP आता है, आप पेमेंट करते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये UPI आया है, जिसके लिए जो NPCI है, जो नेशनल पेमेंट क्लियरिंग सिस्टम है हिंदुस्तान का, वही मॉनिटर करता है ये RTS NEFT या जितनी भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है। स्पेशली चेक भी वही मॉनिटर करता था, यानी कि पहले जो चेक भी क्लियर होता है वो NPCI ही क्लियर करता था। RBI के अंडर वो एक बॉडी है जो कि जिसके लिए वो चार्जेस देता है। तो RBI ने NPCI ने एक लाइसेंस निकाला जिसको बोलते हैं TPAP, थर्ड पार्टी पेमेंट एग्रीगेटर का एक लाइसेंस हुआ, सर्विस प्रोवाइडर। तो उसमें ये वाला सिस्टम लगाया गया जिसमें एक स्पॉन्सर बैंक होता है, यानी कि एक मोबाइल ऐप वाली कंपनियां या टेक्नोलॉजी कंपनी, यानी कि टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर होती है, वो कंपनियां उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो सॉफ्टवेयर स्पॉन्सर बैंक के थ्रू दो बैंकों के बीच में बात करता है, यानी कि जब हम यहाँ से UPI करते हैं वो दूसरे बैंक में जाता है, तो एक बैंक के थ्रू ही रूट होता है वो। ये आप कह सकते हो कि ये क्योंकि IMPS बैंकिंग चैनल के थ्रू जाता है, बट ये जो UPI है वो बार कोड या QR कोड के सिस्टम से, या UPI का जो हैंडल है, देखा होगा कि कुछ भी XYZ @ Google Pay या फोन पे या व्हाटएवर, उसके थ्रू जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी से ये संभव हो पाया। तो ये दो प्रोटोकॉल के रूट से रिसीवर और गिवर जो है बात आपस में करते हैं, जो कि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन मूव होती है।
3: मनीष जी, ये मोबाइल नंबर, QR कोड और अकाउंट के जरिए भुगतान या लेन देन में कौन सा तरीका बेहतर हो सकता है?
4: देखिए, सबसे अगर सेफ की बात करें तो सबसे सेफ तो जो है आपका बैंकिंग चैनल ही सबसे सेफ होगा, कोई दो राय नहीं है। जब आप छोटी ट्रांजेक्शन करते हैं, ये जो UPI लाया गया या वॉलेट सिस्टम का सिस्टम लाया गया, शुरू में आपने देखा होगा पहले UPI 2000 पे चलता था, फिर उसकी लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ाई, उसको 1,00,000 रुपए 10,000 करा, फिर 1,00,000 करा, आप 5,00,000 तक आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो सिस्टम जब इवॉल्व हुआ, जब गवर्नमेंट ने या RBI ने या NPCI ने सिस्टम को और स्ट्रांग किया, टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे डेवलप हुई, तो वो लिमिट बढ़ती चली गई।
3: तो क्या UPI का उपयोग क्या सिर्फ खरीदारी और पैसे के लेन देन यानी कि भेजने तक ही सीमित है या कुछ और भी?
4: UPI का मेजर यूज तो पेमेंट में ही है obviously.
3: तो एक CA के दृष्टिकोण से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के दृष्टिकोण से डिजिटल रिकॉर्ड का भी इसमें महत्व रखता है, जैसे कि आपने NPCI की बात की है।
4: अगर आपको याद होगा कि जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब नोटबंदी कह सकते हैं उसको, तो गवर्नमेंट चाहती है या कोई भी गवर्नमेंट चाहेगी कि उसका जो भी इकोनॉमिक सिस्टम है वो फॉर्मल के रास्ते पे चले, यानी कि

0: ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो सरकार को पता हो कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन किसको कितना पैसा दे रहा है। उसके दो फायदे हैं। उसका एक तो फायदा ये है कि सरकार को ये पता लगता है कि हमारा एक मार्केट साइज कितना है या जीडीपी में वो एक काउंटिंग में आता है। दूसरा, पब्लिक वेलफेयर के लिए और बाकी स्कीमें निकालने के लिए कहाँ पे क्या कंट्रोल करना, उसके लिए भी फायदा होता है। तो डिजिटल डिमोनेटाइजेशन से फायदा यही हुआ कि जो सारी पेमेंट है, उस समय यूपीआई आ चुका था इसलिए वो ज्यादा पॉपुलर उस टाइम हुआ। जैसे अब सरकार को पता है कि एक किराने वाला कितना पैसा ले दे रहा है या पेट्रोल से कितना भरा जा रहा है, आप सारा रिकॉर्डिंग हो रही है। तो रिकॉर्डिंग से ऑलवेज डिसीजन मेकिंग में उसका फायदा होता
1: है। यानी कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मतलब उसको काफी फायदा हो सकता है।
0: हम जैसे सीए हैं, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे काम ये, हमें तो अगर आप अकाउंटिंग का रूल देखोगे सबसे पहले किसी टेंशन को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर उसको क्लासीफाई किया जाएगा, तब उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आप मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी कि एमआईएस या उससे कुछ क्रक्स निकाल पाएंगे उस डेटा से। पहले डेटा होगा तभी इन्फॉर्मेशन।
1: तो मनीष जी, अक्सर देखा जाता है कि हम यूपीआई ऑटो पे है या फिर यूपीआई लाइट है, यूपीआई 1-2-3 पे है, ये क्या है और इनके क्या फायदे हैं?
0: ये यूपीआई जो लाइट है वो यानी कि 2000 तक की जो छोटी ट्रांजेक्शन उसको लाइट में डाला गया। आपने दूसरा ऑटो पे बताया, ऑटो पे ई नैच सिस्टम है, नैच इसको बोलते हैं, नेशनल क्लियरिंग सिस्टम में आपने फिक्स कर दिया कि यूपीआई से इस डेट पे इतना रुपया कट जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑटो पे या यूपीआई नैच।
1: तो ये जो यूपीआई 1-2-3 पे ये क्या है?
0: ये मोबाइल के थ्रू एसएमएस के थ्रू दो चीजें, एक इंटरनेट से जब ट्रांजेक्शन होती है यानी मोबाइल ऐप से जब ट्रांजेक्शन होती है तो वो ये यूपीआई के थ्रू जाएगा, यूपीआई हैंडल या बारकोड के थ्रू जाएगा या ऑटो पे के थ्रू जाएगा। और जब आप एसएमएस से करते हैं, जब एसएमएस करके तो एसएमएस में एक कोड वर्ड डिसाइड कर दिया गया कि यूपीआई 1-2-3 आ गया, आप ट्रांजेक्शन डालेंगे तो वो एसएमएस से जो ट्रांजेक्शन हो रही है,
1: यानी कि आप विदाउट स्मार्टफोन के,
0: विदाउट स्मार्टफोन, गवर्नमेंट ने इसीलिए उसको भी लाया था कि जो बहुत बड़ी जनता है, रूरल जो जनता है जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, तो वो यूपीआई कैसे, उसका फायदा कैसे उठाए।
1: तो यूपीआई पर ये जो रुपे क्रेडिट कार्ड, ये इसका क्या रोल होता है, ये क्या है और ये कैसे काम करता है?
0: पहले क्या था कि हिंदुस्तान में कार्ड की बात करेंगे, जो कार्ड का जो सिस्टम था वो उस पर विदेशियों का ही कब्जा था, यानी कि मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, ये दो स्पेशली मेजर जो स्टेक होल्डर थे इस कार्ड के गुलामी में, तो ये टेक्नोलॉजी केवल इन लोगों के पास थी। अब जब हमारा अपना बैंकिंग सिस्टम है, हमारे पास अपना क्लियरिंग सिस्टम है, एनपीसीआई है, तो गवर्नमेंट ने फिर ये यूपीआई सिस्टम जो ले आई, तो यूपीआई वो रूपे जो है वो यूपीआई यानी कि उसको एनपीसीआई जो है वो कंट्रोल करता है, एनपीसीआई ने ये रूपे कार्ड इंट्रोड्यूस किया मार्केट में।
1: वैसे हमने देखा है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके फायदे तो बहुत होते हैं लेकिन उसके नुकसान भी कई बार झेलने पड़ते हैं और यूपीआई में कई बार ऐसे परेशानी हो जाती है, तो सबसे ज्यादा फ्रॉड या परेशानी किस प्रकार की संभावना बनी रहती है?
0: लेकिन यूपीआई में जो ज्यादातर जो होता है उसमें अगर आपने गलत यूपीआई कोड डाल दिया तो पैसा उसके पास चला गया तो वो रिकॉल बैक नहीं होती है, वो एक बड़ी समस्या है जो नए लोगों के साथ होती है। आप बारकोड पे कर रहे हैं तो डिफरेंट है, या बारकोड में भी किसी ने दूसरा बारकोड लगा दिया तो वहां पे पैसे चले जाएंगे क्योंकि वहां पे बीच में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रही है, इसलिए आपको वहां पे ये प्रॉब्लम्स होती है। दूसरा, चूंकि जनता उतनी ज्यादा शिक्षित नहीं है या उतनी ज्यादा टैक्स भी नहीं है तो वो कभी कभी गलती से हो जाती है।
1: कोई व्यक्ति अगर गलती से ट्रांजेक्शन कर लेता है, किसी के पास पैसा चला जाता है, भेज देता है, तो उसे वापस लेने का क्या कोई उपाय हो सकता है?
0: बिल्कुल उपाय है, आप अपने बैंक को इंटीमेट करते हैं उसको, वो जहाँ पे पैसा गया रहता है वहाँ पे उस पर लियन लग जाता है
1: जी,
0: तो उतना पैसा वो आदमी यूज नहीं कर सकता है, तो वो फिर दोनों बैंक के आपस में बात करके उसको कॉल बैक कर लेते हैं।
1: तो वित्तीय प्रबंधन यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसमें जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या फिर बड़े व्यापारी हैं उनके लिए किस प्रकार से ये यूपीआई एक बेनिफिशियल हो सकता है?
0: जैसा कि मैंने यही बताया कि जो भी अगर कैश में ट्रांजेक्शंस होती हैं तो उसका ना सरकार के पास कोई हिसाब किताब होता है और ना ही जो फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम है वहां पे कोई उसका फायदा मिलता है। अब यूपीआई ट्रांजेक्शन करेगा तो सरकार को पता लगता है ये महीने की 4 लाख की सेल कर रहा है, 5 लाख की सेल कर रहा है और ये इतने रुपए का माल खरीद रहा है।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये जरूरी है,
0: 100% जरूरी है। जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ आप सारा देखेंगे वहाँ पे ज्यादातर जो है डिजिटल ऑनलाइन सिस्टम या वहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी है। तो कैशलेस इकोनॉमी से फायदा यही है कि आप डेटा आपका रिकॉर्ड होता है वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और उससे जो यूजर है उसको फायदा होता है। ये आपने आजकल देखा होगा जो डिजिटल लेंडिंग चल रही है यानी कि ऑनलाइन लोन देना या 1 मिनट में लोन मिल जाता है, 5 मिनट में आपका ऑनलाइन, आप नंबर डालते हैं, 4 OTP आता है आपके अकाउंट में पैसा, 4 रात के 12 बजे भी आ जाता है। क्यों हो पा रहा है? वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि लोग यूपीआई के थ्रू ज्यादातर ट्रांजेक्शन हो रही है या ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रही है,
1: बैंक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती,
0: बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, या जो छोटी एनबीएफसी हैं या बड़ी एनबीएफसी हैं उनको पता है कि आदमी इतना रुपया सेल कर रहा है या इतना रुपया कमा रहा है, इतना रुपया पेमेंट कर रहा है, इसका मतलब ये पैसा उसकी क्रेडिट वर्थीनेस वहां से असेसमेंट हो जा रही है, उस एल्गो के बेस पे या उस डेटा के बेस पे डिसाइड कर लेता है कि इसको इतना रुपया देना है।
1: मनीष जी, आप जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हर वित्तीय लेन देन का ख्याल रखते हैं, तो क्या यूपीआई से जो ट्रांजेक्शन होता है उसका भी क्या कोई लेखा जोखा होता है?
0: यूपीआई तो एक माध्यम है केवल, यूपीआई पेमेंट करने का एक टेक्नोलॉजिकल

0: माध्यम है, जो हिसाब किताब तो बैंक में ही रहेगा, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट में भी सारे पैसे आते हैं, जो डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो दोनों बैंक अकाउंट, पैसा आएगा तब भी वो बैंक अकाउंट में आएगा और जाएगा तब भी बैंक अकाउंट से जाएगा।
1: इसमें ITR का यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न का इसमें क्या रोल हो सकता है?
0: इनकम टैक्स रिटर्न का यही रोल है, जब आप पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं और जा रहे हैं उसका हिसाब आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर जो है वो पैसे आपकी इनकम है और खर्चे है उसका हिसाब आपने रखा हुआ है तो वो दोनों घटा के जो प्रॉफिट होगा उस पर आपको टैक्स देना,
1: यानी कि ऑडिट करना अभी जरूरी है।
0: अगर एक लिमिट है कि अगर आप इतने रुपए तक की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है, आप खाली सेल्फ डिक्लेयर कर दीजिए।
1: तो आजकल देखा जा रहा है कि और अभी कुछ दिनों पहले सरकार ने UPI की जो पॉलिसी है वो नई पॉलिसी घोषित की है, इसमें MDR और P2P और P2M ये क्या चीज है, इसमें ये किस प्रकार से काम करते हैं, इससे क्या फायदा है?
0: इसका मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ थोड़ा। जब कोई भी नया सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उसमें हर चीज के खर्चे हैं, हर चीज का एक्सपेंडिचर है। अब जैसे बैंक की खुलती थी, बैंक ब्रांच खुलती थी, ब्रांच पे लोग बैठते थे, उसका टेंशन करते थे, ऐसे ही जब ऑनलाइन सिस्टम आएगा तो उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा है, सर्वर है, आने जाना जो कम्युनिकेट कर रहा है, इंटरनेट का खर्चा है या बाकी सारे खर्चे होते हैं। तो अब UPI सिस्टम को सेटअप करने के लिए सरकार को सारा खर्चा वो NPCI कायदे से बियर कर रही थी, NPCI बैंकों को सब्सिडी देती थी या NPCI सबवेंशन कह सकते हैं उसको। अब बैंकें कोई चैरिटी तो है नहीं, बैंक भी अपना काम कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, या कोई फाइनेंस कंपनी काम कर रही है, पेमेंट कंपनी जो काम कर रही है वो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रही है, कोई फ्री में काम नहीं करेगा। तो उस सबवेंशन जो था वो पहले NPCI देता था,
1: यानी कि मेंटेनेंस की जरूरत है कि हमें किस प्रकार से चलाना है सिस्टम को।
0: आप अपना घर चलाते हैं, जब आप घर चलाएंगे तो आपको अगर राशन लाना है, आपको गाड़ी चलानी है, तेल लगेगा, बिजली चलाओगे बिजली का लगेगा, तो इसको कोई फ्री कुछ चीज आती नहीं है, हवा पानी के अलावा कोई चीज फ्री नहीं, इवन पानी भी आपको अगर पेवर लेना है तो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो उसी तरह से जब UPI सिस्टम जो चला तो उसमें पैसे लगते थे, तो सरकार ने शुरू में, कोई सरकार का काम है सपोर्ट करना नई चीजों को, तो शुरू में सरकार ने इसको फ्री चलाया, सबवेंशन दिया, सब्सिडी दिया, स्कीम दिया। जैसे आपने देखा होगा शुरू में सिलेंडर पे सब्सिडी थी, पेट्रोल पे सब्सिडी थी, फिर धीरे धीरे वो फेज आउट मैनर में हटाई गई, क्योंकि सरकार को भी तो उसको अपना घाटे को मजबूत करना है। अब तो उसी श्रृंखला में सरकार ने ये वाला कदम उठाया, उसमें भी सरकार ने, अगर आप देखोगे जो रूल आया है इसमें 95% 96% लोग कुछ भी नहीं देना, इसके दो पार्ट हैं, आप समराइज कर देता हूं। एक है पीयर टू पीयर, यानी कि पर्सन टू पर्सन टैक्स, पर्सन टू पर्सन टैक्स अनलिमिटेड टैक्स, कुछ भी करते हो आप, आपको कुछ नहीं देना है, एक रुपया नहीं देना, यानी कि हम आप कोई भी किसी एक दूसरे पैसा भेज दे कोई रुपया नहीं देना है। अब दूसरा आता है बिजनेस, कस्टमर बिजनेस में कस्टमर को कुछ भी नहीं देना है, कस्टमर कोई बियर नहीं करना है, कोई डायरेक्ट पैसा कस्टमर से बेचे नहीं करने वाला है। हाँ, जो बिजनेस है उसमें भी 2000 तक अगर कोई आपको पैसा बिजनेसमैन के पास आ रहा है UPI के थ्रू तब कुछ नहीं देना है, 2000 के ऊपर जाना है तब एक सर्टन है, वो भी 300 रुपया है मैक्सिमम, मतलब आप 75,000 तक का ट्रांजेक्शन जब करने जाएंगे तब आपको 300 रुपया देना है।
1: मनीष जी, अब ये बताइए कि UPI का जो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए?
0: सबसे पहले तो आप जो QR कोड यूज कर रहे हैं या जो हैंडल यूज कर रहे हैं वो राइटली यूज करें, जिसको पैसा देना है उसी को दें, और ज्यादातर कोशिश करें कि अपने मोबाइल फोन में पासवर्ड लगा के चले, प्रोटेक्ट करके चले, यही दो मेन चीज है।
1: अगर OTP और UPI और जो पिन आते हैं इन सबकी जो जानकारी होती है साझा बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए,
0: बिल्कुल नहीं करनी।
1: और कई बार ये भी देखा जाता है कुछ लिंक्स आते हैं उनको भी क्लिक नहीं करनी चाहिए।
0: इसको आप ऐसा समझिए कि पहले आप अनजान आदमी से बात नहीं करते थे तो आप मोबाइल पे कोई SMS आए क्यों आप करोगे, या कोई चिट्ठी आ जाए आप फालतू थोड़ी खोल लोगे, अगर आप जानते हो उसको तो खोलिए, नहीं जानते मत खोलिए, जिसको आपसे बात करनी होगी करेगा, आपको जो भेजना होगा बताएगा आपको।
1: तो साथियों, UPI के जरिए जो लेन देन ने जो जीवन को आसान तो कर दिया है लेकिन बेहद सावधानी की इसमें आवश्यकता पड़ती है। किसी भी अनजान व्यक्ति से OTP पिन वगैरह शेयर ना करें, ना तो किसी अनजान लिंक को क्लिक करें, सतर्कता और सावधानी में ही हम तो ये कह सकते हैं कि समझदारी है। मनीष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और UPI के विषय में इतनी सारी जानकारी आपने साझा की, लोगों को जागरूक किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर निशा भारद्वाज और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। उद्योग पत्रिका। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। दिन दी शुरुआत एक वधिया विचार दे नाल। किसी ने कहा है कि मुस्कुराहट ओ चाबी है जो बंद दिलां दे ताले भी खोल दिंदी है। आओ जानते हां अज दे प्रोग्राम दी तफसील। अज तुसी सुनोगे पुस्तक पड़चोल लड़ी हेठ डॉक्टर रविंदर सिंह तो पुस्तक समीक्षा। इस तो बाद लोक गीत भी सुनवाए जाणगे, पर सब तो पहला अज दे दिन विशेष बारे कुछ गल्लां कर लैने आ। वर्ल्ड मैरीटाइम डे यानी कि विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर दे आखरी वीरवार नूं मनाया जांदा है। ए दिन अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन वल्लों मनाया जांदा है जो संयुक्त राष्ट्र दी एक विशेष एजेंसी है। इस दिन दा मकसद विश्व भर विच समुद्री आवाजाई, समुद्री जहाजां दी सुरक्षा, समुद्री वातावरण दी रक्षा ते समुद्री कर्मचारियां दे योगदान नूं उजागर करदी है। विश्व समुद्री दिवस दी शुरुआत 1978 विच होई सी। इस साल ए दिन IMO कन्वेंशन दे लागू होण दी 20वीं वरेगंढ वजो मनाया गया सी। 1948 विच जनेवा विखे हुई एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस विच IMO दी स्थापना दा फैसला होया सी, जिस दा मकसद समुद्री आवाजाई लई अंतरराष्ट्रीय मापदंड तैयार करना, सुरक्षा यकीनी बनाउणा ते वातावरणी मुद्दियां नाल नजिठणा सी। समुद्री आवाजाई विश्व आर्थिकता दी रीढ़ दी हड्डी है। विश्व व्यापार दा 80% तो वध हिस्सा समुद्री रास्ते राही ही हुंदा है। खाण पीण दियां चीजां, ऊर्जा, दवाइयां, कच्चा माल ते होर जरूरी समान एक देश तो दूजे देश तक समुद्री जहाजां राही पहुंचदा है। ए सब तो सस्ता ते कुशल तरीका है वड्डी मात्रा विच माल ढोण दा। इस दिन समुद्री कर्मचारियां दियां मुश्किलां वल भी ध्यान खिंचिया जांदा है जो महीनियां तक घरों दूर रह के मुश्किल हालात विच काम करदे ने। उन्हां दे योगदान नूं याद करना इस दिन दा एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस दिन लई इस साल दा थीम है फ्रॉम पॉलिसी टू प्रैक्टिस पावर मैरीटाइम एक्सीलेंस, नीति तो अमल तक समुद्री उत्मता नूं ताकत देना। इस थीम विच इस गल उत्ते जोर दिता गया है कि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते बनाईयां नीतियां ते नियमां नूं असल जीवन विच लागू कीता जावे। IMO तकनीकी सहायता, सिखलाई ते समर्था वधाउण दे प्रोग्रामां राहीं मेंबर देशां दी मदद करदा है तां जो समुद्री आवाजाई होर सुरक्षित ते वातावरण अनुकूल बन सके। विश्व समुद्री दिवस सानू चेते कराउंदा है कि साडी रोजाना जिंदगी विच समुद्री आवाजाई किन्नी महत्वपूर्ण है। ए दिन सानू ए सोचण लई प्रेरित करदा है कि असी किवें समुद्री वातावरण नूं साफ रख सकदे हां। समुद्र साडी धरती दा एक अहम हिस्सा ने, उहनां दी देखभाल साडी सांझी जिम्मेवारी है। ते आओ हुण सुणदे हां पुस्तक पड़चोल लड़ी हेठ डॉक्टर रविंदर सिंह तो पुस्तक समीक्षा।
1: पुस्तक पड़चोल दे अज दे प्रोग्राम विच असीं बलकार औलख दी नवी पुस्तक ਖਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਔਲਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗਜ਼ਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਖਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੌੜ ਦੇ ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਬਹਿਰ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਔਲਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਐਥਲੀਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਟਰੈਕ ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਸ਼ਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਵੱਧ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਦੀਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨੇ ਉਸਦੀ ਕਾਵ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਰੁਦਨ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਕਾਰ ਔਲਖ ਦੀ ਇਹ ਕਾਵ ਯਾਤਰਾ ਕੇਵਲ ਨਿੱਜੀ ਵਲਵਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਹੇਰਵੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਲੜੀ ਵਾਂਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਦਰੋਹ ਅਤੇ ਆਸ ਦੀ ਜੋਤ ਬਲਕਾਰ ਔਲਖ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ

0: अरबी अते फारसी परंपरा विचों विगस के उर्दू राही पंजाबी काव जगत विच आई गजल शायरी दी अजिही बंदिशमई अते सूखम विदा है जिसका शाब्दिक अर्थ औरतां नाल गल्लां करना जां हुस्नो इश्क दा जिक्र करना मन्या जांदा सी। परंतु आधुनिक दौर तक पहुंचदिआं गजल महज रोमांस की कैद विचों मुक्त होके समाजक दार्शनिक अते राजसी चेतना दा शक्तिशाली माध्यम बन चुकी है। बलकार औलख अरूज दे नियमां तों भली भांत जाणू है पर वह अरूज दे जमूद नू अपने विचारां उत्ते हावी नहीं होण दिंदा। वो लोक बोली भी रवानगी अनुसार अजिहियां काव खुला लैंदा है जो उसके शेर दे भाव नू बोझल होण तों बचाउंदियां ने। दो तुकां दे छोटे जिहे चौकटे विच जिंदगी दा वड्डा दर्शन बयान करना गजल दा सब तो वड्डा गुण है। बलकार दे शेर जिमें सी अकबर ताड़वी जो जित के भी जित नहीं सकया, सी दुल्ला सूरमा जो हार के हरिया नहीं होना, संखेप शब्दावली विच सदियां दे इतिहासक प्रतिरोध अते लोक नायकी गौरव नू सहजे ही समो लेंदे ने। बलकार औलख की लेखनी पंजाबी गजलकारी दे भविख लई एक पुख्ता अते आसवंद दस्तक है। एक कौमी पद्धर दा एथलीट होण कारण उस अंदर निरंतर अभ्यास सबर अते संघर्ष दा जो मादा है उसकी शायरी विच साफ झलकदा है। उह शेरां दी पीड़ इकट्ठी करन दी बजाए गुणवत्ता नूं पहल दिंदा है जिसकी गवाही यह है कि उसने अपनी बहुत सारिया कच्चिया गजलां खुद रद्द करके सिर्फ तराशे हुए कलाम नूं ही किताब दा हिस्सा बनाया। शायर कोल अपनी निजी उदासी मां प्यो दे विछोड़े अते बेरोजगारी दे दर्द नूं समुचे समाज दी आवाज बनाउण दी समर्था होवे उसकी शायरी कदे बेअसर नहीं हुंदी। वह दर्द विच डुब के खुदकुशी वल जाण दी थां ट्रैक दे गेड़े वधा के जिंदगी अते कला नूं जितण दी समर्था रखता है।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁਸਤਕ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਗੀਤ।

अखियां च पावां किवें कज्जल आवे, अखियां च तू वसदा। सुरिंदर कौर की आवाज़ विच हुणे तुसी ये लोक गीत सुन रहे सी। आओ अगला लोक गीत सुनते हाँ पुष्पा हंस की आवाज़ विच।

खंजर छनके ना दिलदार बिना, दिल मिलदे नहीं प्यार बिना। पुष्पा हंस की आवाज विच हुणे तुसी ए लोक गीत सुन रहे सी। ते आओ अगला गीत सुनते हाँ अजीत कौर की आवाज विच।

वे बाजार वकेंदे हिंग वे मेरी तुसा दे बुत विच जिंद वे। अजीत कौर दी आवाज विच हुणे तुसी ए लोक गीत सुन रहे सी। ते आओ जांदे जांदे सुनदे हां चंद्रकांता कपूर दी आवाज विच ए लोक गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम में दीदी महक। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन के मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। श्री मोदी ने ये बात गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म, यानी सेवा ही सर्वोच्च कर्तव्य है।
2: हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।

विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतर क्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलावों का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा संघर्षों और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए खतरों से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की असमर्थता केवल तत्काल सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है। उन्होंने कहा, सुधार में लगातार देरी से लंबे समय से चली आ रही असमानता बनी रहती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। सरकार के अनुसार इस कदम का उद्देश्य सरकारी खरीद में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के साथ लागत में कमी करना है। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपये तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी नाओ रेम ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक और सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर सलमान सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन से भारत को एक और पदक दिलाया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशियाई खेल में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि टीम की ये उपलब्धि उसके दृढ़ संकल्प, संघर्ष और जुझारू भावना को दर्शाती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ दोस्तों, कभी गौर किया है? रेडियो पर कोई धुन बजती है और कमरे का माहौल अचानक से बदल जाता है। कोई काम करते करते रुक जाता है, कोई खिड़की खोल देता है, कोई गुनगुनाने लगता है और कोई बिना वजह मुस्कुरा देता है। है ना? बस संगीत का इतना

सा कमाल है। और आज हम इसी कमाल के साथ हाजिर हैं आपके अपने कार्यक्रम आपकी पसंद में। कंसोल के इस साइड हूं मैं यानी कि दुर्गेश सारस्वत, और उस पार हैं आप। उस तरफ कौन है? शायद कोई सफर पर है, शायद कोई अपने काम में व्यस्त है, शायद कोई चाय का कप लेकर आराम से बैठा है, और शायद कोई ऐसा भी है जो रेडियो सुनते सुनते सोच रहा है, देखते हैं आज मेरी पसंद का गाना कब आता है। तो जनाब, इंतजार ज्यादा नहीं करवाते, पहले ले लेते हैं एक संदेश जिसे हमें भेजा है नोएडा से उदित चंद्र दीक्षित ने। उदित चंद्र शर्मा जी ने हमें ये संदेश भेजा है, और उन्होंने बोला है कि सुबह की शुरुआत करने के लिए ये जो गाना है ये बिल्कुल ठीक है। तो लेते हैं उन्हीं की पसंद का ये प्यारा सा गीत जिसे सुनकर आपका मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा।

वाह दोस्तों, कितना बढ़िया गीत था। अब जरा बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा ही होता है कि कोई पुराना गाना अचानक कहीं सुनाई दे जाए और दिमाग कहे ये गाना तो बहुत दिनों से नहीं सुना था, और वही एक गीत पूरे दिन का बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। दोस्तों, कभी कभी हमारी प्लेलिस्ट भी कितनी दिलचस्प होती है। ऊपर से नाम होता है माई फेवरेट सॉन्ग्स, और अंदर जाइए तो एक तरफ प्यार मोहब्बत, दूसरी तरफ ब्रेकअप, तीसरी तरफ शादी ब्याह, चौथी तरफ डांस नंबर, और सबसे मजेदार बात, मूड चाहे कुछ भी हो, गाना वही चलेगा जो उस वक्त मन करेगा। तो मन का ये जो रिमोट है ना दोस्तों, आज आपके हाथ में है। अगली पसंद भी सुनते हैं अगले संदेश के साथ, जो हमें भेजा है दीक्षा उपाध्याय ने जयपुर से, और इन्होंने अपने पापा के लिए ये गीत भेजा है, और सुनते हैं उनकी पसंद पर ये एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, ये गाना वाकई बहुत सुंदर गाना है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन श्रोता ने हमें ये गीत भेजा है उन तक उनके दिल की बात पहुंच गई होगी। और अब एक सवाल, आप गाना सुनते वक्त लिरिक्स सुनते हैं या म्यूजिक? क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बोल याद रहते हैं, एक-एक शब्द, और कुछ लोग कहते हैं भाई बोल बोल छोड़ो, बीट को सुनो। और तीसरी कैटेगरी भी होती है जो गाना बजते ही लिरिक्स गलत सही कुछ भी हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गाना शुरू कर देते हैं। अगर आप तीसरी कैटेगरी में हैं तो रेडियो स्टूडियो की तरफ से आपको पूरा सम्मान है, क्योंकि सुर कभी ऊपर नीचे हो ही नहीं सकते, लेकिन कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं गिरना चाहिए। और इसी कॉन्फिडेंस के साथ सुनते हैं अगली पसंद, अगला संदेश। ये संदेश हमें भेजा है अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक जी ने। ये हमारे नियमित श्रोतागण हैं और इनकी फरमाइश आई है अजनबी फिल्म से। गीत इन्होंने भेजा है एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। और इसके अलावा हमारे पास अगला संदेश आया है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवीर, लक्ष्य सोनी, मोहनी ऋतिक, बलबीर सिंह जी मुरादाबाद से, ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला संदेश हमें मिला है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल टिंपल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी जी हमें संदेश भेज रहे हैं। इन्होंने भी एक गीत की फरमाइश की है, कोशिश करेंगे हम इनकी पसंद को अपने कार्यक्रम में शामिल करने की। गांव फारसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, मुसरत जहां नाज, तलत जहां नाज, फरत नाज, रिफत नाज, नुजत नाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज भी खुद को शामिल करने की दरखास्त के साथ हमें संदेश भेज रही हैं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जगुताई राजे जाधव देशमुख, कुमार संचित, प्रथमेश सरवद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख का। इन्होंने भी मुक्काम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से हमें संदेश भेजा है, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू भी हमें दोस्ती फिल्म की मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चाहूँगा मैं तुझे सान सवेरे गीत की फरमाइश के साथ हमें संदेश भेज रहे हैं। चलिए आपके संदेश हमारे पास ऐसे ही आते रहें और आपके संदेशों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते रहें, इसके लिए हम आपको अपना मेल आईडी दे देते हैं। हमारा मेल आईडी है ip.radio.delhi@gmail.com। तो आप अपने संदेश हमें लगातार इस मेल एड्रेस पे भेजते रहिए, तब तक हम आपकी फरमाइशों के अनुसार सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अब जरा उन श्रोताओं की तरफ चलते हैं जिनके लिए गाना सिर्फ गाना नहीं होता। किसी के लिए वो सुबह की शुरुआत है, किसी के लिए सफर का साथी, किसी के लिए घर के काम की रफ्तार, और किसी के लिए बस आज ही सुनने का मन था। यही तो आपकी पसंद की खूबसूरती है दोस्तों। यहाँ कोई परीक्षा नहीं है कि कौन सा गीत सबसे अच्छा है, जिसे सुनकर आपका मन कहे बस यही वही आपका फेवरेट है। तो बिना किसी बहस के, बिना किसी रैंकिंग के, अब अगली पसंद आपकी प्लेलिस्ट में शामिल करते हैं। अगली पसंद जो हमें मिली है वो है फिल्म माया तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से। यह हमें बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, पार ढिंगिया जी ने भेजा है। इसके अलावा अगला संदेश जो हमें मिला है वो मिला है मुक्काम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद से डॉक्टर प्रशांत राजे देशमुख, जगुताई राजे देशमुख का। इसके अलावा सी आर कुलकर्णी, मेरे हुजूर रुख से ज़रा नकाब उठा लो, ये फरमाइश की है हमें दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी और हेमलता जी ने। और इसके अलावा जो अगली यह दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी हिमाक्ष, बेबी बॉय हिमाक्ष ने ये संदेश हमें भेजा है। अगला संदेश हमें मिला है मुकेश बत्ता जी का। और इसके अलावा जो संदेश अगला आया है हमारे पास आया है पीएस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, ये संदेश हमें भेजा है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंग्ले, सुपान ताइडे, आशीष मुनेकर जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं।

तो अगला संदेश जो हम लेंगे, अब हमारे पास जो संदेश आया है, देखिए आपके श्रोताओं संदेश हमें इतनी तेजी से मिलते हैं, और कई बार संदेश एक ही मेल आईडी से हमें कई कई संदेश मिलते हैं, जिसकी वजह से हम जो और श्रोतागण हैं उनके संदेश नहीं ले पाते। तो कई बार ही हम आपसे दरख्वास्त भी करते हैं कि ऐसे संदेश जो आप एक बार भेज चुके हैं हमें दोबारा ना भेजें, आप हमारी इस छोटी सी दरखास्त का सम्मान करें। और अब ले लेते हैं अगला संदेश जो हमें भेजा है एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और तमन्ना भाटिया जी ने स्टेशन रोड जमशेदपुर से, और भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव दिव्येंदु भूषण संस्कृति पौरुष व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हमें संदेश भेज रहे हैं। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से भी हमें संदेश भेज रहे हैं। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीतू शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह भी पद्मा टॉकीज नेपा नगर से हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश आया है हमें खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनवाने की गुजारिश के साथ हमें संदेश भेज रहे हैं। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कोलवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। चलते हैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी पसंद के मायने रखते हुए हम सुनते हैं एक और।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: तो दोस्तों चलते हैं, बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी शरारत करते हैं। अच्छा ये बताइए, कितने लोग गाना सुनते सुनते अचानक वॉल्यूम बढ़ा देते हैं और फिर घर से आवाज आती है, इतनी तेज आवाज क्यों कर रखी है? और जवाब मिलता है, बस गाना अच्छा है इसलिए बढ़ा दी है। अब गाना अच्छा है तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही ना, पड़ोसी अगर साथ में सुनने लगे तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। चलिए अगली धुन भी थोड़ी खुलकर सुनते हैं। और संगीत की एक ऐसी बात जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगती है, एक ही गाना 10 अलग लोगों के लिए 10 अलग अर्थ रख सकता है। आपको भी अच्छी लगती है ना?

तो दोस्तों, अगर आज आपने खुद से कहा है कि आज का दिन अच्छा बनाना है, तो समझ लीजिए शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि अच्छा दिन हमेशा बाहर से नहीं आता, कभी कभी हम खुद अपने दिन में अच्छाई का पहला सुर छेड़ते हैं। और आज वो पहला सुर था संगीत। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ दुर्गेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं आपकी पसंद। जुड़े रहिए, क्योंकि पसंद के गीतों का सिलसिला अभी थमा नहीं है और संदेशों का सिलसिला भी अभी नहीं रुका। आपके संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं और ये संदेश हमें मिला है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से। मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश कौर, मोहम्मद शादाब खत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश जो हमें मिला है वो है शेख मूसा मोजीन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुड़ाना सनावत से हमें भेज रहे हैं। इसके अलावा राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, बटिंडा रोड मंडी डब वाली से हमें ये संदेश भेज रहे हैं। अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदा फारजू, जोही इकबाल इकबाल फूल वाले, अहमद फूल वाले, कापस हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से हमें संदेश भेज रहे हैं। आमना नसरीन बागवान, आसमा परी रबिया, मंतशा आशु अहमद फूलवाले और छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से भी हमें ये संदेश भेजा गया है। लिखते हैं, गीत कोई भी हो, किसी ना किसी का पसंदीदा गीत तो होता ही है। सब लोग की अपनी अलग अलग पसंद हो सकती है जी, बिल्कुल पसंद हो सकती है आपके अलग अलग, और हमें क्योंकि सबकी पसंदों का ध्यान रखना होता है और हम उसी के अनुसार अपने कार्यक्रम में आपके सभी के गीतों को शामिल करते हैं। और अगला जो संदेश हमें मिला है, सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी भी हमें जलालाबाद वेस्ट से संदेश भेज रहे हैं। विरम गाम गुजरात से अजीत भावसर, प्रमिला भावसर, भावेश भावसर हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है, मधु किरण भगवती सोलंकी, प्रहलादपुर दिल्ली से हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है वो मिला है पंजाब से बटिंडा खेड़ा, मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा जी ने हमें संदेश भेजा है। और टीवी टावर नागपुर महाराष्ट्र से नाना डोंगर दीवे, रामाताई डोंगर दीवे, दीक्षा डोंगर दीवे, राहुल डोंगर दीवे जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों, आपके संदेश हमें बहुत तेजी से मिलते हैं। और अगला जो संदेश हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमबता डिम्पल देवांगन जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश हमें मिला है वो मिला है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा जी ने हमें संदेश भेजा है। एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया, हरजिंदर सिंह भाटिया जी स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं। टीरी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो संदेश आया है, छाया कोले, प्रियांश कोले, अनिल कोले, वंजारा नागपुर महाराष्ट्र से हमें संदेश भेजे हैं। ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय जी भी हमें कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से संदेश भेज रहे हैं। तो चलिए, आप लोगों के संदेशों की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये प्यारा सा एक और गीत।

दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। और चलते चलते ले लेते हैं और संदेश। ये संदेश हमें मिला है ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठहरिया, उमाकांती कठहरिया, कमलेश कठहरिया जी ने हमें ये संदेश भेजा है। पंचाव गांव नथाना से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता जी भी हमें संदेश भेज रही हैं। तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं।

हैं। इसके अलावा मेरठ कैंट दिग्दर्शन और कविता गौर जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं मेरठ कैंट से। बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया हरियाणा झज्जर से हमें संदेश भेज रहे हैं। प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा छत्तीसगढ़ पलारी से हमें ये संदेश भेज रहे हैं। और बबन मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, मोहाली पंजाब से हमें संदेश भेज रहे हैं। चरण दास, राजू अग्रवाल, प्रियांशी चौधरी वास धन्यवाद के साथ हमें संदेश भेज रहे हैं। अगला जो संदेश हमें मिला है, राजू अग्रवाल, केशव दक्ष चौधरी व हिसार हरियाणा से हमें संदेश भेज रहे हैं। और अगला जो संदेश हमें मिला है, सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली सुरेश नारंग जी ने हमें ये संदेश भेजा है। ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी भी हमें बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमें ये संदेश भेज रहे हैं। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा तत्रंगी के बाटापारण से हमें संदेश भेज रहे हैं। स्वीटी इंद्रजीत कौर और रविंदर सिंह जी भी हमें नई दिल्ली वेस्ट से संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा जो हमें संदेश मिला है, वो संदेश हमें मिला है सुभाष योगी, सुशील योगी, डब्बू बब्बू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी जी भी कृष्णा कॉलोनी हांसी से हमें संदेश भेज रहे हैं। जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, ऐशी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नगरी रोहित ऋतु मुकेश जगताप जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों, आपके संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं और इसी कड़ी में अगला जो संदेश हमें मिला है वो है पंकज शर्मा जी का, राम राम जी यानी सॉन्ग मॉडल टाउन करनाल से हमें सुधीर नूतन, संदीप कोगलानी, जगमोहन प्रजापति, कीर्तन ठाकुर जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। दोस्तों, चलते चलते बस ये सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। यात्रियों ने लोगों से संवाद किया और विभिन्न सरकारी योजनाओं से मिल रहे लाभ पर सकारात्मक प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के मुताबिक ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना

0: क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। ये बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल का प्रयोग अनिवार्य कर दिया है। वित्त विभाग ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण वाले सभी विभागों, अधीनस्थ कार्यालयों और संगठनों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद केवल जेम के माध्यम से करनी होगी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को सुरक्षित, साफ सुथरा और सम्मानजनक रोजगार का अवसर देने के उद्देश्य से दुर्गा योजना को मंजूरी दी है। ये फैसला कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के टैक्सी चालकों और किसानों के लिए दो बड़े कदम उठाते हुए भारत टैक्सी सेवा और मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की शुरुआत की है। इस नई पहल के तहत दोपहिया, तिपहिया और टैक्सी चालक बिना किसी कमीशन के इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे और उन्हें 5 लाख रुपए तक की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सेंट लूसिया के विदेश मंत्री अल्वा बैप्टिस्ट के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के मुद्दे पर विकासशील देशों के अंतरक्षेत्रीय समूह की परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दुनिया में हो रहे अभूतपूर्व बदलाव का सबसे अधिक असर विकासशील और अल्प विकसित देशों पर हो रहा है और संयुक्त राष्ट्र इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबीना देवी ने महिला 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता और सतनाम सिंह तथा सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। रोशिबीना देवी को फाइनल मैच में चीन की झांग शियाओ से 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi today said that service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Varanagar to Varanasi. The Prime Minister said, Seva Parmo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said that they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. The Delhi Cabinet has approved the Durga e-Auto scheme.

0: aimed at providing safe, clean and dignified employment opportunities to women and transgender persons in the national capital. Under the scheme, 1,300 pink electric autos will be allocated in the first phase. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath launched Bharat Taxi and Mukhyamantri Krishak Samriddhi Yojana, taking two major steps for taxi drivers and farmers. Through Bharat Taxi, two-wheeler taxi and three-wheeler drivers will be able to join on zero commission upon registration. They will also receive social security of 5 lakh rupees. Its operations have started in Lucknow, Gorakhpur, Varanasi and Prayagraj. At least 9 passengers were burnt to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. Several other passengers managed to escape by jumping out through the windows. According to police, the incident took place around midnight near Dayanatpur village under the Jewar police station area. Police said that the identities of the 9 deceased passengers have not yet been ascertained. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives due to a fire tragedy on a bus in Greater Noida, Uttar Pradesh. Extending condolences to those who have lost their loved ones, the President and Prime Minister prayed for the swift recovery of the injured. Mr. Modi also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. The deep depression over the Bay of Bengal has crossed the North Andhra Pradesh, South Orissa coast near Kalingapatnam and is now moving further inland. The system is continuing to trigger heavy to extremely heavy rainfall over several parts of Orissa, particularly the southern districts. In Orissa, incessant rain has disrupted normal life in several districts, with reports of waterlogging, landslides and disruption of road connectivity in vulnerable areas. While in West Bengal, rain is likely to lash most of the parts today. Heavy rain is also expected at Kolkata and several southern districts, including North and South 24 Parganas, Howrah, Bankura, Purulia, Paschim, Bardhaman and Birbhum. Foreign ministers of the G4 countries, India, Brazil, Germany and Japan, have called for early reform of the United Nations Security Council, UNSC. In a joint ministerial statement, they emphasized that expansion of the council in both permanent and non-permanent categories is central to the reform. Indian wushu player Roshabina Devi Nariam signed off with a silver medal in the women's 60 kg sanda event at the Asian Games after losing 0-2 to China's Zhang Xiong in the final at Nagoya in Japan. Indian rowers Satnam Singh and Salman Khan won bronze medal in the men's double sculls event this morning. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में स्वरांजलि कार्यक्रम में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर इस समय इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ऑडियंस इस कार्यक्रम से जुड़ी है। सभी का कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। आज हमने स्टूडियो में प्रस्तुति के लिए सादर आमंत्रित किया है पंडित डाल चंद शर्मा जी को। आप आज कार्यक्रम में पखावज वादन की प्रस्तुति देंगे। करतल ध्वनि से कलाकारों का अभिनंदन करें, स्वागत करें। पंडित डालचंद शर्मा जी नाथद्वारा घराने के प्रख्यात पखावज वादक हैं। आपने गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत पखावज वादक आचार्य पंडित तोताराम शर्मा से पखावज वादन की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है। आपने अपने दादा गुरु स्वर्गीय पंडित मुरलीधर शर्मा और पद्मश्री अलंकरण प्राप्त स्मृति शेष पंडित पुरुषोत्तम दास जी से भी पखावज वादन की शिक्षा ग्रहण की है। आप आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। आपने एकल और संगत कलाकार के रूप में ख्याति अर्जित की है। देश विदेश में लगभग सभी प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में आपने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। राष्ट्रपति भवन में माननीय राष्ट्रपति जी के समक्ष भी आपको प्रस्तुति देने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। पखावज वादन के उत्कृष्ट योगदान के लिए आपको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, उस्ताद लतीफ खान सम्मान, नाद रत्न सम्मान, संगीत मार्तंड, ताल शिरोमणि और भी

कई सम्मान और उपाधियां प्रदान की गई हैं। पंडित डालचंद शर्मा जी ने अपने प्रदर्शन और अपने शिष्यों के माध्यम से युवाओं के बीच पखावज को लोकप्रिय बनाने और इसकी महिमा को पुनर्जीवित करने में अपना जीवन समर्पित किया है। आपने ध्रुपद और ख्याल गायन का भी बुनियादी प्रशिक्षण हासिल किया है। अपने स्वर्गीय बाबा जीवनदास जी वृंदावन से हवेली संगीत और तबला वादन की शिक्षा भी आपने ग्रहण की है। आज आपके साथ संगत कर रहे हैं पखावज सहयोग देंगे श्री मनमोहन नायक, श्री हरिश्चंद्रपति, हारमोनियम पर हैं डॉक्टर विनय मिश्रा और तानपुरे पर हैं उदय दिवाकर। श्री नाथ द्वारा परंपरा के अनुसार वादन का शुभारंभ आज आप गणेश स्तुति परण से करेंगे। तत्पश्चात चौताल में आप विभिन्न रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। कलाकारों से अनुरोध है, कृपया प्रस्तुति आरंभ करें।

भक्कापरन ओना मात्रा से चक्करदारा धा।

फरमाइशी चक्कर दा।

कमाली चक्करदार।

धाके द्वारा पुष्प वृष्टि

रोही अवरोही धाके द्वारा एक दो तीन ताकट तक धरे गए एक दो तीन चार पाँच ताकट तक धरे गए एक दो तीन चार पाँच छः ताकट तक धरे गए एक दो तीन चार पाँच छः ताकट तक धरे गए एक दो तीन चार पाँच ताकट तक धरे गए एक दो तीन चार पाँच छः ताकट तक धरे गए एक दो

गजपालन

आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में स्वरांजलि कार्यक्रम में आज पंडित डालचंद शर्मा जी ने पखावज वादन की प्रस्तुति दी। आपके साथ पखावज सहयोग पर थे श्री मनमोहन नायक और श्री हरीश चंद्रपति। हारमोनियम पर संगत कर रहे थे डॉक्टर विनय मिश्रा और तानपुरे पर थे उदय दिवाकर। सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का आनंद यूट्यूब के माध्यम से भी लिया गया और इंद्रप्रस्थ चैनल पर इसका सजीव प्रसारण चल रहा था। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग प्रदान किया प्रकाश चंद्र थपलियाल, बी जयवंधन, उपासना सुशील और सुनील सैन ने। प्रस्तुति सहयोग था विशाल, दिव्या और रेवती राजन का, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। इसी के साथ मैं नीलम अलकानिया स्वरांजलि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।

0: बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. They said they planted saplings and conducted cleanliness drives as part of the campaign. They added that during the Yatra, they interacted with people and received their positive feedback on the benefits of various government schemes. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar.

0: घर आंगन।
1: नमस्कार। आज सुबह जब खिड़की खुली दोस्तों, तो हवा में सच बताऊं वो पहली ठंडक महसूस हुई जो बताती है कि मौसम अब करवट लेने लगा है। उसी ठंडी हवा के साथ हम आपके बीच फिर से हाजिर हैं और कार्यक्रम है आपका अपना घर आंगन। और स्वीकार कीजिए रश्मि कुकरेती का और
2: मेरा यानी श्रुति पुरी का नमस्कार। श्रोताओं, ये कार्यक्रम आपको सुनाई देता है आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इसके अलावा इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर भी इसे सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़े रहना पसंद करते हैं, उनके लिए हम मौजूद हैं यूट्यूब के चैनल AIR न्यूज़ लाइव 24।

0: 4x7 पर।
1: भाई वाह, क्या बात है श्रुति जी, बड़ी जबरदस्त आपने गाड़ी चलाई। लेकिन मेरा तो ये कहना, मेरा क्या, संत कबीर का ये कहना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। यानी जिंदगी में जल्दबाजी से नहीं बल्कि धैर्य और सहजता से ही चलने पर असली सफलता मिलती है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है आपने। और वैसे भी रश्मि जी, अब त्योहारों का मौसम आ रहा है और धीरे धीरे ये ना हमारे घर आंगन में भी दस्तक दे रहा है और हमने तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। तो इसी उत्सव के माहौल को ध्यान में रखते हुए हम अपने श्रोताओं से एक सवाल पूछना चाहते हैं।
1: मीठा मीठा सवाल।
0: हाँ, मीठा मीठा सवाल। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि बताइए, घर में कोई खास मौका या त्योहार आने पर आप मीठे में सबसे पहले क्या बनाना तय करते हैं? और अपने जवाब हमें भेजिए हमारी ईमेल आईडी fmgoldga@gmail.com पर। ईमेल आईडी एक बार फिर नोट करिए, fmgoldga@gmail.com पर। और जब तक आपके जवाब हम तक पहुंचे, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म में अभी आप आशा भोसले और किशोर कुमार को सुन रहे थे। रश्मि, देखो पिछले हफ्ते किसी रिश्तेदार से बात हो रही थी मेरी
1: जी।
0: जो मुंबई में रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके घर की खिड़की से बंदरगाह पे लगे बड़े बड़े जहाज दिखते हैं। ये सुनकर मन में एक पुरानी बात ताजा हो गई कि हमारा देश तो सदियों से समुन्द्र से जुड़ा हुआ है, और आज यानी 24 सितंबर को हर साल विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है
1: जी।
0: और इस बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने इस साल 26 और 27 दोनों के लिए एक साझा विषय दिया है जिसका भाव है नीति को व्यवहार में बदलना और समुद्री उत्कृष्टता को शक्ति देना।
1: बिल्कुल, और भाई जो भारत है वो तो उसके व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर गुजरता है श्रुति, और हमारे नाविक और मछुआरे परिवार इस पूरी व्यवस्था की रीढ़ है। तो भाई उनकी मेहनत के बिना ना तो बंदरगाह चलेंगे ना ही व्यापार आगे बढ़ेगा। और देखिए ना, संभावनाएं समुद्री पर्यटन की कितनी अपार संभावनाएं हैं। गोवा, केरल, उड़ीसा, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, तमिलनाडु, गुजरात के तट, और इसके अलावा जिसे कहते हैं जैव विविधता, मछुआरे समुदाय और जलवायु संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार है समुद्र। तो भाई इन तटीय परिवारों को हमारा प्रणाम, जिनकी वजह से हमारे घरों तक इतनी सारी चीजें पहुंच पाती हैं।
0: बिल्कुल।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को अभी आप सुन रहे थे फिल्म समुंदर में।
1: श्रुति, कल शाम को मुझे एक जगह ना ढोल बजने की आवाज आई, तो ना सच बताऊं कि मेरा जो मन है ना एकदम अपने गांव के मेले में पहुंच गया। वहां ना इतनी भीड़ और इतनी रौनक और इतने रंग एक साथ होते थे, और वहां ना एक हर साल एक मेला लगता था जिसमें झूले होते थे और मिट्टी के खिलौने होते थे, और सच बताऊं वो मशहूर जलेबी वाला जिसकी दुकान पर सबसे लंबी कतार लगती थी।
0: असल में गांव में लगने वाले मेले सिर्फ मनोरंजन की जगह नहीं होते, बल्कि हमारी गांव की संस्कृति की धड़कन हुआ करते हैं। फसल कटने के बाद पूरे साल की मेहनत का उत्सव इसी मेले में मनाया जाता है, और तभी लोकगीत गाए जाते हैं। कठपुतली, नौटंकी जैसी लोक कलाओं का मंचन तो पुराने समय में कितना हुआ करता था, और साथ ही जो गांव के कारीगरों को भी अपनी मेहनत को बेचने का ये मौका सबसे बढ़िया मिलता था
1: बिल्कुल।
0: इस समय।
1: और जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं और जो हमारे बुनकर हैं, लकड़ी के खिलौने गढ़ने वाले जो कारीगर हैं, भाई पूरे साल ही मेलों के इंतजार में तो रहते थे,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता था। यानी ये छोटे छोटे मेले गांवों की अर्थव्यवस्था की एक अहम कड़ी हुआ करते थे।
0: देखो, भारत में तो कुछ मेलों का इतिहास सदियों नहीं बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता है। जैसे राजस्थान का पुष्कर मेला सदियों पुराना ऊंट मेला है, जो हर साल कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है, और आज भी दुनिया भर के लोग इसे देखने आते हैं। इसी तरह बिहार का सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है, एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़े पशु मेलों में गिना जाता है ये मेला।
1: जी, और जो अब देखो आपने कहा था ना, भाई सवेरे थोड़ा थोड़ा ठंडक सी जो महसूस हो रही है, तो अब हमें मेलों के भी याद आने लग गई। और भाई हमारे जो हरियाणा का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला भी आएगा, और बहुत खूबसूरत वो मेला होता है। कुशल कारीगरों को मंच देने के लिए वो शुरू किया गया था।
0: और आपको एक बात बताऊं कि इस मेले में देश के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के भी हजारों शिल्पकार और लाखों दर्शक पहुंचते हैं। और इसी तरह मेरठ का नौचंदी मेला तो आपको याद ही होगा, और अभी देखो नवरात्रे आने वाले हैं, नवरात्रों में नरी सैमरी का मेला लगता है, कैला देवी का मेला लगता है।

0: करौली का मेला भी बड़ा प्रसिद्ध मेला है।
1: वही श्रुति, वक्त के साथ इन मेलों का स्वरूप भी बदल गया है। पहले जहाँ ये छोटे कस्बों और गांवों का सामाजिक केंद्र हुआ करते थे, वहीं आज जो ये मेले है ना, बड़े संगठित आयोजन और प्रदर्शनी का रूप ले चुके हैं, जहाँ जो कारीगर है वो सीधे बड़े बाजार और खरीदारों तक पहुँचने का उन्हें मौका मिलता है।
0: देखो, फिर भी उनकी आत्मा वही पुरानी है। आज भी अगर मौका मिले तो किसी नजदीकी मेले में जाकर वो पुराना अनुभव फिर से जिया जा सकता है कि नहीं।

0: अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, फिल्म थी राजा रानी।
1: और मेलों से हम वापस आते हैं अपने घर की ओर। जो मीठा
0: हाँ,
1: आप पूछ रही थी ना श्रुति जी, तो जवाब आ चुका है हमेशा की
0: बल्कि
1: तरह।
0: बल्कि मैं कहूंगी मेलों से मेलों पर आते
1: जी, मेलों से मेल पर आते हैं। तो पहली
0: हैं।
1: मेल आ गई है नवीन भाटिया जी, मोती
0: जी
1: नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कह रहे हैं कि हमें पसंद है भाई बेसन के लड्डू, बहुत बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं बेसन के लड्डू को नवीन भाटिया जी। आगे
0: देखो, मेरे पास भी एक मेल आई है। ये आई है डॉक्टर राजेश्वर राव जी की। ये लिखते हैं कि हम तो पायसम बनाने में बड़ा मज़ा आता है, और जिसे हिंदी में खीर कहते हैं, विद ड्राई फ्रूट्स। और पायसम में तो और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और बड़ी
1: जी
0: स्वादिष्ट होती है पायसम खाने
1: जी
0: में।
1: और हमारे साथ जुड़ गए हैं उमेश कुमार ख्याला से, और लिख रहे हैं कि त्योहारों पर हलवा बनाते हैं और प्रोग्राम और गाने जो है वो साथ में होते हैं, तो भाई अब बहुत अच्छा लगता है हमें। भाई क्या बात है, मीठे मीठे गीत और मीठा मीठा हलवा, तो भाई ये
0: बिल्कुल।
1: तो जबरदस्त एक जोड़ी बन
0: और
1: जाती है
0: देखिए, हलवा किसी और के यहाँ भी बनाया जाता
1: जी।
0: है। ये
1: कहाँ
0: है सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी और सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से।
1: अच्छा
0: ये लिखते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो सूजी का हलवा और दूध की खीर बनती है।
1: भाई क्या बात है भाई, हम तो कहते हैं ना ये दिल है देसी। भाई जो देसी खाने में जो मजा है अपना, जो भारतीय खान पान है वो गजब है। और एक और मेल आया है शशि
0: जी
1: भूषण आदर्श नगर दिल्ली से, कह रहे हैं कि मीठे में खीर बनाते हैं, तो भाई देखिए दिल है देसी बिल्कुल, है ना
0: बिल्कुल। और देसी अगर दिल है तो गाना भी देसी होना
1: जी। हाँ,
0: चाहिए
1: तो ऐसे ही खत लिखते रहिए, मेल लिखते रहिए और जुड़े रहिए FM गोल के साथ।

0: देखिए रश्मि जी, कितना प्यारा गीत अभी हमने श्रोताओं को सुनाया, और ये गीत था फिल्म आए दिन बहार के, इस फिल्म से हमने लिया था, और गायिका थी आशा भोसले। और क्या हुआ रश्मि जी, एक मैं आपसे एक वाकया वो करना चाहती थी साझा। पिछले हफ्ते मैं ना घर की सफाई कर रही थी और एक दराज खुली तो उसमें न जाने कितने पुराने चार्जर और दो खराब मोबाइल पड़े हुए थे। तभी ख्याल आया कि ऐसा तो शायद हर घर में होता होगा।
1: जी, और ये जो पुराना जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, इसको कहा जाता है ई कचरा। और भारत में इसके सुरक्षित निपटान के लिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए गए हैं। और इन नियमों के तहत हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है श्रुति, कि वो पुराना मोबाइल और पुरानी बैटरी या खराब उपकरण सामान्य कूड़े में ना फेंके। जी
0: और सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें अधिकृत ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर तक पहुंचाया जाए। कई मोबाइल कंपनियां और शोरूम भी आजकल तो पुराना फोन वापस लेने की सुविधा दे रहे हैं, और एक्चुअली इन जो उपकरणों में हानिकारक तत्व होते हैं जो अगर मिट्टी और पानी में मिल जाएं तो सेहत को बड़ा नुकसान साबित हो सकता
1: और
0: है।
1: देखिए, जो पुराना सामान जो होता है ना, वो कबाड़ी वाले को दे दिया जाता है, वो भी हम कहेंगे तो वो सही नहीं होता, क्योंकि ये असंगठित जो बाजार में इन्हें बिना किसी सुरक्षा के लिए अगर तोड़ा जाता है तो ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए जब अगली बार अपने घर से श्रुति कोई पुराना मोबाइल या बैटरी निकाले तो भाई
0: बिल्कुल
1: थोड़ी सजगता जरूर रखें और उन्हें आप सही जगह पहुंचाएं, ये मेरी आपसे प्रार्थना
0: और मेरी प्रार्थना
1: है।
0: ये है कि अगला गीत सुने।
1: जी।

0: शर्मीली फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और लता मंगेशकर को सुन रहे थे
1: जी।
0: रश्मि, आज सुबह जब चाय बनाते वक्त शहद की शीशी मेरे हाथ में आई ना, मैं शहद वाली चाय पीती हूँ, तो एक पुराना सवाल मेरे मन में कौंधा। आपको पता है कि मिस्र में हजारों साल पुराना शहद मिला है, वो आज भी खाने लायक है।
1: अच्छा श्रुति, ये ना इस बड़ा दिलचस्प विज्ञान है इसके पीछे। दरअसल क्या होता है, शहद में ना पानी की मात्रा बहुत कम होती है और ये हवा से नमी खींचने का गुण रखता है, जिसमें बैक्टीरिया के लिए जीवित रहना बिल्कुल असंभव हो जाता है।
0: हाँ, तभी तो शहद का जो पीएच स्तर है ना, वो काफी अम्लीय होता है और लगभग 3 से 4.5 के बीच, जैसे नींबू के रस में होता है, वो भी तो अम्लीय माना जाता है। तो इस माहौल में ज्यादातर जो सूक्ष्म जीव है वो पनप ही नहीं पाते।
1: और इसके अलावा श्रुति, मधुमक्खियां जो है वो शहद बनाते समय एक एंजाइम भी छोड़ती है, जिसमें हल्की मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, और ये भी एक प्राकृतिक कीटाणु नाशक की तरह काम करता है।
0: यही तो वजह है कि हमारी नानी दादी हमेशा कहा करती थी कि शहद को कभी फ्रिज में मत रखो, बस उसे तो कस के बंद करके बर्तन में।
1: क्या बात है श्रुति, आज तो मीठा मीठा मीठे मीठे गीत सुना रही हो, मीठा बनवा रही हो और शहद के बारे में बता रही हो।
0: एक काम करते हैं, मीठा नहीं, आपको थोड़ा खट्टा मीठा एहसास दिला देते हैं इस गीत से।

0: खट्टा मीठा फिल्म में अभी आप किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: और श्रुति, घर की दहलीज पे जो है गणपति बप्पा जब अपने धाम लौटने की तैयारी करते हैं ना, तो सच बताऊं हर और एक खामोश सी उदासी और एक ना भीनी सी मुस्कान ना दोनों साथ साथ उतर आती हैं। तो बप्पा की विदाई का दिन बस आने ही वाला है और जो लोग 2 दिन 3 दिन के गणपति रखते हैं वो लोग भी लगातार उनकी विदाई कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, इस विदाई को कैसे भव्य बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए और साथ ही धरती के प्रति जिम्मेदारी भी हम अपनी निभाई जाए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये विसर्जन नदी या तालाब में सीधे करने की जगह अब कई शहरों में नगर निगम ने कृत्रिम कुंड और मोबाइल टैंकों की व्यवस्था की है, जहां विसर्जन करने से नदी का जल जो है वो भी शुद्ध रहेगा और विधि विधान भी पूरा हो पाएगा
1: जी। और अगर जुलूस की बात करें श्रुति, तो भाई ढोल ताशे भजन और कीर्तन से माहौल को इतना ही उत्सवी बनाया जा सकता है। बस ध्यान देना ये है कि रात 10 बजे के बाद आप लाउडस्पीकर की आवाज थोड़ी सी धीमी कर दें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। और जो फूल माला हम बड़े प्रेम से चढ़ाते हैं, नारियल जैसी जो पूजा सामग्री हो, उसको पानी में बहाने की जगह जो निर्माल्य है, निर्माल्य कलश में डाला जाए। और सच बताऊं बहुत सी जगह ना इसे खाद बनाने के लिए भी काम में लाया जाता है।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हो, यानी बप्पा का प्रसाद धरती के लिए भी वरदान बन सकता है। जो कल बप्पा की विदाई करें तो दिल में धरती के लिए भी उतनी ही श्रद्धा रखें, उतनी ही सच्चाई और उतनी ही भव्यता और दिव्यता से गणपति को विदाई दें
1: जी, और ताकि वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल।

0: दो लोग और जुड़ गए हैं, राजू अग्रवाल, केशव प्रियांशी, विवेक चौधरी। वैसे कहते हैं जो भी खाना बना हो लेकिन ज़रूरी ये है कि वो बाजारी खान पान से जो है रसायनों से मुक्त हो। और साथ में गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं रोहतक से, कह रहे हैं कि भाई खसखस का हलवा या पोस का हलवा उसको रात को भिगो दें और सुबह सिलबट्टे पर पीस कर बादाम मिला दें और दिमाग के लिए दवाई का काम करता है और दूध भी डालना पड़ता है। पूरी सर्दी ये खाएं और रोज़ाना और सुबह शरीर के में ताकत का भी काम करता है। शुक्रिया गौरी शंकर जी।
1: और देखो रश्मि, इन सारी बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ, हम अपने श्रोताओं के जवाब भी हम भूले नहीं, हमने सभी श्रोताओं को जवाब दिए हैं। और लेकिन श्रोता हमें मेल करते रहे, हमें पूरी उत्सुकता से इंतजार रहेगा। तो अब इस घर आंगन में थोड़ा सा सुस्ताना चाहिए कि नहीं?
0: पर ये आंगन सुना नहीं होगा क्योंकि इसमें आपकी यादें हैं।

0: हम इसी के साथ इजाजत लेते हैं जाने की और साथ में कहते हैं
1: क्या आप सभी को बहुत सारा स्नेह हमारी तरफ से, बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले त्योहारों की, और हम फिर से इस घर आंगन में आपको मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। मुझे श्रुति पुरी
0: और रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए। श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान संवाद में ये बात कही।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव भी साझा किए। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई। बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा हुई। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सहमेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार

27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकट परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। भारतीय जोड़ी ने 44 के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। इससे पहले रोशिबीना देवी नाउरेम ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक भी सुनिश्चित हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

है जहां हमें मंजिल से ज्यादा जरूरत होती है सफर की। दोस्तों, कुछ लोग जिंदगी भर एक जगह ठहर कर अपनी मंजिल तलाशते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलते रहते हैं बिना यह जाने कि उनकी मंजिल आखिर है कहाँ। साथियों, आज की हमारी फिल्म भी ऐसे ही एक मुसाफिर की कहानी कहती है। ज्यादा देर नहीं करते और आपको फिल्म का नाम बताते हैं। फिल्म का नाम है दूर का राही। जी हाँ साथियों, साल था 1971 और इस फिल्म से जुड़ा सबसे खास नाम था किशोर कुमार। दोस्तों, किशोर कुमार ने इस फिल्म में सिर्फ अभिनय ही नहीं किया बल्कि फिल्म का निर्देशन, निर्माण और संगीत निर्देशन भी किया था। सदियों फिल्म में उनके साथ थे महान अभिनेता अशोक कुमार और खूबसूरत अभिनेत्री तनुजा। तो आइए दोस्तों, आज के इस सफर में हम चलते हैं उस दौर की ओर जब किशोर कुमार सिर्फ एक गायक नहीं बल्कि एक अभिनेता, संगीतकार, निर्देशक और निर्माता के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना रहे थे।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: दोस्तों, दूर का राही की कहानी के केंद्र में है प्रशांत, जिसका किरदार किशोर कुमार जी ने निभाया। प्रशांत एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने निजी जीवन की सीमाओं से निकलकर समाज और इंसानियत की तलाश में आगे बढ़ता है। वह एक जगह टिकने वाला इंसान नहीं है, उसका जीवन जैसे एक लगातार चलने वाली यात्रा है। वह लोगों से मिलता है, उनके जीवन को देखता है, उनकी परेशानियों को समझता है और इस पूरी यात्रा में खुद भी जिंदगी के कई सवालों के जवाब तलाशता है। फिल्म का मूल भाव सिर्फ घटनाओं में नहीं बल्कि इंसान के भीतर चलने वाली भावनाओं और संघर्ष में दिखाई देता है। साथियों, यही वजह है कि दूर का राही को केवल एक सामान्य मनोरंजन फिल्म के रूप में नहीं देखा जाता। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो जीवन को दूर से देखता है और फिर भी उसके हर दर्द को अपने बहुत करीब महसूस करता है।

श्रोताओं, किशोर कुमार के बारे में हम अक्सर कहते हैं महान गायक, लेकिन किशोर कुमार की प्रतिभा सिर्फ गायकी तक सीमित नहीं थी। साथियों, वह अभिनेता भी थे, निर्माता भी, निर्देशक भी और संगीतकार भी, और अपनी फिल्मों को लेकर उनका अंदाज भी बेहद अलग था। दूर का राही इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इस फिल्म में किशोर कुमार ने प्रशांत की मुख्य भूमिका निभाई और इसके साथ साथ निर्देशन, निर्माण और संगीत की जिम्मेदारी भी खुद संभाली। यानी कैमरे के सामने भी किशोर कुमार और कैमरे के पीछे भी साथियों किशोर कुमार। यह बात इस फिल्म को और भी खास बना देती है। साथियों, दूर का राही का संगीत भी किशोर कुमार की अपनी रचनात्मक दुनिया को दिखाता है। फिल्म के साउंडट्रैक में 8 गीत दर्ज हैं और इनमें किशोर कुमार के साथ हेमंत कुमार, मन्ना डे, अमित कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाजें सुनाई देती हैं।

दोस्तों, फिल्म के कलाकारों की बात करें तो किशोर कुमार के साथ थी तनुजा और अशोक कुमार। इस फिल्म को और भी खास बना देते हैं। तनुजा ने मोनिका का किरदार निभाया, जबकि अशोक कुमार ने जोसेफ की भूमिका निभाई थी। फिल्म में अभि भट्टाचार्य, इफ्तिखार, असित सेन, पद्मा खन्ना, कैस्ट्रो मुखर्जी और कई अन्य कलाकार भी दिखाई देते हैं। साथियों, अशोक कुमार और किशोर कुमार का रिश्ता भी हिंदी सिनेमा में बेहद खास रहा। दोनों भाई थे और दोनों ने अपने अपने तरीके से भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बनाई थी। एक तरफ अशोक कुमार को हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर के महान अभिनेताओं में गिना जाता है, तो दूसरी तरफ किशोर कुमार ने अभिनय, गायकी और संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग दुनिया बनाई। दूर का राही में दोनों का साथ होना अपने आप में ही फिल्म प्रेमियों के लिए एक खास बात है।

साथियों, आज जब हम रंगीन फिल्मों और शानदार विजुअल इफेक्ट्स के दौर में हैं, तब 1971 की इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म को देखना अपने आप में एक अलग अनुभव होता है। साथियों, दूर का राही को ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के रूप में दर्ज किया गया है। उस दौर में कहानी, अभिनय, संवाद और संगीत ही फिल्म की असली ताकत हुआ करते थे। और शायद दोस्तों, इसीलिए दूर का राही जैसी फिल्मों को आज भी पुराने हिंदी सिनेमा के जो प्रेमी हैं वो याद करते हैं।

दोस्तों, समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने के लिए, तो इजाज़त दीजिए अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए आप सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश अते सुभाअ च होनी चाहिदी है। भारत समेत G4 विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल दे जल्द सुधार दी लोड़ ते जोर दिता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का समुद्री खेतर देश की तरक्की लई एक मजबूत नींह है। भारतीय हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल AP सिंह वालों रणनीतिक तौर पर हमउत्तरी कमांड खेतर का दौरा ते मौजूदा सुरक्षा स्थिति और फौजी तैयारियों का लिया गया जायजा। भारत की मर्दा की टीम अपने आखिरी ग्रुप ए मैच में चीन 37-21 हरा के एशियाई खेडा कबड्डी मुकाबले के सैमीफाइनल पहुंच गई है। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश होनी चाहिए अते ए हर व्यक्ति दे सुभाअ च होनी चाहिए। उन्हें कहा कि राजनीति विच भी सेवा मार्गदर्शक सिद्धांत बनी रहनी चाहिए भावे कोई उच्चे अहुदे ते पहुंच जावे। श्री मोदी ने ए गल वडनगर तो वाराणसी तक यात्रा ते जा रहे सेवा यात्रियों नाल इक वर्चुअल गलबात दौरान कही। प्रधानमंत्री ने सेवा परमो धर्म भाव सेवा सब तो वड्डा फर्ज है, मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए।
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा सब तो वड्डी प्रेरक शक्ति है। उन्हें कहा कि भावे PM किसान होवे जां PM सूर्य घर योजना, अणगिणत अजिहियां योजनावां नूं उन्हां दे आखरी मील तक पहुंचाउण लई मानता दित्ती जांदी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ए उदों ही हुंदा है जदों सेवा दी भावना हुंदी है ते 4 करोड़ गरीबां नूं स्थाई घर मिलदे ने। उन्हें कहा कि जदों सेवा दी भावना किसी राष्ट्र दीआं नीतियां विच शामिल हो जांदी है तां सेवा खुद देश दी तरक्की लई सब तो वड्डी प्रेरक शक्ति बन जांदी है। श्री मोदी ने भी कहा कि नवीनताकारी योजनावां नूं जन्म दिंदा है जो 25 करोड़ नागरिकां नूं गरीबी दे चक्कर विचों बाहर कढ़दियां ने। उन्हें कहा कि राजनीति चोणां अते शासन प्रणालियां दा अपना स्थान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि असीं राष्ट्र निर्माण लई समर्पित लोक हां अते इक विकसित भारत बनाउण दे अहद नाल निकले हां। उन्हें कहा कि सारयां नूं 2047 तक इक विकसित भारत बनाउण विच नौजवानां दी अहम भूमिका नूं जोरदार ढंग नाल अगे वधाना चाहीदा है।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम

0: भूमिका निभाने वाली।
1: गलबात दौरान सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री नाल अपने अनुभव सांझे किए। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुहिम के हिस्से वजो बूटे लाए और सफाई मुहिम चलाई। उन्होंने भी कहा कि यात्रा दौरान उन्होंने लोगों नाल गलबात की और वख-वख सरकारी योजनावां दे लाभां बारे उन्होंने उसारू प्रतिक्रम प्राप्त किया। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल के जल्द सुधार की लोड़ पर जोर दिता है। G4 विदेश मंत्रियों की मीटिंग न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सैशन के मौके पर हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वारेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशी मित्सू ने इस विच हिस्सा लिया। एक सांझे बयान विच मंत्रियों ने कहा कि स्थाई और गैर स्थाई दोवां श्रेणियों विच सुरक्षा कौंसल का पसार सुधार का एक मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भूसियासी स्थिति देखते हुए सुरक्षा कौंसल विच सुधार पहला नालों कितने ज्यादा जरूरी हो गया है। G4 देशों ने अफ्रीका, एशिया प्रशांत और लातिनी अमरीका और कैरेबियन समेत घट और बिना प्रतिनिधता वाले खेतर समूहों की वधेरे प्रतिनिधता की लोड़ पर भी जोर दिता। मंत्रियों ने सुरक्षा कौंसल सुधार से अंतर सरकारी गलबात विच ठोस प्रगति की घाट से चिंता प्रगट की। उन्होंने कहा कि G4 होर सुधार पक्षी समूहों नाल रल के एक सांझा मॉडल विकसित करेगा जो संयुक्त राष्ट्र के बहुगिणती मैंबर देशों के विचारों नूं दर्शाउंदा है ते टैक्सट आधारित गलबात की जल्द शुरुआत नूं तरजीह देगा। बंदरगाहां, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सरबनंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का समुद्री खेतर देश की तरक्की लई एक मजबूत नींह है। आज विश्व समुद्री दिवस ते एक सोशल मीडिया पोस्ट विच श्री सोनोवाल ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण, नीति सुधारा ते समुद्री जहाजा लई पहलकदमियां नूं उत्साहित कर रही है। यह पहलकदमी हंगामी समुद्री सुरक्षा योजना के रूप विच इस साल जुलाई विच शुरू की गई सी। विश्व समुद्री दिवस हर साल सितंबर के आखिरी वीरवार नूं दुनिया भर विच समुद्र नाल जुड़े कार्यां ते सनदां विच काम करन वाले लोकां दे यतनां नूं मानता देण लई मनाया जांदा है। ए खबरां तुसी आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्स हैंडल है @EIRRNewsJalandhar। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा विखे एक बस विच अग लगन कारण होए जानी नुकसान ते दुख प्रगट कीता है। बुधवार देर रात ग्रेटर नोएडा विच यमुना एक्सप्रेसवे ते स्लीपर बस नूं अग लग जाण कारण इस दुखदाई हादसे विच घट्टो घट 9 यात्री सड़ के मारे गए। प्रधानमंत्री ने उन्हां लोकां प्रति संवेदना प्रगट कीती जिन्हां ने अपने अजीजां नूं गुआ दित्ता है अते जख्मियां दी जल्द सेहतयाबी लई प्रार्थना कीती। प्रधानमंत्री ने हरेक मृतक के रिश्तेदार नूं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड तो 2,00,000 रूपये और जख्मियों लिए 50,000 रूपये की राहत रकम का ऐलान भी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2,00,000 रूपये की राहत रकम का ऐलान किया है। पुलिस मुताबिक यह घटना जेवर थाना इलाके के दयान कपूर पिंड नेड़े अद्धी रात के करीब वापरी। ग्रेटर नोएडा के DCP रविशंकर ने आकाशवाणी खबरों नूं दस्सिया कि बिहार रजिस्टर्ड स्लीपर बस दिल्ली के कश्मीरी गेट तो महोबा जा रही सी अते कथित तौर ते इस विच करीब 35 मुसाफर सवार सन। दयानतपुर पिंड नेड़े बस नूं अचानक अग लग गई जिस कारण 9 यात्रियों की मौत हो गई। जेवर पुलिस ने इस संबंध में FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा के मुख्य फायर अफसर प्रदीप कुमार ने कहा कि अग बस के इंजन तो शुरू हुई और तेजी नाल दूजे हिस्सों में फैल गई। बस के ड्राइवर और कंडक्टर को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने कहा कि मृतका की पहचान अजे तक नहीं हो सकी है। पीड़ितों की पछाण करन अते उन्हां दे परिवारां नूं सूचित करन दीआं कोशिशां जारी ने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बस अग विच मारे गए लोकां दे परिवार प्रति संवेदना प्रगट कीती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी इस बस हादसे कारण होए जानी नुकसान ते दुख प्रगट कीता है। भारतीय हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने कल रणनीतिक तौर ते अहम उत्तरी कमांड खेतर दा दौरा कीता ते मौजूदा सुरक्षा स्थिति अते फौजी तैयारी दा जायजा लिया। उधमपुर स्थित उत्तरी कमांड सदर मुकाम विखे उत्तरी कमांड दे जनरल अफसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने उन्हां नूं मुहिम नाल जुड़ियां महत्वपूर्ण जानकारियां दित्तियां। मीटिंग दौरान बहु खेतरी कारजां दे प्रभावशाली संचालन लई तिन्नां सेवावां विचकार तालमेल ते भी चर्चा कीती गई। भारत ने सिकल सैल इलाज नूं आसान बनाउण अते बदलण लई एक आलमी पाईवाली 1SCD दी सेम एज पार्निंग कीती। न्यूयॉर्क विच संयुक्त राष्ट्र महासभा दे 81वें सैशन दौरान सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय दे सकत्तर पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सैल अनीमिया खात्मा मुहिम राही सिकल सैल बीमारी नूं खत्म करन दे भारत दे यतना नूं उजागर कीता। उन्होंने कहा कि यह मुहिम 2023 विच 2047 तक सिकल सैल बीमारी नूं खत्म करन दे टीचे नाल शुरू कीती गई सी।

0: खजाना मंत्रालय ने ऐलान किया है कि गाहकों की सहूलत लिए सारे जनता खेतर के बैंक और खेतरी देहाती बैंक एतवार 27 सितंबर न खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियनज वालों 28 तो 30 सितंबर तक तजवीजशुदा 3 दिन देशव्यापी बैंक हड़ताल कारण चुकया गया है। भारत की मर्दा की टीम अपने आखिरी ग्रुप ए मैच विच चीन नो 37-1 नाल हरा के एशियाई खेडा विच कबड्डी मुकाबले दे सेमीफाइनल विच पहुंच गई है। ए ग्रुप पड़ा विच भारत की लगातार चौथी जीत है। इस तो पहला भारत ने दक्षिणी कोरिया जापान अते बांग्लादेश नू हराया सी। कबड्डी 1990 तो एशियाई खेडा का हिस्सा रही है अते भारत की मर्दा की टीम ने सोने के 8 तमगे समेत कुल 9 तमगे जीते ने। इस दौरान भारत की औरतों की टीम ने अपनी जित की लड़ी जारी रखी। ईरान नू 37-23 नाल हराया। औरतों की टीम का अगला मुकाबला जापान नाल होगा। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य अते सुभाव च होनी चाहिए। भारत समेत G4 विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा कौंसल दे जल्द सुधार की लोड़ ते जोर दिता है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का समुद्री खेतर देश की तरक्की लई मजबूत नहीं है। भारतीय हवाई फौज मुखी एयर चीफ मार्शल AP सिंह वालों रणनीतिक तौर ते अहम उत्तरी कमांड खेतर का दौरा ते मौजूदा सुरक्षा स्थिति ते फौजी तैयारी का लिया गया जायजा। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन शाम 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म रहनुमा उसूल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए और हर फर्द में ये एहसास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सियासत में भी खिदमत ही रहनुमा उसूल होना चाहिए, खा कोई भी फर्द कितने ही आला ओहदे पर पहुंच जाए। जनाब मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा करने वाले अफराद के साथ वर्चुअल वसीले से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही। वज़ीर आज़म ने कहा कि सेवा परमो धर्म, खिदमत आला तरीन फर्ज है और ये हमेशा रहनुमा उसूल रहना चाहिए।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: गुफ्तगू के दौरान सेवा यात्रियों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अपने तजर्बात शेयर किए। इन लोगों ने बताया कि मुहिम के हिस्से के तौर पर उन्होंने पौधे लगाए और सफाई सुथराई की मुहिम में शामिल हुए। इन अफराद ने यह भी कहा कि सेवा यात्रा के दौरान उन्होंने आवाम से बात की और सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों के फायदों के बारे में लोगों ने मुस्बत रद्दअमल का इजहार किया। वज़ीर ख़ारिजा डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर इश्तराक FIPIC से मुतालिक फोरम के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग की सदारत की। मज़कूरा मीटिंग से FIPIC शराकत दारी और इलाकाई नीज कसीर रुखी फोरमों में इश्तराक व तआवुन को मज़ीद मुस्तहकम करने से मुतालिक अहद का इआदा किया गया। ये FIPIC फ्रेमवर्क के तहत मुनाक़िद होने वाली वज़राए ख़ारिजा की दूसरी मीटिंग थी। उत्तर प्रदेश में कल रात देर गए ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक स्लीपर बस में आग लग जाने से कम अज़ कम 9 मुसाफिर की झुलसने से मौत हो गई। कई दीगर मुसाफिर खिड़कियों से बाहर कूद कर जान बचाने में कामयाब हुए। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या जेवर थाने के तहत आने वाले इलाके में दयानतपुर गांव के नज़दीक

0: आधी रात के आसपास पेश आया। पुलिस ने कहा है कि हलाक होने वाले 9 मुसाफिरों की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में लोगों की अमवात होने पर रंजोगम का इजहार किया है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान भी किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार के रोज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 138वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर होगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तलात और नशरियात की वजारत की यूट्यूब चैनलों पर बराहे रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 साल मुकम्मल कर रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और पुख्ता अहद के साथ ये सफर आगे बढ़ा है और ये सिलसिला आज भी जारी है। सेवा और सुशासन के उनके नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए सरकार 2047 तक विकसित भारत के मकसद को हासिल करने की समत लगातार काम कर रही है। अपनी खसूसी सीरीज के तहत आज हम इस बात का तस्करा कर रहे हैं कि नई तालीमी पॉलिसी 2020 के जरिए इस नजरिए को किस तरह अमली शक्ल दी गई है।
1: कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद तालीमी निजाम में अहम तब्दीलियाँ लाना है। ये हुनरमंदी, तहकीक और अख्तरा को भी फरोग देती है। ओडिशा कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के निफाज के सिलसिले में इकदामात कर रहा है। आला तालीम को बेहतर बनाने और तलबा को नए हुनर सीखने की खातिर ज्यादा मौके फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। ओडिशा में कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नई पॉलिसी से हम आहंग हैं। ये तालीम में भारतीय जबानों और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को भी अहमियत देती है। हुकूमत तालीमी इदारों और सनतों के दरमियान रबते को बेहतर बनाने और तहकीक को मुस्तहकम करने के लिए भी काम कर रही है। नई कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद तालीम को ज्यादा लचकदार, सबकी शमूलियत पर मबनी और तलबा के लिए साजगार बनाना है। दीपक कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी महकमे के सेक्रेटरी एस कृष्णन ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की मजमुई अंदरूनी मुल्क मांग के तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज नई दिल्ली में भारत के 13वें पब्लिक अफेयर्स फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब करते हुए जनाब कृष्णन ने कहा कि भारत सालाना तकरीबन 32 करोड़ से लेकर 33 करोड़ मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करता है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 5 बड़ी मोबाइल फोन ब्रांड्स भारत में मौजूद हैं और वो मुल्क में अपने मोबाइल फोन तैयार कर रही हैं। सेक्रेटरी मौसूफ ने कहा कि सरकार ने प्रोडक्शन बढ़ाने, अंदरूनी मुल्क वैल्यू एडिशन में इजाफा करने, सप्लाई चेन निजाम को मजीद मुस्तहकम बनाने और भारत की आलमी मुसाबिकत को वसत देने की खातिर मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है। भारत ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर मुश्तरका मेजबानी के 1SCD का आगाज किया है, जो सिकल सेल की देखभाल के सिलसिले में बराबरी को फरोग देने और यकसर तब्दीली लाने से मुतालिक एक आलमी शराकत दारी है। तकरीब से खिताब करते हुए सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत की सेक्रेटरी पुनिया सलीला श्रीवास्तव ने सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने से मुतालिक कौमी मिशन के जरिए इस बीमारी के सिलसिले में भारत के जामे इकदाम को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2023 में इस मिशन का आगाज हुआ था। G4 के मुल्कों भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़राए खारिजा ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की जल्द इस्लाहात पर जोर दिया है। न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर वजीर खारिजा डॉक्टर एस जयशंकर और ब्राजील, जर्मनी और जापान के वज़राए खारिजा की मीटिंग के बाद एक मुश्तरका वजारती बयान में उन्होंने जोर देकर कहा कि मुस्तकिल और गैर मुस्तकिल दोनों जुमरों में सलामती काउंसिल की तौसी को इस्लाहात में मरकजी हैसियत हासिल होनी चाहिए। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने आज बिहार, झारखंड, विदर्भ और सिक्किम में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, असम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। मर्दों की कबड्डी में दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले

0: में चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारतीय टीम ने शुरू से ही अपना गलबा जारी रखा, जिसकी वजह से हाफ टाइम में उसे 23-11 की बढ़तरी हासिल हो गई थी, जिसे टीम ने सेकेंड हाफ में भी जारी रखा। सेकेंड हाफ को भारतीय टीम ने 14-10 से जीत लिया। इस दौरान खवातीन की भारतीय टीम ने भी इफ्तिताही मुकाबले में बांग्लादेश को शिकस्त देने के बाद ईरान को 37-23 से हराकर जीत की अपनी मुहिम बरकरार रखी। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उजागर किया है कि खिदमत जिंदगी का असल मकसद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म रहनुमा उसूल होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा जनरल असेंबली के 81वें इजलास के मौके पर भारत बहरुल काहिल जज़ायर के इश्तराक से मुतालिक फोरम के वज़राए ख़ारिजा की मीटिंग की सदारत की। हुकूमत ने कहा है कि भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का तकरीबन 99.2% मोबाइल फोन तैयार कर रहा है। आज मगरबी बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश और ओडिशा में बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और दिफाई चैंपियन भारत ग्रुप ए के आखिरी मुकाबले में चीनी ताइपे को हरा कर मर्दों की कबड्डी के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी।

0: पीबी शब्द। वेलकम बैक टू द मिड डे न्यूज। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD हैज इशूड अ रेड अलर्ट फॉर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल कंडीशंस ओवर वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. The weather agency has also forecast heavy to very heavy rainfall conditions in Bihar, Jharkhand, Vidarbha, West Bengal and Sikkim today. The IMD also predicted heavy rainfall over the Andaman and Nicobar Islands, Assam, Meghalaya, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe and Marathwada. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are also expected over Goa, Maharashtra and Rayalaseema during the next 2 to 3 days. Similar weather conditions are also expected to prevail over sub-Himalayan Sikkim, Tamil Nadu, Puducherry and some parts of northeastern states for the same period. The deep depression over the Bay of Bengal crossed the North Andhra Pradesh, South Odisha coast near Kalingapatnam between late last night and early this morning, triggering heavy to extremely heavy rain in several parts of Odisha. The system has moved inland and continues to influence weather conditions over southern and coastal districts, with waterlogging and localized flooding reported at several places. More from our correspondent.
1: The deep depression after crossing the North Andhra Pradesh South Odisha coast near Kalingapatnam has moved inland and is gradually weakening. However, its impacts continues to be felt across Odisha, with heavy rain, waterlogging and landslides reported in several southern districts. Koraput, Nabrangpur, Malkangiri, Kalahandi, Nuapada, Balangir and Bargad are likely to receive heavy to very heavy rainfall today, while other parts of southern and coastal Odisha may also experience intense showers. The India Meteorological Department has forecast extremely heavy rainfall at isolated places today and very heavy rain tomorrow and day after tomorrow, along with thunderstorms, lightning and squally winds. Waterlogging, landslides and road blockades have already disrupted normal life in parts of Ganjam, Gajapati and Koraput, while the Kalinga Ghat stretch of NH-157 has been closed because of the risk of landslides. Puri Beach has also been put under restrictions because of the rough sea conditions. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: At least 9 passengers were burnt to death after a sleeper bus caught fire on the Yamuna Expressway in Greater Noida late last night. According to police, the incident took place around midnight near the Anandpur village under the Jewar police station area. Police said the identities of the 9 deceased passengers have not yet been ascertained. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives. The Prime Minister has also announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund to the next of kin of each deceased. The injured would be given 50,000 rupees. The United States has said it is willing to explore a limited ceasefire between Russia and Ukraine covering energy and grain. U.S. Secretary of State Marco Rubio said both sides have expressed interest in such an arrangement, while stressing that no formal proposal or agreement has been reached. Rubio said the issue has been discussed with both Moscow and Kiev, including during recent U.S. contacts with Ukrainian President Volodymyr Zelensky and Russian officials. He said a limited ceasefire would not end the war, but could ease some pressure caused by the conflict and potentially provide a starting point for broader talks. The United States and China have agreed to extend their trade war truce by 2 months, giving both sides more time to work towards a potentially broader economic agreement. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said the arrangement known as the Busan Agreement will now be extended until January the 10th. The original truce was due to expire on November the 10th, following a deal reached by U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping in South Korea last October. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the monthly radio program Mann Ki Baat on Akashvani at 11 a.m. on Sunday. It will be the 138th episode, which will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the news on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channels of AIR News, DD News, the PMO and the Ministry of Information and Broadcasting. Akashvani will broadcast the program in regional languages immediately after the Hindi broadcast. The government has reduced the basic customs duty, BCD, on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers, mitigating inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. Defending champions India have stormed into the men's Kabaddi semi-finals with a convincing 37-21 victory over Chinese Taipei in their final Group A fixture at the Asian Games 2026 in Japan. India dominated from the outset, taking a commanding 23-11 lead at halftime and maintaining their advantage in the second half, which they won 14-10. The victory was India's fourth consecutive win in the group stage. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Parmo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for Indo-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of the country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storm into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. With that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा को जीवन का मुख्य उद्देश्य बताया, कहा सेवा परमो धर्म ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने कहा भारत मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% हिस्सा स्वयं बना रहा है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय मिक्स्ड निशानेबाजी टीम ने कांस्य पदक जीता। पुरुष कबड्डी टीम आखिरी ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सेवा हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम छोर तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
3: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
2: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब सेवा की भावना देश की नीतियों में शामिल होती है तो ऐसी योजनाएं सामने आती हैं जिनसे 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश के निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया।
3: इस वर्ष लाल किले से शक्ति की जिन सप्त धाराओं की चर्चा मैंने की है उनके विषय में भी लोगों से बात करनी है। मैन्युफैक्चरिंग की धारा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन की धारा, कनेक्टिविटी की धारा, ऐसी 7 धाराएं विकसित भारत के निर्माण की बहुत बड़ी ऊर्जा बनेगी और इस ऊर्जा को देश के हर नागरिक से ही गति मिलेगी।

0: तो आपकी ये ऊर्जा, आपके ये अनुभव विकसित भारत की यात्रा को और गति देंगे।
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधरोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस सोच को किस तरह धरातल पर उतारा है।
2: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य देश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक समावेशी, लचीला और विद्यार्थी केंद्रित बनाना है। इसके तहत उच्च शिक्षा में विषय के चयन में विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्रता, बहुविषयक अध्ययन, कौशल विकास, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश भर में लागू करने की दिशा में ओडिशा भी लगातार आगे बढ़ रहा है। नई शिक्षा नीति के अनुरूप उच्च शिक्षा संस्थानों में आवश्यक बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का ध्यान विद्यार्थियों को पारंपरिक डिग्री के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय भाषाओं, स्थानीय आवश्यकताओं और तकनीकी शिक्षा को भी नई शिक्षा व्यवस्था में जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ साथ शोध और नवाचार के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया जा रहा है। नई शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों के क्रियान्वयन और उच्च शिक्षा में इसके प्रभाव को लेकर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज कहते हैं,
3: 2024 में नई सरकार गठन होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने संरचनात्मक और शैक्षणिक सुधार के लिए हमेशा प्राथमिकता दिया है। कौशल विकास और उद्योग संपर्क के लिए AEDP, अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम, नास्कम, फ्यूचर स्किल, कोर्सेरा जैसे कार्यक्रम को अपनाए हैं। इंटर्नशिप बहुत अच्छी तरीके से उड़ीसा में हो रहा है।
2: राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी कार्यान्वयन केवल पाठ्यक्रम में बदलाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका व्यापक उद्देश्य विद्यार्थियों को ज्ञान, कौशल और अवसरों से सशक्त बनाना है। ओडिशा में नई शिक्षा नीति के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से लागू करते हुए उच्च शिक्षा को बेहतर और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में प्रयास जारी है। भुवनेश्वर से दीपक कुमार बेहरा के साथ मैं इतिश्री सिंह राठौर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच FIPIC के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
5: बैठक में FIPIC शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा की गई और भारत तथा प्रशांत द्वीप देशों के बीच सहयोग में हुई प्रगति का स्वागत किया गया। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2023 में घोषित 12 सूत्रीय कार्य योजना के तहत हुई प्रगति भी शामिल है। नेताओं ने नवीनीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्यवाही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। बैठक में समाओ के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री तथा फिजी, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप समूह और तुवालु के विदेश मंत्री शामिल हुए। तोंगा के वित्त मंत्री ने भी बैठक में भाग लिया। इसके अलावा माइक्रोनेशिया के संघीय राज्यों के न्याय विभाग के सचिव और अटॉर्नी जनरल, वानुअतु के स्वास्थ्य मंत्री, नाउरू के उप विदेश मंत्री तथा प्रशांत द्वीप मंच के महासचिव भी बैठक में उपस्थित थे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों

0: ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी 1SCD की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ये अभियान शुरू किया गया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि भारत में मोबाइल फोन की कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% विनिर्माण होता है। नई दिल्ली में आज 13वें वार्षिक पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के उद्घाटन सत्र में श्री कृष्णन ने कहा कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग 32 से 33 करोड़ मोबाइल फोन विनिर्मित होते हैं।
1: हम देश में अपनी कुल घरेलू मांग का लगभग 99.2% खुद तैयार करते हैं। भारत में होने वाला मूल्यवर्धन जो लगभग 7-8 साल पहले करीब 10 से 15% था, अब वो बढ़कर लगभग 22 से 23% हो गया है। हमारा लक्ष्य 35 से 40% के बीच मूल्यवर्धन हासिल करना है। इस उद्योग को देश में ही बनाए रखने के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है।
0: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह

खास पहचान बनाई। शुरुआत में ये फिल्मी दुनिया में एक हीरो बनना चाहते थे, लेकिन जब अभिनय के सफर की शुरुआत हुई तो बीच सफर की शुरुआत के बीच अपनी खास पहचान बनाई। शुरुआत में ये फिल्मी दुनिया में एक हीरो बनना चाहते थे, लेकिन जब अभिनय के सफर की शुरुआत हुई तो उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े खलनायक के रूप में पहचाने जाने लगेंगे। इनके जीवन और फिल्मी करियर से जुड़ी दिलचस्प स्टोरी हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन है आज के कलाकार। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं उनकी फिल्म अली बाबा और 40 चोर का ये सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, जादूगर जादू कर जाएगा। तो शायद आप समझ ही गए होंगे मैं किस खलनायक की बात कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी समझे तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बात कर रही हूँ प्रेम चोपड़ा, यानी प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा। मैं बात कर रही हूँ प्रेम चोपड़ा की। प्रेम चोपड़ा जी का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। देश के बंटवारे के बाद प्रेम चोपड़ा की फैमिली शिमला शिफ्ट हो गई। प्रेम चोपड़ा के पिता रणवीर लाल चोपड़ा एक सरकारी कर्मचारी थे और माता रूपानी चोपड़ा एक हाउसवाइफ थी। प्रेम चोपड़ा का शिमला में ही बचपन गुजरा और स्कूलिंग भी यहीं से हुई। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में प्रेम चोपड़ा ड्रामा में हिस्सा लेते थे और यहीं से इन्हें अभिनय का शौक चढ़ गया था और ये शौक उन्हें ग्रेजुएशन के बाद मुंबई खींच लाया। लेकिन हीरो बनने का सपना उतना आसान नहीं था। स्ट्रगलिंग के दौरान उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर के साथ काम करने का मौका मिला। उसी दौरान प्रेम चोपड़ा को एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में काम करने का मौका मिला और ये फिल्म हिट साबित हुई। इनकी फिल्म ने पंजाबी लैंग्वेज में बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड जीता। इसके बाद प्रेम चोपड़ा ने बहुत सी हिंदी फिल्मों में पॉजिटिव भूमिकाएँ की लेकिन वो फिल्में हिट नहीं हुई। फिर नेगेटिव रोल ऑफर हुए और प्रेम चोपड़ा ने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर्दे में इनके नेगेटिव कैरेक्टर का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला। आगे हम आपको इनकी फिल्मी करियर के से जुड़ी और भी बातें बताएंगे, पर अभी सुनिए इनकी फिल्म बॉबी का ये गीत।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो कलाकार हैं उनका नाम है प्रेम चोपड़ा, और मैं आपके साथ हूं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, प्रेम चोपड़ा की शुरुआती फिल्म हम हिंदुस्तानी वो कौन थी, शहीद, सिकंदर आजम, तीसरी मंजिल, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि फिल्म शहीद में इन्होंने क्रांतिकारी सुखदेव का रोल किया था, लेकिन इसके बाद इन्होंने उपकार, दो रास्ते, अनजाना, कटी पतंग, पूरब और पश्चिम, गोरा और काला, बॉबी, त्रिशूल, काला पत्थर, दोस्ताना, क्रांति जैसी बहुत सी हिट फिल्मों में काम किया। ऐसा कोई भी दशक नहीं था जहां प्रेम चोपड़ा को काम न मिला हो। 1960 से लेकर 1923 तक ये करीब 400 फिल्मों में काम कर चुके हैं। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार रहे राजेश खन्ना के साथ प्रेम चोपड़ा ने 19 फिल्मों में काम किया। इनके इंटरव्यू से जुड़ा एक किस्सा आपसे शेयर करती हूँ। दरअसल प्रेम चोपड़ा ने

फिल्मों में इतने खलनायक का रोल किए हैं कि असल जिंदगी में भी लोग इन्हें देखकर अपनी पत्नियों को छिपा लेते थे। आप सोचिए, प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग इतनी रियलिस्टिक हुआ करती थी कि मनोज कुमार, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और गोविंदा के साथ इनकी जोड़ी अक्सर हिट साबित हुई। ये इस उम्र में भी प्रेम चोपड़ा ने पिछले साल फिल्म एनिमल में काम किया था। 88 बरस के हो चुके प्रेम चोपड़ा की एक्टिंग आज भी जारी है। आगे आपको इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताएंगे। फिलहाल सुनिए इनकी फिल्म त्रिशूल का ये सुंदर सा सॉन्ग।

0: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
1: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
0: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
1: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
0: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
1: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी दिल्ली के हिंदी प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं प्रेम चोपड़ा। दोस्तों चलिए अब आपको प्रेम चोपड़ा जी की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। प्रेम चोपड़ा की शादी हिंदी सिनेमा के दिग्गज राज कपूर जी की पत्नी कृष्णा की छोटी बहन उमा से हुई थी। इनकी शादी जाने माने लेखक और फिल्म डायरेक्टर लेख टंडन ने करवाई थी। इनकी 3 बेटियाँ हैं, रकिता, पुनीता और प्रेरणा। तीनों बेटियां फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तीनों की शादी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से हुई है। उनके दामादों में बॉलीवुड एक्टर शर्मन जोशी और विकास भल्ला जैसे नाम शामिल हैं। प्रेम चोपड़ा अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। आपको इनकी उपलब्धियों और अवार्ड्स के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सुनिए इनकी फिल्म कटी पतंग का ये खूबसूरत सा गाना।

दोस्तों, इस वक्त हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा जी की, और कार्यक्रम भी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। तो बात करते हैं प्रेम चोपड़ा जी की, जिन्होंने 1976 में फिल्म दो अनजाने के लिए बेस्ट सपोर्टिंग का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2004 में उन्हें एटलांटिक सिटी में लीजेंड्स ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से नवाजा गया। वहीं 2023 में प्रेम चोपड़ा को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इनकी बेटी रकिता नंदा ने अपने पिता की लाइफ प्रेम नाम है मेरा पर एक बुक लिखी थी। कुल मिलाकर प्रेम चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने शोहरत के साथ मान सम्मान भी कमाया है। तो इसी बात पे चलिए सुनते हैं इनकी फिल्म दो रास्ते का ये गीत।

श्रोताओं, हमारे कुछ श्रोताओं के मेल भी हमारे पास आ चुके हैं, हम उन्हें भी पढ़ लेते हैं। दिल्ली बिहारी कॉलोनी शादरा से तुलसी मस्कीन जी का हमारे पास मेल आया है। छत्तीसगढ़ पलियारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी और अन्नपूर्णा का जी का आया है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी फ्रॉम शांति नगर सोनीपत से। और आगे चलते हैं, ये हैं गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन शालीमार बाग से, और ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए फारूक अली खान और अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। छत्तीसगढ़ भंवरपुर से राधेश्याम देवगन और चंपा, मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति, भूमिका, ये जुड़े हुए हैं हमारे साथ। श्रीगंगानगर राजस्थान से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, कबीर, रेडियो श्रोता संघ बलौद छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार है हमारे साथ। और ये हैं वीना मस्किन, आशीष राजा, डब्बू, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना और केशु खुराना। और ये हमारे साथ हैं इंद्रजीत सिंह, ऋषभ, अनुभव, राम, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंदी, ये कालरी से हैं ये हमारे साथ जुड़े हुए। और ये है मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गौर, और मंसूर हसन है हमारे साथ, साइना हसन, नाजिया इब्राहिम, ये हैं कुम्हार हेंडा सहारनपुर से। और आगे बढ़ते हैं वडिंगा खेड़ा पंजाब से पिंटू थॉमस, पिंकी, लवली और आरती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, चलते हैं इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे। प्रेम चोपड़ा का नाम हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अनूठा स्थान रखता है। अपने खलनायक, अपने खतरनाक अभिनय, यादगार डायलॉग और विचित्र अंदाज से इन्होंने दर्शकों के दिलों में खलनायक की छवि को स्थापित किया है, जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महान कलाकार की कहानी और उसके जीवन के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी को अनुमति दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम फिर से वापिस आएंगे दोपहर के 3 बजे मैटिनी मेलोडीज के साथ। लेकिन तब तक सुनिए एनिमल फिल्म का ये गीत।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। दिन के 3 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज। और मैं आपके साथ हूँ आज मैटनी मेलोडीज में, आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, कभी कभी जो दिल है ना, वो पंछी बनना चाहता है, सारी चिंताओं से दूर खुले आसमान में अपनी धुन पर उड़ना चाहता है। यही आज़ादी और मस्ती का एहसास कराता है फिल्म चोरी चोरी का ये खूबसूरत सदाबहार गीत। तो आइए लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में सुनते हैं पंछी बनू उड़ते फिरू मस्त गगन में, जिसके संगीतकार हैं शंकर जय किशन और गीतकार हैं हसरत जयपुरी।

श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। किसी की आंखों में ऐसी शरारत हो कि दिल बार बार उन्हीं पर ठहर जाए और प्यार का इजहार भी हो जाए, तो फिर शिकायत कैसी। इसी नटखट अंदाज और मीठी मोहब्बत के साथ सुनिए फिल्म जंगली का ये खूबसूरत गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मुकेश ने। गीतकार है हसरत जयपुरी और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

दोस्तों, जब मौसम सुहाना हो, हवाओं में प्यार खुला हो और दिल में कोई मीठा सा एहसास जाग उठे, तो भंवरों का गुनगुनाना और कलियों का खिलना भी किसी प्रेम गीत से कम नहीं लगता। इसी खूबसूरत मौसम और नटखट प्रेम की कहानी लेकर आया है फिल्म आराधना का ये सदाबहार गीत। तो आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में, आनंद बख्शी के लिखे और सचिन देव बर्मन के संगीत से सजा ये मधुर नगमा। गुनगुना रहे हैं भंवरे, खिल रही है गली गली।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा हमसफर मिल जाता है जिसके साथ हर मुश्किल आसान लगने लगती है और हर नज़ारा खूबसूरत हो जाता है। प्यार में किसी का मिलना सिर्फ साथ मिलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सहारा पाना है जिसमें दिल को सुकून और आंखों को खुशी मिलती है। तो आइए लता मंगेशकर की मधुर आवाज़ में सुनते हैं फिल्म लव इन टोक्यो का ये प्यारा सा नगमा। और इस नगमे के जो गीतकार हैं वो हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन, और अपनी खूबसूरत सी आवाज़ दी है लता मंगेशकर ने।

जब किसी की बेरुखी भी दिल को छेड़ने लगे तो शिकायत भी प्यार भरे अंदाज में ही निकलती है। कुछ ऐसी ही नटखट छेड़छाड़ और दिलकश अंदाज लिए किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आज भी मुस्कान ले आता है। सुनिए फिल्म पेंगेस्ट का सदाबहार गीत, माना जनाब ने पुकारा नहीं, क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीत सचिन देव बर्मन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। दोस्तों, दिल की बात जब शब्दों से कहानी मुश्किल हो कहनी मुश्किल हो जाए तो कभी कभी एक नज़र ही काफ़ी होती है। दो दिलों के बीच की ही कि यही मीठी सी खामोशी और अनकही बातों का एहसास समेटे है ये खूबसूरत सा नगमा। तो आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में फिल्म छाया का ये गीत। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

दोस्तों, अब वक्त हो गया है आज के इस खूबसूरत सफ़र को यहीं विराम देने का। कितने ही नगमे सुने, कितनी ही पुरानी यादों को फिर से महसूस किया, और अब आखिरी गीत भी कुछ ऐसा ही है जिसमें जुदाई की हल्की सी कसक है और फिर मिलने की एक उम्मीद। फिल्म प्यार की राहें का ये गीत तुमसे दूर चले, जिसे अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और हेमंत कुमार ने। तो इस गीत के साथ आज के कार्यक्रम से मैं आपकी दोस्त राखी बैनर्जी आपसे विदा लेती हूँ। बस इतना याद रखिएगा, दूरियाँ चाहे कितनी भी हो, अच्छे गीत और खूबसूरत यादें हमेशा दिल के करीब रहती हैं। तो सुनते रहिएगा गीत, गुनगुनाते रहिएगा संगीत, सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। दिन के 3:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

0: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन कराम, हम आज लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।
1: तो सामईन कराम, हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करें और अपने मेहमानों से आपका तारुफ कराएं, उससे पहले आपके गोश गुजार करता चलूं कि मन की बात रेडियो की दुनिया में एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिलों को छूता है, सोच को जगाता है और कौम को एक साथ जोड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मन की बात। ये प्रोग्राम न सिर्फ रहनुमाई का जरिया है बल्कि अवामी जज्बात और कौमी तरजीहात की आईनादारी भी करता है। इसमें बात होती है तालीम की, नौजवानों के ख्वाबों की, किसानों की मेहनत की, ख्वातीन की कामयाबियों की और उन छोटे बड़े अकदामात की जो मुल्क को आगे बढ़ाते हैं। मन की बात हमें याद दिलाता है कि हर शहरी की आवाज़ अहम है, ख्वाब कीमती है और हर कोशिश मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालती है। ये प्रोग्राम हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी ज़िंदगी और समाज में क्या मस्बत तब्दीली ला सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस सफ़र का हिस्सा बने, मन की बात सुने, उससे सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में अमल के चराग रोशन करें, क्योंकि जब हम सुनते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं तो मुल्क की आवाज़ और मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, अगली बार यानी 27 अक्टूबर को जब मन की बात नशर हो, रेडियो के करीब बैठें, दिल को खोलें और इस कौमी गुफ्तगू का हिस्सा ज़रूर बनें। तो आइए सामईन, अब अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम अंदाज़े नज़र।
0: जैसा कि आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम इस प्रोग्राम में किसी ख़ास मौजू पर माहिरीन से उनके ख्यालात जानते हैं और उनसे मुस्तकबिल में होने वाले उसके असरात पर भी गुफ्तगू करते हैं। सहाफत, जिसे कभी मुआशरे का आईना कहा गया, कभी आवाम की आवाज़ और कभी इख्तदार के सामने सवाल उठाने वाली क़ुव्वत, वक्त के साथ सहाफत के ज़राए बदलते रहे। कभी अखबार के सफ़ात खबर का सबसे बड़ा ज़रिया थे, फिर रेडियो और टेलीविज़न ने सहाफत के दायरे को वसी किया और आज डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, डेटा जर्नलिज़म और मसनू ज़हानत यानी AI ने सहाफत के पूरे मंजरनामे को एक नई सिमत दे दी है। आज एक खबर चंद लम्हों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। डेटा के जरिए खबरों के नए जाविये सामने आ रहे हैं और मसनूई ज़हानत खबर की तलाश, तर्जुमे, तजज़िये, तदवीन, हत्ता के मवाद की तैयारी तक में अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या टेक्नोलॉजी सहाफ़ी की जगह ले लेगी? क्या आने वाले दौर में सहाफत ज़्यादा तेज़, ज़्यादा शफाफ और ज़्यादा मौसर होगी, या खबरों की रफ्तार के साथ गलत मालूमात, मसनूई मवाद और एतबार का बहरान भी बढ़ेगा? और सबसे अहम सवाल यह है कि सहाफत के मुस्तकबिल में इंसान कहाँ खड़ा होगा? इन्हीं सवालात पर गुफ्तगू के लिए आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है सहाफत का मुस्तकबिल, डाटा, AI और नई राहें। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जामिया हमदर्द से डॉक्टर AQ सिद्दीकी। आप शोबे ज़राए इब्लाग यानी मास कम्युनिकेशन में दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। मैं आपका खुश आमदीद करता हूँ। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब हैं। आपका ताल्लुक भी ज़रा इब्लाग यानी मास कम्युनिकेशन से ही है और आप भी दरसो तदरीस से वाबस्ता हैं। और सहाफती दुनिया में सरगर्म अमल नौजवान सहाफ़ी मोहम्मद नौमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का प्रोग्राम अंदाज़े नज़र में एक बार फिर से खैर मकदम करता हूँ।
2: यादाब,
3: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
0: आइए अपने गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहले बात करते हैं बदलती सहाफत और टेक्नोलॉजी पर। डॉक्टर AQ सिद्दीकी साहब यानी डॉक्टर अब्दुल क़ादिर सिद्दीकी साहब, सहाफत हमेशा अपने अहद की टेक्नोलॉजी के साथ तब्दील होती रही है। प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक हम एक तवील सफ़र तय कर चुके हैं। आप तदरीस से वाबस्ता हैं और नई नस्ल के तलबा को भी करीब से देखते हैं। आपके ख्याल में डिजिटल इनकलाब ने सहाफत की बुनियादी तस्वूर को किस हद तक तब्दील किया है और क्या आज का सहाफ़ी पहले के मुकाबले में ज़्यादा बाख्तियार है या उस पर जिम्मेदारी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है? आपसे जवाब चाहूँगा।
4: जी, बहुत शुक्रिया। सहाफत ने जो है यकीनन एक जो है लंबा सफ़र तय किया है और इसको देखा जाए तो इसकी पेशन गोई जो है मार्शल मैकलुहान ने बहुत पहले कर दी थी, जिन्होंने ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था उस ज़माने में कि टेक्नोलॉजी इस कदर जो है वो आगे जो है तरक्की करेगी कि सारी दुनिया सिमट के गांव बन जाएगा और हम जो है यहाँ बैठे, हिंदुस्तान में बैठे हुए शायद हम देख सकें अमेरिका में लोग चाय पी

0: हैं, और एक वक्त में जो है जबकि वहाँ दिन और यहाँ रात है, हम साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। और उस तमाम तब्दीली ने यह किया कि फिर मीडिया कन्वर्जेंट का एक लाया, उसने एक बहुत अच्छा एक जो है उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था मार्शल मैक्लुहान ने, जमाने में उन्होंने कहा था कि मीडियम इज द मैसेज, जराए जो दरिया है वही अपने आप में पैगाम है। ये पहले प्रिंट मीडिया था, उसका एक पैगाम था, लोग जानते थे कल सुबह हमें खबर मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो टेलीविजन में आया मालूम हुआ कि शाम में और हर रोज खबर मिलेगी।
1: बिल्कुल
0: जैसे ही वो तब्दील आया मोबाइल में तो हर वक्त खबर मिलेगी,
1: जी।
0: तो मीडियम अपने आप में मैसेज बन गया है। और जब वो कन्वर्जेंट हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि एक ही मीडिया में प्रिंट भी है और वहां पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक भी है,
1: बिल्कुल
0: वहां पे कैमरे भी है, वहां पे एडिटिंग भी है, आपका न्यूज रूम भी वहीं पे है और एडिट रूम भी वहीं पे
1: बिल्कुल
0: है।
1: सही कहा
0: तो
1: आपने।
0: तमाम चीजें जो है मर्ज हो गई और इसने जो है वो सहाफत को एक नई राह पता की और एक नया जो है वो कह सकते एक नए सफर पे ले गया। और यकीनन इसने हदूद जो है वो तोड़ दिए,
1: तोड़ दिए, मिटा दिए
0: जो
1: हमारे
0: हदूद
1: सोशल
0: थे
1: मीडिया
0: कि
1: में।
0: सहाफत जो है हिंदुस्तान की सहाफत, बिलखसूस जो वर्नाकुलर लैंग्वेज की सहाफत थी, जो जो है आपके जो ओरिजिनल लैंग्वेज की सहाफत थी, जो मकामी जबान की सहाफत थी, उर्दू हिंदी बंगाली इस किस्म की
1: जी
0: सहाफत एक खत्ते तक महदूद थी, वो महदूद नहीं रही।
1: बिल्कुल सही
0: अब
1: कहा आपने।
0: जो हिंदुस्तान के वो जो है एनआरआईज जो इस वक्त अमेरिका में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, या वो खलीज में मालिक में है,
1: जी
0: वहाँ भी बैठ करके वो हिंदुस्तान के इनकलाब को, सियासत को, और बीबीसी की उर्दू सर्विस को, या इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस को वो न सिर्फ सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और उसी वक्त बर वक्त अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो
1: जी
0: यकीनन जो है इन चीज़ों ने जो है सहाफत को एक नई जो है वो आज टेक्नोलॉजी ने एक नई, और उसमें एआई ने एक बिलखसूस जो है
1: जी
0: इसको एक नया दिया है कि अब हर शख्स जो है वो अपने आप में एक सहाफी है, एक
1: बिल्कुल
0: जर्नलिस्ट है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब, मैं आपकी तरफ रुख करता हूँ कि आज खबर सिर्फ अखबार, रेडियो, टेलीविज़न के ज़रिए आवाम तक नहीं पहुँचती, बल्कि हर शख्स अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, जैसा कि बताया था सिद्दीकी साहब ने, कि खबर का सारिफ भी है और किसी हद तक खबर का प्रोड्यूसर भी है। ऐसे माहौल में सहाफ़ी और आम सोशल मीडिया सारिफ के दरमियान फ़र्क कैसे बरकरार रख सकता है या कैसे रखा जाए, और एक पेशावर सहाफ़ी की सबसे बुनियादी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए?
2: मेरी नज़र में क्या है कि आज के दौर में जो सहाफ़त हो रही है, जिसके हाथ में मोबाइल है
1: जी
2: वो ख़ुद को मानता है कि वो सहाफ़ी है।
1: बिल्कुल कहें।
2: असल में इंफॉर्मेशन और जर्नलिज्म में थोड़ा फ़र्क है, सहाफ़त में थोड़ा सा फ़र्क है। आज एआई ही कुछ लम्हों में एक ख़बर लिख देती है,
1: खबर लिख
2: आपकी
1: देते
2: आपके
1: बिल्कुल।
2: सामने होती है वो खबर, लेकिन असल में ये इस खबर है या नहीं है ये हमें खुद पहचानना होगा,
1: जी
2: क्योंकि हर खबर जो है या
1: जी
2: हर कोई इत्तला जो है वो खबर नहीं है,
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
2: बल्कि हर खबर जो है वो सहाफ़त हो ही नहीं सकती। आपको ये समझना है कि वो खबर क्या है, इन्फॉर्मेशन आप क्या देना चाहते हैं। आज के दौर में आप सोशल मीडिया देखें, हर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आप जब भी सोशल मीडिया देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्ञान है दुनिया के अंदर,
1: बिल्कुल
2: लेकिन वो ज्ञान आपके लिए है या नहीं
1: नहीं
2: है,
1: है
2: इस चीज़ का हमें खैर ध्यान देना है।
1: जी
2: और आज के दौर में जर्नलिज्म जो है वो शायद जिस तरह से उसे अपनी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए वो एआई के दौर में शायद, मुझे ऐसा लगता है, शायद इसका कुछ और भी
1: बिल्कुल
2: सोचना हो सकता है
1: बिल्कुल
2: कि
1: बिल्कुल
2: आज के दौर में जो एआई के जरिए जो चीज़ें

0: या जर्नलिस्ट हैं, उनकी मेन चीज़ है सहाफ़ी की जो मेन चीज़ मैं मानता हूँ उनकी क्रेडिबिलिटी है। अगर वो अपने कंटेंट में वो क्रेडिबिलिटी लाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है।
1: जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे बीच एक नौजवान सहाफ़ी भी हैं, आप नाज़िम भी हैं, आप एंकर भी हैं। आज न्यूज़ रूम में रफ्तार की बहुत अहमियत है, और न्यूज़ रूम की अगर हम बात करें वहाँ रफ्तार ही है, अगर रफ्तार नहीं है तो आप न्यूज़ रूम में कामयाब नहीं हैं। बाज़ औक़ात सहाफ़ी से तवक्को की जाती है कि वो चंद मिनट में ख़बर तैयार करके शाये या नशर कर दे। आपके तजर्बे में ख़बर की रफ्तार और ख़बर की सेहत के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम किया जा सकता है?
2: बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और हमेशा लोग चाहते हैं कि कोई भी अगर उनके कान में कोई खबर अगर लगी है तो
1: जी
2: उसके ताल्लुक से वो चाहते हैं कि उनको बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन मिले। लेकिन यहीं पर जो अभी पिछले सवाल में आप गुफ्तगू कर रहे थे खुर्शीद साहब से, कि एतबार
1: जी
2: इसका मसला बहुत अहम होता है।
1: जी
2: जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें जर्नलिज्म में हमने ये भी पढ़ा कि सो मच इन्फॉर्मेशन मीन्स नो इन्फॉर्मेशन,
1: नो इन्फॉर्मेशन, यस है।
2: तो आप सभी इस बात से मुत्तफिक हैं। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन में काम की क्या इन्फॉर्मेशन है,
1: जी
2: और यही चीज जो है वो डिफर करती है एक सहाफी को और
1: हाँ
2: एक आम इंसान को, क्योंकि आजकल क्रिएटर लेड कंटेंट बहुत आ रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा।
2: जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस आ जाती हैं, विजुअल कुछ कंटेंट आ जाता है उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्या ये सारी इन्फॉर्मेशन सहाफत है? ये एक बड़ा
1: ये
2: सवाल है।
1: सवाल है।
2: अब इस सवाल के जवाब में आ जाइए उन मीडिया हाउसेस पर जिन पर लोगों ने हमेशा एतबार किया।
1: जी
2: सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा ऑल इंडिया रेडियो ही है, कि किसी भी खबर को नशर करने से पहले उसकी हकीकत को पहचानना, जानना और
1: बिल्कुल
2: उसके बाद लोगों तक पहुंचाना।
1: बिल्कुल
2: जिस रफ्तार की आपने बात की है उस रफ्तार के चक्कर में आज हमने देखा कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से स्प्रेड हो
1: बिल्कुल
2: रही है, और उस मिस इन्फॉर्मेशन को बगैर जज किए हमने समाज में उसके असरात भी देखे जो बहुत तेजी से उस पर हावी होने लगे हैं।
1: बिल्कुल
2: तो
1: बिल्कुल
2: ऐसे हालात में सहाफियों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई। क्या वो डेटा, क्या वो इन्फॉर्मेशन सच है या नहीं,
1: बिल्कुल
2: ये आज भी एक सहाफी की ही जिम्मेदारी है। और इसी बुनियाद पर आज भी जो नौजवान हैं हमारे या मुल्क के जितने भी लोग बाखबर रहना चाहते हैं
1: जी
2: वो इसीलिए कुछ पर्टिकुलर काबिले एतमाद इदारों पर, काबिले एतमाद सहाफियों पर, काबिले एतमाद एजेंसियों पर
1: बिल्कुल
2: भरोसा करते
1: भरोसा
2: हैं,
1: करते
2: क्योंकि
1: हैं।
2: उनको पता है कि यहां से जो खबर आ रही है वही ठीक है। नहीं तो इस दौर में डीप फेक वीडियोस,
1: जी
2: सिंथेटिक इमेजेस,
1: बिल्कुल
2: इस तरह का कंटेंट आपके और हमारे सामने है कि आपकी और मेरी इमेज, सिद्दीकी साहब की और मेरी
1: बिल्कुल
2: वीडियो,
1: बिल्कुल
2: खुर्शीद
1: बिल्कुल
2: साहब की इमेज, हम उसके अंदर सही और गलत का पता लगाना
1: पता
2: मुश्किल
1: ही
2: हो
1: लगाना
2: जाता है।
1: मुश्किल
2: तो बड़ा
1: है।
2: चैलेंजिंग है, लेकिन आपने
1: जी
2: कहा कि हक की राह अब भी बीच के अंदर एक सहाफी की जिम्मेदारी।
1: बहुत शुक्रिया। सामईन किराम, गुफ्तगू अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो रही है जहां सहाफत और टेक्नोलॉजी का ताल्लुक मजीद गहरा हुआ जाता है। आज डेटा जर्नलिज्म महज आदाद व शुमार पेश करने का नाम नहीं रहा, आदाद व शुमार के अंदर छिपी कहानियों को तलाश करना भी सहाफत का एक अहम मैदान बनता जा रहा है। तो अब हम आपसे डेटा जर्नलिज्म और मस्नूई ज़हानत के हवाले से जानना चाहेंगे कि मस्नूई ज़हानत यानी AI सहाफत के तकरीबन हर शोबे को मुतासिर कर रही है। खबर की तलाश, डेटा का तजजिया, तर्जुमा, खुलासा, ट्रांसक्रिप्शन और मवाद की तदवीन जैसे अवामी काम अब मस्नूई ज़हानत की मदद से तेज़ी से लिए जा रहे हैं और लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा ये होता है कि क्या AI सहाफ़ी का मुआविन बनेगा या मुस्तकबिल में सहाफ़ी का मुतबादिल? तो डॉक्टर सिद्दीकी साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि AI के इस्तेमाल से सहाफत में काम की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है, लेकिन मस्नूई ज़हानत कभी कभी गलत मालूमात, जैसा कि नुमान साहब ने कहा, वो भी पैदा कर देती है और कर रही है। तो आपके ख्याल में सहाफत में AI के इस्तेमाल की अखलाकी हदूद क्या होनी चाहिए, और सहाफ़ी को AI से हासिल शुदा मालूमात को इस्तेमाल करने से पहले किस नौयत की जांच पड़ताल करनी चाहिए?
3: जी, काफ़ी अच्छा सवाल है। ये जो
1: जी
3: है इस वक्त ये है कि मस्नूई ज़हानत या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यकीनन एक बड़ा, जब ये ChatGPT जब लॉन्च हुआ, जब वो सामने आया तो ये लगा कि ये नौकरी ख़त्म कर देगी या मुलाजमत ख़त्म कर देगी। लेकिन जो माहरीन का मानना ये है कि ये इसके साथ साथ, जैसे हमने कंप्यूटर से काम शुरू किया था वैसे एक साथ साथ दोस्ती बना के काम कर सकते हैं।
1: जी
3: हम उन पर पूरी तरह से जो है वो रिलाई नहीं हो, बल्कि ये है फर्ज कीजिए कि हमारे पास जो है बहुत से रिपोर्टर हैं जो बहुत अच्छे जबान नहीं लिख पाते हैं, लेकिन अच्छी रिपोर्टिंग कर लेते हैं। अब उनकी जबान बड़ी खराब होती है, तो एक बहुत वक्त जा रहा था उसको सही करने में। तो हम एआई को यूज कर सकते हैं कि ठीक है, इसको जल्दी से इस कॉपी को आप फ्रेश कर दें और हम उसको दोबारा देख सकते हैं। जैसे

0: मान लिया कि हमारे पास ऑलरेडी एक तस्वीर है, उसका कैप्शन है या एक हेडिंग देनी है, कुछ वक्त हमें बहुत टाइम लग जाता हेडिंग देने के लिए, हम उससे जो है 4-5 सजेशन मांग सकते हैं और फिर उसको देख करके एक सजेशन हम ले सकते हैं उसके अंदर। तो इस मामले में माविन हो सकता है। यहाँ पे दिक्कत वहीं आएगा, अखलाकी हदूद वहीं आ रहे हैं जहाँ पे हम जो है पूरी तरह उस पर रिलाई हो जा रहे हैं, हम पूरी तरह जो है मुकम्मल या कुल्लिया एतबार कर ले रहे हैं मसनू ज़हानत पे और जो कुछ वहाँ से आ रहा है, क्योंकि मसनू ज़हानत भी कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन ले रही है और वहाँ से कॉपीराइट का मसला पैदा हो रहा है। इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो है ओपन एआई पे एक बड़ा मुकदमा दायर किया था कि उनके जो है वो लाखों आर्टिकल्स चोरी कर लिए बगैर इजाज़त के, और ऐसे बहुत सारे लोगों के जैसे कल की बात है 1980s के जो चल रहे थे उसमें यकीनन वो तमाम जो जमाने के जो स्टार्स थे उनकी तस्वीरों के जो है ऊपर जो है वो आपका चेहरा लग रहा था।
1: बिल्कुल।
0: तो ये सब जो है कह सकते हैं कि अखलाकी तौर पे जो है अगर देखा जाए तो ये कॉपी राइट्स के जो है वो एक कह सकते हैं कि उसकी वायलेशन है या उसके खिलाफ वर्जी है।
1: तो इसकी जांच पड़ताल कैसे की जाए, कैसे इस पे हम
0: कई एक सॉफ्टवेयर इस पे आ गए हैं जिसमें जो है वो एआई के जो जैसे रिसर्च राइटिंग में जो है ये तो और न्यूज राइटिंग में भी उसमें डालते ही वो कह देते हैं कि ये सब जो है एआई जनरेटेड है,
1: यानी एआई को पकड़ने के लिए एआई ही चाहिए।
0: अच्छा आर्टिकल इस पे एक आया है, मैंने पढ़ा एक अच्छा आर्टिकल है, पब्लिश हुआ था पिछले साल कि हिंदुस्तान में कई एक अच्छी न्यूज एजेंसी ने जो है बाजाबता अब यह काम बढ़ गया कि दो जर्नलिस्ट इस पे मुकर्रर किए गए हैं कि वो जो एआई से लिखी खबरें आ रही हैं वो उसकी निशानदेही करे कि कहां कहां पे डेटा में गलत हुई है। जैसे बहुत से साइटेशन जो होते हैं एआई सबसे ज्यादा गलती कहां कर रहा है, साइटेशन में। वो एक नई साइटेशन जो जनरेटिव एआई है जो मसनू ज़हानत है ज़हानत वो क्या कर रही है कि साइटेशन जो है जो रेफरेंस है जो हवाला जात है वो खुद से क्रिएट कर दे रही है और उनके जो हवाला जात होते हैं वो मुस्तनद किताबें नहीं होती हैं।
2: मैं आपको बताऊं कि जैसे कि सिद्दीकी साहब ने बताया कि एआई जो है वो रिसर्च भी कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। आजकल रिसर्च मुझे ऐसा लग रहा है कि एआई के जरिए बहुत लोग कर रहे हैं और उसे वो एआई ना लगे इसके लिए भी वो एआई टूल यूज कर रहे हैं ह्यूमनाइज करने के लिए। आपने देखा होगा कि वो आपकी जबान में आप ही की लहजे में उस तरह से बात कर रहा है, ह्यूमनाइज कर रहा है उस चीजों को। तो एआई के दौर में डेटा तो आपके पास है लेकिन सहाफी का मेन काम जो है, मकसद जो है वो ये है कि ये डेटा क्यों है,
1: बिल्कुल
2: इसकी तलाश करना,
1: कहाँ से है
2: और कहाँ से है
1: इसका सोर्स,
2: इसका सोर्स कहाँ है, ये सारी तलाश करना।
1: तब्दीली की गई उसके अंदर भी यही मकसद था कि सिंथेटिक इमेजेस जो हैं इस कंटेंट को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए और कहीं ना कहीं किसी ना किसी को जिम्मेदार बनाया जाए इस कंटेंट के लिए और उसको हटाने के लिए भी एक बाकायदा मुद्दत तय की जाए। क्योंकि इस तरह का कंटेंट अगर फैलता रहा तो हम समाज के अंदर देखेंगे कि बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा,
2: कंफ्यूजन।
1: तो उसको दूर करने के लिए इस तरह बल्कि अगर देखें तो इंडिया एआई पोर्टल के जरिए एक कोशिश की गई है बहुत अच्छी, जिसके अंदर नौजवानों को एआई के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जान सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हुकूमत की इस मामले में बहुत अच्छी पहल।
3: जी बिल्कुल सही कहा खुर्शीद आलम साहब। तो आप ये बताएं कि आपके ख्याल में डेटा जर्नलिज्म को आम कारी और सामे के लिए काबिल फहम और मौसर बनाने के लिए सहाफ़ी को किन महारतों की ज़रूरत पड़ सकती है?
2: असल में हमारे पास इत्तला बहुत सारी है, डेटा की कोई कमी नहीं है हमारे पास। और असल में हमारे पास जो मेन चुनौती जो है वो ये है कि डेटा को हम कैसे पढ़ें और उससे आवाम तक हमें कैसे पहुंचाना है। सहाफ़ी का जो काम मैं आपको अभी बता रहा था कि उसका काम ही ये है। आप देखेंगे जब आप कभी एआई पे प्रॉम्प्ट डालते हैं तो आपकी बात से वो एग्री करता है कि हाँ आपने सही कहा। आप अगर उसके डेटा को गलत कहते हैं कि नहीं आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो वो एग्री करता है,
1: एग्री करता है
2: कि हाँ मैंने ये गलत इन्फॉर्मेशन दी है और अब मैं इसे दोबारा दे रहा हूँ।
1: अच्छा, अपनी दी हुई इन्फॉर्मेशन के बाद भी वो नीचे लिखता है कि एआई गलती कर सकता है,
2: बिल्कुल
1: बराए मेहरबानी से चेक कर। ये एक अपने आप में हम लोग
2: पूरी तरह से हमें डेटा उस डेटा पर रिलाई नहीं करना।
0: जैसे कि एआई को जो है उर्दू और हिंदी पढ़ाने वालों में एक नाम जो है वो खालिदा खान का है।
2: हाँ।
0: तो उन्होंने लिखा है कि मैंने उसको जो है उर्दू और हिंदी सिखाया है। हाँ। तो जो उनकी जो जितनी उनकी समझ होगी उर्दू हिंदी की वो नहीं समझाया होगा।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। लेकिन अब उसके कहीं भी काम हो रहे हैं, लोग अलग अलग लोगों से करवा रहे हैं काम, ये तो अच्छी बात है। नुमान साहब ये बताएं कि एक तरफ एआई न्यूज़ रूम के बहुत से काम को आसान बना रही है, दूसरी तरफ खदशा जाहिर किया जा रहा है जैसा भी बता रहे थे कि उसके बाद सहाफत में इंसानी रोजगार के मौके मुतासिर हो सकते हैं। हालांकि अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि नहीं, दो लोग और रखे गए हैं ये चेक करने के लिए कि सही दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो आप सहाफती मैदान के अमली सूरत हाल को देखते हुए बताइए कि क्या एआई सहाफियों के लिए खतरा है या एक नया मौका

0: और मुस्तकबिल के सहाफी को अपनी बफा और तरक्की के लिए कौन सी महारतें और सीखनी होगी और कैसे अपने आप को बेहतर करना होगा?
1: बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया। बहुत सारे लोग सोचते हैं मसनूई ज़हानत के ताल्लुक से कि शायद इससे इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमेशा सहाफत जितनी तरक्की हुई टेक्नोलॉजी की उतनी सहाफत की रफ्तार बढ़ी है
0: जी।
1: प्रिंट से रेडियो पर आए, रेडियो से टेलीविज़न पर आए, फिर डिजिटल मीडिया पर चले गए हम लोग, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से मोबाइल जर्नलिज्म और अब हम ये मसनूई जहानत का दौर भी देख रहे हैं। इसका आंसर भी बातचीत में मिला कि दो लोग और मुकर्रर किए गए। इसी तरह से सब जगह पर लोगों की तकरारी हुई है, लोग जानते हैं, समझते हैं, लेकिन आने वाला दौर जो है ना, इसके अंदर हमें यह समझना होगा कि सहाफत के अंदर तीन लफ्ज मिक्स हो जाएंगे और इन तीन के बगैर गुजारा नहीं है।
0: ओके,
1: मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस डेटा प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस। बगैर इसके आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
2: जरूरी है।
1: अब अगर आप इसको ह्यूमन इंटेलिजेंस और ह्यूमन टच नहीं देते हैं तो वो जो इसको ले रहे हैं
0: जी,
1: सारिफ जो है वो ह्यूमन है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: उसको अपना एक ह्यूमन एंगल चाहिए, उसको जमीन की रियलिटीज के साथ न्यूज चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: उसको अपनी जुबान में और अपने अंदाज के अंदर खबर चाहिए। और एआई ये नहीं जानता है कि आपके यहाँ की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की, आपके शहर की, आपके मुल्क की ग्राउंड रियलिटीज क्या है।
0: बिल्कुल।
1: वो शायद वो आंकड़े आपको दे दे जो उसको अवेलेबल थे इंटरनेट पर, लेकिन एक सहाफी ये जानता है कि जितना कुछ ये बताया गया है, मुझे पता है कि 50 साल में इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ है। वो शायद आपका तजुर्बा हो कि जहां हम मीडिया के बच्चों को पढ़ाते हैं या उनके पास जाते हैं, तो आप लोग भी, सिद्दीकी साहब आप भी, खुर्शीद साहब आप भी, मीडिया एथिक्स की बात होती है। यही आकर के एक सहाफी जीत जाता है मसनूई जहानत से। क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज स्टोरीज लिखते हैं, जब उसको तैयार करके समाज के लिए पेश करते हैं, तो यहाँ जिसके पास एथिक्स है, उसके पास वैल्यूज हैं, उसके पास सच है, उसके पास हकाइक है, और उसको पेश करने का तरीका है।
0: बिल्कुल, आपने सही फरमाया।
2: मुझे लगता है कि सच्चाई जो है वो ये है कि हमें इस टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है, जैसे कि पहले कंप्यूटर आया तो लोगों को लगा कि बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारे लोग काम से निकाल दिए जाएंगे,
0: बहुत अच्छी मिसाल दिया,
2: ये चीजें थी। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी है, आपको इससे ऊपर काम करना है। अब वो आपके पास टूल्स हैं, आपके इंफॉर्मेशन निकालने के लिए टूल्स हैं, आप उससे ऊपर काम कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी आने के बाद।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जब भी कोई नई चीज आती है तो अपने साथ कुछ अच्छी चीजें लाती है तो कुछ बुरी चीजें भी लेकर आती है। तो सबसे अहम काम आज ये है कि जो हमारे नए सहाफी हैं उनको सिर्फ सहाफत ही नहीं पढ़ना है बल्कि मशीन को भी पढ़ना है, यानी एआई से भी वाकफियत जरूरी है। अगर एआई से वाकफियत आपकी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते हैं, उसकी गलतियों को आप नहीं पकड़ सकते। जैसा शुरू में आपने कहा था कि एआई के गलतियों को पकड़ने के लिए ही एआई ही बनाया गया है, लेकिन इन दोनों की गलती को पकड़ने के लिए इंसान खुद मौजूद है। शुक्रिया। अब हम गुफ्तगू के तीसरे और आखिरी दौर में दाखिल हो रहे हैं। सहाफत का मुस्तकबिल सिर्फ टेक्नोलॉजी का सवाल नहीं है, ये एतबार, अखलाकियात जैसा बताया आपने, रोजगार, जबान, इंसानी अकदार और समाजी जिम्मेदारी का भी सवाल है। आज दुनिया भर में न्यूज रूम का तस्वुर बदल रहा है। मोबाइल जर्नलिज्म, पॉडकास्ट, शॉर्ट वीडियो, डेटा स्टोरी, न्यूज लेटर, सिटीजन जर्नलिज्म और एआई से तैयार होने वाला मवाद सहाफत के लिए नए इम्कान पैदा कर रहा है। तो क्या हम एक ऐसी सहाफत की तरफ बढ़ रहे हैं जहां अखबार की जगह प्लेटफॉर्म, खबर की जगह डेटा और पोर्टल की जगह एल्गोरिदम ले लेगा, या मुस्तकबिल की सहाफत टेक्नोलॉजी और इंसानी जहानत के इश्तराक से एक ज्यादा मजबूत सहाफत होगी? जामियात सहाफत के मुस्तकबिल के सहाफी तैयार करती है, लेकिन सहाफत की दुनिया जिस रफ्तार से तब्दील हो रही है, क्या हमारे मौजूदा तालीमी निसाब भी इसी रफ्तार से तब्दील हो रहे हैं? तो डॉक्टर अब्दुल कादिर सिद्दीकी साहब, आपके ख्याल में सहाफत की तालीम में डेटा, एआई, डिजिटल मीडिया और नई टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए किन बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है?
3: ये काफ़ी अच्छा आपने जो है वो सवाल पूछा है, और यकीनन इस वक्त जो है, चूंकि मैं तदरीस से वाबस्ता हूँ, हम जो है हर साल जो है सिलेबस को अपडेट करते हैं हर एक BOS में, और हमने डिजिटल मीडिया जो है वो हमने जो है वो 2 सेमेस्टर लगातार उसको पढ़ाते हैं, 3 सेमेस्टर तक, ताकि जो चीज़ें कमी रह जाए वो आगे तक उसको और एडवांस लेवल पे ले जाते हैं
0: जी।
3: और इसमें कह सकते हैं कि जैसे जिस तरह की तब्दीली आई है उसे, सपोज जैसे आप मान लें सहाफत में अगर बात करें तो उसमें कई तरह की सहाफत होती है। अगर मान लिया डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं आप, बहुत से जो है चीज़ें हैं, अब फोट नहीं है, तो एक फोटो हमने डाला एआई से, हमने कहा कि इसको मुकम्मल करने के लिए उनकी दीवारों को जो है उसी पे जो है एक अंदाज करते हुए, तो जहां जहां पे हमें फोटोज नहीं मिल रहे थे तो वो वहां पे वो क्लियर कर दे रहा है।

0: एक बहुत अच्छी चीज आ रही है। अहम बात यह है कि अखलाकी अकदार जो है सहाफत की वो न मरने पाए, उसका भी खास ख्याल रखा जाता है, बच्चों के होता है नशी कराया जाता है। इस मामले में मेरे ख्याल में गांधी जी ने जो कहा था कि हिंदुस्तान की अवाम सहाफत पे ऐसे ही यकीन करती है जैसे कि गीता और कुरान पे।
1: मुर्शिद आलम साहब, जैसा कि अभी सिद्दीकी साहब ने कहा कि एतमाद बड़ा चैलेंज है, कि आज सहाफत के सामने एक बड़ा चैलेंज एतमाद का बहरान ही है। फेक न्यूज़, डीप फेक, जैसा आपने बात की थी, मस्नूई तस्वीर और एआई से तैयार करदा मवाद ने ये सवाल पैदा कर दिया है कि आम आदमी सच और झूठ में फ़र्क कैसे करे। आपके ख्याल में मुस्तकबिल की सहाफत में एतमाद और साख को बरकरार रखने के लिए सहाफ़ी मीडिया इदारों और तालीमी इदारों को क्या किरदार अदा करना होगा?
2: मेरे नज़दीक सहाफत का मुस्तकबिल ना तो सिर्फ डेटा है ना सिर्फ एआई और ना ही सिर्फ इंसान है। मुस्तकबिल इन तीनों के सही कहें कि इम्तिजाज में है। डेटा हमें हकीकत के करीब लाता है और एआई हमें तेज और बेहतर बना रहा है, लेकिन उस हकीकत को समझना, उसकी तहकीक करना और उसे ईमानदारी के साथ आवाम तक पहुंचाना, ये एक सहाफ़ी की ज़रूरत भी है। और सिद्दीकी साहब ने बताया कि सहाफ़ियों को सिखाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, और मैं बताऊं कि मैं भी कहीं कॉलेज में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो उन्हें एआई जो प्रोग्राम्स हैं, हमने एक कोर्स शुरू किया जिसमें एआई पावर्ड जर्नलिज्म है। हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि उसमें डेटा उन्हें कैसे सर्च करना है। वीडियो आजकल देखते हैं आप, जो वीडियोस हैं आजकल एडिटिंग एआई से हो जाती है, सारी चीजें हो जाती हैं। बाकायदा आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और उसमें वो इमेजेस भी बना देता है, उसमें वीडियोस भी बना देता है। तो किस तरह से सहाफत जो है वो एआई के जरिए हो रही है, किस और किस क्रेडिबिलिटी के साथ आपको करना है, ये सारी चीजें उस कोर्स में हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुस्तकबिल जो सहाफत का है वो उरूज पर है और आगे रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जरूरत यह है कि क्रेडिबिलिटी, जो मैंने पहले भी कहा था कि वो बनाए रखें, डेटा जो आपने आपके पास है उसे वेरीफाई जरूर कर लें।
1: जी बहुत शुक्रिया आपका। नुमान साहब, आखिर में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि अगर हम आज से 10 या 15 बरस आगे की सहाफत का तस्वूर करें तो आप उसे कैसा देखते हैं? क्या मुस्तकबिल का सहाफ़ी सिर्फ खबर लिखने वाला होगा या उसे डेटा एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, वीडियो क्रिएटर, तहकीककार या कहानीकार या सब कुछ एक साथ करना पड़ेगा? और इस पूरे मंजरनामे में इंसानी सहाफत की सबसे बड़ी ताकत क्या होगी?
3: बहुत अच्छा सवाल आपने किया और उसका आपने जवाब भी दिया कि ये सब उसको होना होगा।
1: जी
3: तो इस तरह से, क्योंकि आपने कहा कि उसको लिखने वाला, तो ये लिखने का काम भी अब चला गया है उसके हाथ से, तो अब उसको सिर्फ चेक करना है।
1: अब सिर्फ
3: पहले कॉपीराइट होता था, अब कॉपी एडिट हो जाती है, तो वो भी अब उसके पास से चला गया। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांस होना ये बहुत जरूरी है, जिस तरीके से हमारे दोनों साहिबान ने बताया कि अब ये कोर्स का हिस्सा हो गया है और ये जितने भी स्टूडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं अब ये उनके लिए लाजमी है कि वो इस तरह की टेक्नोलॉजीज को सीखते हुए चलें। जैसे किसी वक्त में कंप्यूटर के ताल्लुक से ऐसे ही सवाल किया गया होगा जैसे आप इस वक्त कर रहे हैं कि अब ये कंप्यूटर आ गया, अब जो ये लोग स्टोरीज लिखते हैं, जो खबरें लिखते हैं, इनका क्या होगा? लेकिन आज भी उसी तरह से लिखी जा रही हैं और दायरा बहुत तेजी से सहाफत का बड़ा है।
1: देखिए मैं,
3: क्योंकि हमने ये देखा कि जो लोग प्रिंट में थे अभी तक, आप उनको आज देखते हैं कि उनकी शॉर्ट वीडियो सामने आ जाती है बहुत तेजी से, और वो कभी कभार उनके प्रिंट से ज्यादा तेजी से बढ़ रही होती हैं। तो आज का जो सहाफी है उसके सामने चैलेंजेस तो हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ दायरा बहुत बड़ा है। आज का सहाफी बहुत कुछ सीख रहा है आगे के लिए, रास्ते जो हैं वो माकायदा लंबे तो रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है कि आज मस्नूई जहानत ने उन रास्तों को आसान भी किया है।
1: बिल्कुल सही, कोई शक नहीं है, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि रास्ते लंबे रहे हैं और लंबे रास्ते ही कामयाबी के जामिन होते हैं। अगर शॉर्टकट का आपने इस्तेमाल किया तो आप कहीं भटक जाएंगे, रह जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। शायद मुस्तकबिल की सहाफत वो नहीं होगी जिसमें इंसान और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के मुकाबले खड़े हों, बल्कि वो सहाफत होगी जिसमें इंसानी जहानत और मस्नूई जहानत एक दूसरे के मुआविन बने। मैं अपने तमाम मुअज्ज़ज़ मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, डॉक्टर एकीउ सिद्दीकी साहब, डॉक्टर खुर्शीद आलम साहब और मोहम्मद नौमान हाशमी साहब। आपने नहायत अहम और फिक्र अंगेज नुकात हमारे सामईन के सामने रखे। सामईन, आपको ये भी बताता चलूं कि इस प्रोग्राम की तरतीब व पेशकश थी इंतज़ार सैफी की। तो सामईन अकराम, इसी उम्मीद के साथ कि हम बदलती हुई दुनिया

सामईन के सामने रखें। सामईन, आपको ये भी बताता चलूं कि इस प्रोग्राम की तरतीबो पेशकश थी इंतजार सैफी की। तो सामईन इकराम, इसी उम्मीद के साथ कि हम बदलती हुई दुनिया को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि समझेंगे, सवाल करेंगे और अपने अंदाज़े नज़र को वसी करेंगे कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए मौजूआत और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम बिंदु तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए। एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: श्री मोदी ने कहा कि सेवा की भावना से ही 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीति, चुनाव और शासन व्यवस्था का अपना महत्व है, लेकिन देश निर्माण के लिए सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से इतर G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए। संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटान करना और शासन में सुधार करना है। ये अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया है। वर्ष 2026-27 के प्रवेश सत्र के विभिन्न एमडी, एमएस, डीएनबी, डॉक्टर, एनबी 6 वर्षीय पाठ्यक्रम और पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 30 अगस्त को देश भर में परीक्षा आयोजित की गई थी। जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का पदक जीतने का सिलसिला आज भी जारी है। अनंतजीत सिंह और परिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी में मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इससे पहले रोशिबिना देवी ने वुशु में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष डबल्स टीम ने ग्रुप ए मुकाबले में चीनी ताइपे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही टीम का पदक सुनिश्चित हो गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: engagements. The deep depression over the Bay of Bengal crossed the North Andhra Pradesh, South Odisha coast near Kalingapatnam between late last night and early this morning, triggering heavy to extremely heavy rain in several parts of Odisha. The system has moved inland and continues to influence weather conditions over southern and coastal districts, with waterlogging and localized flooding reported at several places. The deep depression, after crossing the North Andhra Pradesh South Odisha coast near Kalingapatnam, has moved inland and is gradually weakening. However, its impact continues to be felt across Odisha, with heavy rain, waterlogging and landslides reported in several southern districts. The United States and China have agreed to extend their trade war truce by 2 months, giving both sides more time to work towards a potentially broader economic agreement. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent said the arrangement, known as the Busan Agreement, will now be extended until January 10th. The original truce was due to expire on November 10th this year. Benchmark domestic equity indices slumped over 1.6% lower today. The Sensex tanked 1,248 points to close at 73,581. The Nifty plunged 384 points to settle at 23,063. And that is the end of this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब वक्त है कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने का। इस क्रम में सबसे पहले खोए व्यक्ति का नाम है कविता रावत, इनके पति का नाम है ब्रजभान। अंतिम बार इन्हें बीरखेड़ा गेट थाना सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर में देखा गया है। इनकी आयु 37 वर्ष है, कद लगभग 5 फुट है, शरीर की बनावट औसत शरीर है, रंग गोरा है। कविता अपने घर से बिना बताए चली गई हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना सिकंदराबाद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है शाहरुख, इनके पिता का नाम है साउद्दीन। शाहरुख को अंतिम बार 3/8/2026 तक देखा गया है। इनकी आयु 25 वर्ष है, कद 5 फुट 5 इंच है, शरीर की बनावट पतला लंबा शरीर है और चेहरे का रंग गेहुआ है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना औरंगाबाद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है कोमल देवी, इनके पति का नाम है देवेंद्र सिंह, निवासी ग्राम मिर्जापुर भट्टा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर। कोमल देवी को अंतिम बार ग्राम मिर्जापुर में देखा गया है। आयु 24 वर्ष है, कद 5 फुट 5 इंच है, शरीर की बनावट सामान्य शरीर है, चेहरा गोल है और रंग गोरा है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना देहात बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। अगले खोए व्यक्ति का नाम है श्रीमती प्रवेश, पति का नाम है श्री धीरज, निवासी ग्राम बहरिया हरिद्वारपुर थाना डिबाई जिला बुलंदशहर। हाल का पता है ग्राम रजपुरा थाना सिकंदराबाद बुलंदशहर। इन्हें अंतिम बार दिनांक 12/8/2026 दिन बुधवार समय करीब 7 बजे इनके अपने घर पर ही देखा गया है। इनकी आयु 45 वर्ष है, कद 5 फुट है, शरीर की बनावट मध्यम शरीर है, चेहरे का रंग गोरा है। यदि इनके बारे में आपको कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना सिकंदरापुर जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है साक्षी, इनके पति का नाम है एकलव्य, अंतिम बार इन्हें

दिनांक 17/8/2026 दिन सोमवार को देखा गया है। इनकी आयु करीब 21 वर्ष है, कद औसत है और चेहरे का रंग गोरा है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना देहात जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है चंद्रपाल। अंतिम बार इन्हें तहसील शिकारपुर ग्राम करीरा सोमवार 17/8/2026 तक देखा गया है। आयु 70 वर्ष है, कद 5 फुट 5 इंच है। शरीर की बनावट धौरा शरीर है, चेहरे का रंग सांवला है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना शिकारपुर जनपद बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है श्रीमती अनीता। अंतिम बार इन्हें दिनांक 3/9/2026 को देखा गया है। आयु 28 वर्ष है, कद 5 फुट 2 इंच है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी थाना अहमदगढ़ बुलंदशहर में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम युव वाणी।

0: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी केंद्र प्रस्तुत चैनल पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट गौरी तिवारी, और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
1: प्राची, और हम लेकर आए हैं आपके लिए ढेर सारी बातें और एक परफेक्ट प्लेलिस्ट।
0: प्राची, क्या तुम्हें साइंस, स्पेस और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है?
1: हाँ बिल्कुल, हाल ही में कुछ खबरें पढ़कर तो मुझे बहुत गर्व हुआ, और उम्मीद है कि सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हमारे श्रोताओं को भी यह जानकर गर्व होगा कि जहां भारत एक ओर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर अपनी अद्वितीय पहचान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर खेल के मैदानों में हमारे खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से देश का मान बढ़ा रहे हैं।
0: तो आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे समुद्र और उसकी सकारात्मकता पर, इसरो की उड़ान की स्पोर्ट्स की बात करते हुए एशियन गेम्स में भारत का नाम रोशन करते खिलाड़ियों की और उनकी उपलब्धियों की, जानेंगे कुछ नए और रोचक तथ्य और पलटेंगे इतिहास के पन्नों को।
1: हमारे प्यारे श्रोताओं, यदि आप इस वक्त ऑफिस से घर लौट रहे हैं, घर पर चाय का लुफ्त उठा रहे हैं या सफर में हैं, तो उम्मीद है कि आज का यह कार्यक्रम आपके दिन को और खास बना देगा।
0: शाम का समय हो और चाय ना हो, नहीं मेरे लिए तो यह नामुमकिन है। तो एक गर्म चाय का कप उठाइए और शाम का आनंद लेते जिए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन की यही छोटी छोटी खुशियां आपके जीवन को और अधिक खूबसूरत बनाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमसे। सुनते हैं फिल्म दिल्ली का ठग का गीत, ये रातें ये मौसम।

0: ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कितना सुकून भरा ये गीत है। वेलकम बैक टू योर वाणी।
1: प्राची, तुम्हारे मन में समुद्र शब्द सुनते ही सबसे पहले क्या आता है?
0: सुकून, स्वतंत्रता।
1: बिल्कुल, समुद्र को देखते हुए एक ही बात अक्सर मन में आती है कि इसकी लहरें कितनी स्वतंत्र हैं। न कोई सीमा, न कोई बंधन, बस निरंतर गतिशीलता।
0: सही कहा, लेकिन इस अथाह जलराशि, उसकी लहरों के पीछे छिपी है एक विशाल दुनिया, जहाँ जहाज चलते हैं, नाविक दूर दूर तक यात्राएं करते हैं, और समुद्री मार्ग दुनिया के अलग अलग देशों को एक दूसरे से जोड़ते हैं।
1: यानी

0: निरंतर गतिशीलता, सही कहा, लेकिन इस अथाह जलराशि, उसकी लहरों के पीछे छिपी है एक विशाल दुनिया, जहाँ जहाज चलते हैं, नाविक दूर दूर तक यात्राएं करते हैं और समुद्री मार्ग दुनिया के अलग अलग देशों को एक दूसरे से जोड़ते हैं।
1: यानी जिस समुद्र को हम अक्सर छुट्टियों, तस्वीरों और सुकून से जोड़कर देखते हैं, वही समुद्र दुनिया व्यापार के, परिवहन, विज्ञान

0: ऐसे ही आप भी सकारात्मकता के साथ जिंदगी के छोटे छोटे लम्हों में खुशियां ढूंढते रहिए।
1: आप बने हुए हैं युवाणी के साथ। सोचा जाए तो एग्जाम्स प्रिपरेशन और प्रेशर के बीच कभी ना कभी सेल्फ डाउट तो सबको ही होता है,
0: लेकिन उस डाउट को पार करके अपने गोल तक कैसे पहुंचा जाए?
1: तो चलिए आज मन से माइक्रोफोन में सुनते हैं हमारे साथी शैलजा की CUET टॉपर ईशान शहबादी से हुई ये खास बातचीत।
2: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के युववाणी कार्यक्रम में मन से माइक्रोफोन तक सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ईशान शहबादी, जो दिल्ली के रहने वाले हैं और अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ यानी कानून की स्टडी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये CUET 2022 और 2026 में टॉपर भी रह चुके हैं। ईशान, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार शैलजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए।
2: तो ईशान, CUET से पहले आपने अपनी तैयारी कैसे शुरू की थी? ऐसी कोई स्ट्रेटजी या रूटीन जो आपके लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहा हो?
3: जी शैलजा, जो मेरा बैच था वो प्रथम बैच था CUET का। उसी साल CUET एग्जाम दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए ये इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय मैं सूचित नहीं रहा था इस एग्जाम के बारे में, क्योंकि मेरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर ही केंद्रित थी। जब इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आई, जब हमें टीचर्स से सुनने को मिला ये एग्जाम देना शायद आपके लिए अनिवार्य है अगर आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी ग्रेजुएट डिग्री परस्यू करनी है, तो तब मैंने इस एग्जाम का फॉर्म भरा। बल्कि मेरे तो पहली बार इस एग्जाम फॉर्म भरने में एक गलती भी हो गई थी, और मेरा शायद भाग्य उस समय अच्छा था कि एक दिन के लिए उन्होंने करेक्शन विंडो खोल दी थी जिसमें मैं अपना फॉर्म ठीक कर पाया।

0: ओके, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी एग्जाम देना है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से
1: जी
0: पढ़िए।
1: बिल्कुल
0: जी ईशान, टॉपर बनना एक बात होती है, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान प्रेशर और सेल्फ डाउट्स भी बहुत आते हैं, तो आपने इन मोमेंट्स को कैसे हैंडल किया?
1: जी। मेरे लिए जो आपने बात की अभी सेल्फ डाउट की, वो शायद मेरे में थोड़ा ज़्यादा था, क्योंकि जब आपने फॉर्म गलत भर दिया हुआ, हर जगह प्राइवेट यूनिवर्सिटी के फॉर्म भर रहे थे, मैं हर जगह अपनी एप्लीकेशन दे रहा था कि कोई ना कोई सरकारी यूनिवर्सिटी का शायद फॉर्म खुला हो, पर उस समय तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो जब मुझे ये मौका मिला, मुझे याद है आज भी कि मैंने अपने पिताजी से वो वचन दिया था कि मैं ज़रूर इसमें सफल होऊंगा और ज़रूर आपका नाम रोशन कर पाऊंगा। और सेल्फ डाउट की जहां तक बात आती है, सेल्फ डाउट अगर आपकी तैयारी के बीच में आ गया तो आप शायद तैयारी उस

0: लेवल पर नहीं कर पाएंगे जितना आप बिना सेल्फ डाउट के कर सके। और जहां तक तैयारी बिना किसी प्रेशर की बात आती है, आप उसमें ये मत कीजिए कि मैं फोन अब स्विच ऑफ रखूंगा 6 महीने 4 महीने, टीवी नहीं देखूंगा, दोस्तों से नहीं मिलूंगा जुलूंगा। ये सब चीजें भी करिए और साथ साथ अपनी तैयारी को भी समय देते रहिए, उसको साथ साथ बैलेंस कीजिए ताकि आप एक प्रसन्न मन से आप तैयारी कर सकें।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही प्रेशर ले लेते हैं, अपना सोशल लाइफ से कट हो जाते हैं। और मेरे ख्याल से आप जितना सोशलाइज करेंगे या थोड़ा बहुत समय प्रिपरेशन के दौरान अपने दोस्तों के साथ खुलेंगे, मिलेंगे, फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, तो वो प्रेशर थोड़ा कम होता है, और जो कि ज़रूरी भी है। बहुत से स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं लेकिन सही तरीके से उनका रिवीजन नहीं हो पाता है, मॉक टेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपकी प्रिपरेशन में इन दोनों की क्या इम्पोर्टेंस रही है?
0: सबसे पहले शैलजा जी, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि 12वीं कक्षा के जो बोर्ड एग्ज़ाम है, कई सारे छात्र छात्राओं के मन में उनका महत्व कम हो जाता है। मैं इस पर अलग से बात करना चाहूँगा क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं वो डायरेक्टली आपका काम आएगा CUET की तैयारी में, क्योंकि उसका भी सिलेबस जो है वो सिर्फ और सिर्फ NCERT बेसिस पर ही बनाया जाता है, तो वो आपको काम आने वाला है आपके आगे एंट्रेंस एग्जाम में। अब जहाँ तक आपकी सही तरीका एक तैयारी करने का, किसी के लिए भी एक कोई सही तरीका नहीं होता, हर कोई अपने अपने गति पर तैयारी करता है। आप जब तैयारी कर रहे हो इस एग्जाम की स्पेसिफिकली, तो आप जब NCERT पढ़ेंगे आप कोशिश कीजिए कि आप मल्टीपल रीडिंग्स करें, और उसके बाद जब आपकी रीडिंग खत्म हो गई है आप जितने मॉक टेस्ट दे सके आप उतने दीजिए, आपका उतना ही उस एग्जाम का डर शायद थोड़ा कम हो जाएगा, उतने ही यूज्ड टू हो जाएंगे उस एग्जाम को देने में,
1: उतना ही कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ईशान, अभी आप LLB परस्यू कर रहे हैं, तो आप आज के टाइम पर जो पीछे मुड़कर अपने डिसीजंस को देखते हैं, तो क्या वो टर्निंग पॉइंट था जब आपने डिसाइड किया कि आप मुझे LLB परस्यू करनी है?
0: जी, मैं ऐसा कुछ कानून को लेके मेरी रुचि नहीं थी जब मैंने बैचलर्स का एग्जाम दिया था, जब मैं बैचलर्स पढ़ रहा था, परंतु जब एक अच्छे वातावरण के कॉलेज में जब आपको एडमिशन मिलता है तो आपके पास मार्गदर्शन देने के लिए कई अच्छे प्रोफेसर्स मिलते हैं, आपको सीनियर्स कई अच्छे मिलते हैं, उनसे क्या होता है कि सीधा रास्ता आपको समझाया जाता है जिन पर कई सारे लोग और हमसे पहले शायद चले हैं और उन्होंने सफलता प्राप्त की है। एक तो ये एक बेनिफिट है एक अच्छे वातावरण के कॉलेज में पढ़ने का, तो उसी वातावरण में ही एक आप कह सकते हैं कॉन्शियसनेस ये मिली कि अपनी एक देश सेवा का भाव रखकर अगर हम कुछ कंट्रीब्यूशन दे पाए, अगर हम कुछ बदलाव ला सकें, तो कानून उसके लिए शायद एक काफी डायरेक्ट रास्ता है, एक शायद काफी सीधा रास्ता है। वो भले ही एक न्यायाधीश के रूप में हो या वो एक एडवोकेट के रूप में हो, इन सब करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए मैं एक्साइटेड था, तो इसलिए उस टाइम निर्णय लिया मैंने कि कानून करूं मैं।
1: बिल्कुल ईशान, मुझे लगता है कि अपने राइट्स की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, चाहे हम LLB परस्यू करें या ना करें, लेकिन अपने अधिकारों के बारे में सजग होना बहुत ज़रूरी है। ईशान, आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जो बच्चे खुद को एवरेज मानते हैं वो किस तरीके से अपना एक मोटिवेशन डेवलप करें इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, और साथ में अगर आप अपने 2022 वाले स्टूडेंट सेल्फ से आज मिलते तो उसे क्या मैसेज देना चाहते?
0: मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप एवरेज अभी इसलिए हैं क्योंकि आपने ये टैग अपने ऊपर लगाया हुआ है। आप जिस दिन ये सोचना बंद कर देंगे उसी दिन से शायद आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट शुरू हो सकता है। आप अपने आप को एक एवरेज पर्सन से कंपेयर मत कीजिए, आप हमेशा उस क्षेत्र के जो भी अच्छे प्रतिनिधि रहे हैं आप उनको एक पॉइंट ऑफ कंपैरिजन मानकर खुद की तैयारी ऐसी कीजिए कि उनके लेवल तक आप कम्पीट कर पाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से ही आप कॉम्पिटेंट बन सकते हैं। जब आप बात करेंगे और लोगों से, जब आप जानेंगे उनके बारे में, तो आपको भी एक ड्यूटी फील होगी कि आप उनके लेवल तक का पहुंचे और फिर समाज में सुधार करें। मैं भी 10वीं कक्षा तक एक बहुत साधारण स्टूडेंट ही था। अगर मैं अपने अंकों की बात करूं एग्जामों में, 10वीं के बाद जब मैंने शायद सामाजिक थोड़े दबाव की वजह से मैंने मेडिकल साइंस ऑप्ट किया था, उसमें मेरा पोटेंशियल नहीं सही से एक्सप्लोर हो पा रहा था, इसलिए मैंने बीच में ही कक्षा 11वीं के अपनी स्ट्रीम को बदलवाया। तो मेरी जो एडवाइस रहेगी 2022 वाले ईशान को वो ये रहेगी कि आप किसी भी तरह का तनाव और दबाव में मत आप फंसिए, क्योंकि कोई भी क्षेत्र आजकल के समय में छोटा या बड़ा नहीं है, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, बस आप उस क्षेत्र के मास्टर बने। आप कोशिश करें कि आप अपनी काबिलियत को इतना विकसित कर दें कि आप उस क्षेत्र में रुचि के साथ आप उसमें बिल्कुल अपना बेस्ट कर पाएं।
1: बिल्कुल ईशान, और अपनी रुचि और पोटेंशियल को पहचान करके जो आपने एक बड़ा डिसीजन लिया, दैट वाज रियली कमेंडेबल। थैंक यू सो मच हमारे साथ आज स्टूडियो में जुड़ने के

0: लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद शैलजा जी।
2: तो ये थी एक जर्नी प्रिपरेशन और खुद पर भरोसा करने की। आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं एक और गीत।

0: करता है जिस पर पहले हमारी बाहरी देशों पर निर्भरता की स्थिति थी।
1: कार्य कुशलता से मुझे भी याद आता है जब ऑल इंडिया रेडियो में ही डॉक्टर होमी भाभा ने कहा था कि यदि स्वीकृति मिले तो भारत 18 माह में ही खुद का न्यूक्लियर डिवाइस डेवलप कर सकता है।
0: भारत जब कभी भी अपना उपग्रह अंतरिक्ष में भेजता है और वो सफलतापूर्वक अपने कक्ष पे पहुंचा है, तो हम सभी भारतीय एक बार जरूर आकाश की ओर देखकर गर्व महसूस करते हैं, अपना आभार प्रकट करते हैं। इसरो की वो संस्थान, इसरो की वो इमारत अपनी शैली में, अपने तरीके से इस वृदा के महान चरित्रों के प्रति जरूर आभार प्रकट करती होगी। इसी के साथ रुक करते हैं हमारे अगले गीत का।

0: अब समय है इतिहास के पन्नों को पलटने का और जानने का कि आज के दिन क्या खास हुआ था। प्राची, तुम्हें पता है आज ही के दिन यानी 24 सितंबर को इसरो के मंगलयान ने मंगल की कक्षा में प्रवेश कर इतिहास रचा था और भारत ने अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका था।
1: बिल्कुल गौरी, इसके बारे में मैंने पढ़ा भी था। बात जब खेल जगत में भारतीयों की ऐतिहासिक उपलब्धियों की हो तो तैरती लहरों का एक और कीर्तिमान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिग्गज तैराक आरती साह की, जिनका जन्म आज एक के दिन यानी 24 सितंबर 1940 को हुआ था। फैक्ट यह है कि उन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में 29 दिसंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार किया और ऐसा करने वाली दुनिया की पहली एशियाई महिला बनी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की ओर।

0: बहुत सुंदर ये गीत आप बने हुए हैं युवाणी के साथ, और अब टाइम है कुछ बजिंग बातें करने का।
1: अगर आप इस वक्त थोड़ा थका थका महसूस कर रहे हैं तो अब आपको मिलने वाला है एक एनर्जी बूस्ट।
0: और एनर्जी की बात हो तो स्पोर्ट्स से बेटर तो और क्या ही हो सकता है।
1: बिल्कुल, पता है एशियन गेम्स में तो इंडिया के एथलीट्स एक के बाद एक मेडल्स के साथ अपना परचम लहरा रहे हैं।
0: जैसे वुशु में रोशी बीना देवी ने अपना सेकेंड एशियन गेम सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है।
1: और कबड्डी में भी इंडिया की विनिंग स्ट्रीक जारी है। इंडियन मेंस कबड्डी टीम ग्रुप ए में टॉपर्स रहे।
0: और इंडियन मेंस कबड्डी टीम अब फ्राइडे को सेमीफाइनल्स खेलेगी।
1: अब एक ऐसे स्पोर्ट की बात करते हैं जिसके बारे में शायद आपने इतना सुना ना हो, सॉफ्ट बॉल टेनिस।
0: जय मीना ने सॉफ्टबॉल टेनिस को स्पॉटलाइट में ला दिया है और 45 मिनट के सेमीफाइनल के बाद ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर करके इंडिया को इस स्पोर्ट में अपना पहला एशियन गेम्स मेडल दिलाया है।
1: और पता है रोइंग में भी इंडिया के लिए एक और मेडल आया है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने मेंस डबल स्कल्स फाइनल में थर्ड फिनिश करके इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल सिक्योर किया।
0: बिल्कुल, बेहद खूबसूरत। मेडल्स की बात करें तो आईची नगोया एशियन गेम्स में इंडिया का टैली अब है
1: 15 मेडल्स, 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज।
0: बेहद खूबसूरत। मतलब इंडियन एथलीट्स का जोश तो हाई है। बिल्कुल,
1: मुझे तो बहुत प्राउड और एनर्जाइज्ड महसूस हो रहा है। तो चलिए इसी उत्साह को बरकरार रखते हुए बढ़ते हैं एक नए गीत की ओर।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 5 बजने को है और 5 बजे आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया।

0: योग्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह हॉस्पिटल देश में अपनी तरह का पहला अस्पताल होगा। इसमें 1000 बिस्तर गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने कहा कि अडानी ग्रुप राज्य के कई क्षेत्रों में अगले कुछ वर्षों में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म में प्रसिद्ध गायिका और पद्म भूषण से सम्मानित अलका याग्निक से बातचीत आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित होगी। श्रोता इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said, service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: The Prime Minister said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only when there is spirit of service. 4 crore poor have received permanent houses. Chief of Defence Staff General N.S. Rajasubramani has stressed the need for country's defence acquisition system to adapt swiftly to keep pace with this changing character of warfare. Addressing an event organised by a media house in New Delhi today, General Subramani highlighted the importance of the integration of technology, data and industry in strengthening the defence ecosystem. He stressed upon the need to have the means to sustain, replenish and repair weapons in the battlefield. He emphasized that startups, universities, engineers, students and technology companies can all contribute towards country's mission of self-reliance and defence manufacturing. Indian Railways has approved the introduction of a new daily train service between Kanpur Central Railway Station in Uttar Pradesh and Anand Vihar Terminal in Delhi, providing an overnight rail connectivity option between the two cities. Railways has also approved the construction of a four-lane road overbridge at Alkapuri in Vadodara Division of Western Railway. The Ministry of Railways said the

0: लोक संगीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: नमस्कार। तो
0: नमस्कार।
1: वंदना भाई हाजिर हो गए हैं लोक रंजनी कार्यक्रम लेकर के, और हम अपने सभी बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं प्यारे प्यारे लोकगीत। और तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं और शुरुआते हैं सुभाष नाथ की आवाज में
0: जी
1: ये बागड़ का लोकगीत।
0: जी

0: मोहे दे दे बलम किरायो, देख बागड़ को जाऊंगी।
1: बिल्कुल अतुल भाई, जो पता है आपको ये जो बागड़ का महीना, वो होता
0: भादों का
1: त्योहार
0: महीना तो
1: भादों के महीने में होता है, और जन्माष्टमी से अगले दिन नौमी होती है, जहार पीर नौमी,
0: जी
1: तो उसमें ही मनाया जाता है। और बड़े मतलब धूमधाम से लोग बाग जाते हैं बागड़ पर
0: बिल्कुल
1: जात लगाने के लिए, झंडी लगाने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हमने भाई बहुत ही प्यारा सा लोकगीत सुनवाया अपने
1: जी
0: सभी बहन भाइयों को सुभाष नाथ की आवाज़ में, और अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते और सुनवाते हैं वीणा ढिल्लों की सखियों की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: काली साड़ी रंगाई दियो मोरे पिया। अभी हमारे भाई सुन रहे थे वीणा ढिल्लों और उनकी सखियों की आवाज में वंदना बहन ये लोकगीत।
1: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अभी सुनवाएंगे आपको और भी लोकगीत। लेकिन साड़ी की अगर आपने बात करी है अतुल भाई, तो देखे त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है
0: बिल्कुल।
1: और जो हमारी महिलाएं हैं वो अपनी तैयारी पूरी करने लगी हैं कि दिवाली की, होली की, अलग अलग ताड़ियां तैयार करके रखती हैं, तो दिलवाने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
0: बिल्कुल, तो इसी कड़ी में सुन लेते हैं एक और प्यारा सा लोकगीत प्रियंका शर्मा की आवाज में।

0: कार्यक्रम लोकरंजन यही संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार। इस
0: नमस्कार।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनिए दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विजेता चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं आज इस कार्यक्रम में
1: हिम्मत सिंह नेगी। सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।
0: तो चलिए आज के इस खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में क्या कुछ हमारे श्रोता सुनने वाले हैं इसके बारे में बता देते हैं। तो भाई सबसे पहले बात होगी एशियन गेम्स की कि कौन कौन से गेम्स में क्या क्या हमें हासिल हुआ है, कहाँ मायूसी हाथ लगी है और कहाँ हमारी आंखों से खुशी के आंसू झलके हैं
1: जी। और दूसरी तरफ जो सुब्रतो कप अंडर 17 बॉयज का फाइनल मैच है उसका पूर्वावलोकन भी करेंगे और जानेंगे कि अभी सुब्रतो कप मैच में क्या चल रहा है।
0: शतरंज की दुनिया का भी हाल देखेंगे, फीडे 46 का जो संस्करण चल रहा है उसके बारे में भी, कुछ नई गतिविधियां क्या हुई है इसके बारे में जानेंगे।
1: और विजेता इंडिया ए ऑस्ट्रेलिया ए की महिला और पुरुष टीमों के क्रिकेट मैच पर भी हम जानकारी लेंगे और साथ ही जानेंगे अन्य खेल समाचार।

0: वही सबसे पहले एशियन गेम्स 2026 में कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से खेल स्पर्धाओं में परचम लहरा रहे हैं और कहां पर हमारे हाथ मायूसी लगी है, इस बारे में सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: A game of speed, skill and spirit, where every
0: एशियन गेम्स 2026 में छठवें दिन खेले गए सभी मुकाबलों पर आइए डालते हैं नजर, जानते हैं किस खेल में खुशी के आंसू निकले और कहां मायूसी हाथ लगी। सबसे पहले बात करते हैं वुशू की। भारतीय वुशू खिलाड़ी रोशबीना देवी ने एशियन गेम्स में महिलाओं की 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक के साथ अपना अभियान समाप्त किया। जापान के नागोया में खेले गए फाइनल में दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये रोशबीना देवी का एशियन गेम्स में तीसरा पदक है। उन्होंने 2023 में हांगझाऊ एशियन गेम्स में रजत और 2018 जकार्ता पालेमबांग एशियन गेम्स में कांस्य पदक अपने नाम किया था। चलिए हम नजर डालते हैं हॉकी पर। भारत ने एशियन गेम्स के ग्रुप स्टेज के तीसरे मुकाबले में साउथ कोरिया को 8-2 से हरा दिया। चार बार की चैंपियन साउथ कोरिया के खिलाफ ये भारत की एशियन गेम्स में सबसे बड़ी जीत है। इस जीत के साथ भारतीय मेंस हॉकी टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत की ओर से अभिषेक और दिलप्रीत सिंह ने 2-2 गोल किए। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और साउथ कोरिया पर दबाव बनाए रखा। भारत ने पहले क्वार्टर के चौथे मिनट में ही बढ़त बना ली थी। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 14वें मिनट में अभिषेक ने भारत के लिए चौथा गोल किया और भारतीय टीम ने पहले क्वार्टर में ही मैच में पूरी तरह से पकड़ बना ली थी। दूसरे क्वार्टर में भी भारत ने दबदबा बनाए रखा। दिलप्रीत सिंह ने 26वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त 5-0 कर दी थी और तीसरे क्वार्टर में 32वें मिनट में दिलप्रीत ने अपना दूसरा गोल दागा। अभिषेक ने 38वें मिनट में दूसरा गोल किया। इससे भारतीय टीम को 7-0 की मजबूत बढ़त मिल गई। 7 गोल से पिछड़ने के बाद साउथ कोरिया ने वापसी की कोशिश की। किम जोई ने 42वें मिनट में गोल करके साउथ कोरिया का खाता खोला। इसके बाद किम योंग बोक ने 52वें मिनट में दूसरा गोल किया। हालांकि तब तक मुकाबला भारत के नियंत्रण में हो चुका था। मैच के आखिरी मिनट में रजिंदर सिंह

ने गोल किया। इस गोल के साथ भारत ने जीत का अंतर 8-2 कर दिया। आइए बात करते हैं कबड्डी की। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने चीनी ताइपे को 37-21 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अपने ग्रुप चरण का शानदार अंत करते हुए चीनी ताइपे को 37-21 से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ग्रुप ए में 4 में से 4 मुकाबले जीत कर शीर्ष पर रहा। अब भारतीय टीम शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी। पहले ही अपनी शुरुआती 3 ग्रुप मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह और पदक पक्का कर चुके भारत ने चीनी ताइपे के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने मजबूत डिफेंस के साथ मुकाबले की शुरुआत की। पहले हाफ के खत्म होने से पहले भारत 23-11 से आगे था। दूसरे हाफ में देवांग दलाल और अयान लोचप जैसी खिलाड़ियों को भी मैदान पर उतारा गया। दूसरे हाफ में भारत ने अपनी बढ़त को लगातार मजबूत किया और एक और ऑल आउट दिया। इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार 4th जीत दर्ज की। इससे पहले भारतीय टीम ने मेजबान जापान और दक्षिण कोरिया समेत अपने अन्य ग्रुप मुकाबलों में भी शानदार जीत हासिल की थी। भारत पुरुष कबड्डी में एशियन गेम्स का रिकॉर्ड 8 बार का चैंपियन है। भारत ने इस खेल के एशियन गेम्स में शामिल होने के बाद हर संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है, सिवाय 2018 जकार्ता एशियन गेम्स से, जहां ईरान ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया था। उम्मीद है कि इस बार भी भारत की झोली में कबड्डी से एक स्वर्ण पदक आ जाएगा। भारत के लिए इससे बेहतर दिन की शुरुआत नहीं हो सकती थी। भारत ने रोइंग में मेडल जीत लिया है। भारतीय जोड़ी सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुषों की डबल स्कल स्पर्धा की फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। सतनाम और सलमान की भारतीय जोड़ी ने 2000 मीटर की रेस 6:13.25 में पूरी की और तीसरा स्थान पाकर पोडियम फिनिश किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने एशियन गेम्स में पुरुषों की डबल स्कल स्पर्धा में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता। ये इस जोड़ी की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। पूर्व हैंडबॉल खिलाड़ी सतनाम सिंह और भारतीय सेना से जुड़े सलमान खान दोनों का रोइंग तक पहुंचने का सफर काफी प्रेरणादायक रहा। भारतीय जोड़ी 1500 मीटर तक दूसरे स्थान पर बनी रही, लेकिन अंतिम 500 मीटर में तीसरे स्थान पर खिसक गई। भारतीय जोड़ी स्वर्ण पदक विजेताओं से 3:88 पीछे रही। खेलों की अपडेट में बात करते हैं शूटिंग की। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत क्वालिफिकेशन भारतीय शूटर्स फाइनल में जगह नहीं बना सके। शीर्ष 8 निशानेबाजों को ही फाइनल के लिए क्वालिफाई करना था। वहीं स्कीट मिक्स्ड टीम भारत की जोड़ी परिनाज धालीवाल और अनंतजीत सिंह नारूका ने क्वालिफिकेशन में 138 अंक के साथ 4th स्थान हासिल किया और फाइनल में जगह बनाई। शीर्ष 4 देशों को ही फाइनल में प्रवेश मिलना था, इसलिए टीम इंडिया ने मेडल राउंड में ही अपनी जगह पक्की कर ली। भारत की अनंतजीत सिंह नारूका और परिनाज धालीवाल ने आज एशियन गेम्स के मिक्स्ड टीम स्कीट इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने 44 अंक हासिल करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। भारत की जोड़ी ने 6 सीरीज के दौरान लगातार सुधार किया। पहली सीरीज में 7 अंक से शुरुआत करने के बाद उनका स्कोर क्रमशः 14, 21, 29, 36 और 44 रहा। 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। गेम्स के इतिहास में इंडिया को इस इवेंट में पहली बार मेडल मिला है। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग का 8वां मेडल है। इनमें 4 सिल्वर और 4 ब्रोंज शामिल है। वहीं अब रुख करते हैं स्क्वैश खिलाड़ियों की तरफ। तो अभय सिंह और वी चोटरानी ने आज जारी एशियन गेम्स 2026 में पुरुष एकल स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अभय सिंह ने श्रीलंका के रविंदु लक्सीरी को सीधे 3-0 से हराया। उन्होंने ये मुकाबला 11-3, 11-5, 11-6 के स्कोर से महज 21 मिनट में अपने नाम किया। वहीं वीर चोटरानी को मलेशिया के संजय जीवा के खिलाफ मुकाबले में कड़ी चुनौती मिली। वीर ने वापसी करते हुए स्कोर 7-7 से बराबर किया और दूसरा गेम 11-9 से जीत लिया। हालांकि दूसरे गेम में संजय ने 11-8 से जीत दर्ज कर मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। निर्णायक गेम में वीर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 11-6 से जीत हासिल की और मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके अलावा भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने भी एशियन गेम्स 2026 की महिला एकल स्क्वैश स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
वहीं बात करते हैं बॉक्सिंग रिंग की, तो भारतीय बॉक्सर परवीन

इन हुडा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में बिना मुकाबला के लिए जीत गई हैं। तजाकिस्तान की मलिका नोजीमोवा ने उन्हें वॉकओवर दिया है। अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नवबखोर हमीदोवा से होगा। और आइए बात करते हैं तैराकी की। टोक्यो में आयोजित एशियन गेम्स में भारतीय तैराकों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहा। बेनिंगटन रोहित पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने से महज 0.09 सेकंड से चूक गए। वहीं भारतीय पुरुष 100 मीटर फ्रीस्टाइल रिले टीम भी फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाई। भारत के बेनिंगटन रोहित ने पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई हीट्स में संयुक्त रूप से 12वां स्थान हासिल किया। उन्होंने 23.87 सेकंड का समय निकाला। फाइनल के लिए 8 तैराकों को क्वालिफाई करना था। सिंगापुर के सेन वेइंग ट्योंग ने उन्होंने 23.87 सेकंड का समय निकाला। फाइनल के लिए 8 तैराकों को क्वालिफाई करना होता है। सिंगापुर के सेन वेइंग ट्योंग ने 23.78 सेकंड के समय के साथ 8वां और अंतिम क्वालिफाइंग स्थान

0: तो ये तो थी झलकियां एशियन गेम्स के बारे में, और एशियन गेम्स का रुख दोबारा से करेंगे कार्यक्रम में, लेकिन अभी फिलहाल सुब्रतो कप का क्या है आगाज करने का सिलसिला, उसके बारे में बता रहे हैं हमारे साथी हिम्मत जी।
1: जी विजेता, नई दिल्ली के डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेडियम में 65वें सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट के जूनियर बॉयज अंडर 17 कैटेगरी का ग्रैंड फिनाले आज खेला जाएगा। इस खिताबी मुकाबले में केरल और CISCE की टीमें आमने सामने होंगी। CISCE की टीमें पूरे टूर्नामेंट में अजय रही हैं। उन्होंने असम को 3-0 से हराकर फाइनल का टिकट कटाया था। इससे पहले ग्रुप स्टेज और क्वार्टर फाइनल में भी टीम ने छत्तीसगढ़ को 8-0, जम्मू कश्मीर को 7-0 और गुजरात को 4-0 से मात दी थी। तो विजेता, देखिए किस तरह से ये टीम लगातार अजय टीम की तरह उभर रही है और एक भी गोल अपने खिलाफ होने नहीं दे रही है, तो ये उसकी दक्षता को दर्शाती है। तो दूसरी तरफ केरल की टीम ने भी बड़ा शानदार प्रदर्शन किया है और नॉकआउट चरणों को बहुत सुंदर तरीके से पार किया है और आज खिताबी जंग में जगह बनाई है, और ये रोमांचक मुकाबला अभी थोड़ी ही देर में खेला जाएगा डॉक्टर बीआर अंबेडकर स्टेडियम में, और देखना है कि इसमें कौन सी टीम विजेता बनकर उभरती है। लेकिन ये मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है, सभी की नज़रें इस मुकाबले पर लगी हुई हैं। थोड़ी देर में हम लोग अपने सभी श्रोताओं को इस मैच की लाइव अपडेट भी देते रहेंगे। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी ये मुकाबला देखने वहां पर पहुंचे हुए हैं और अभी थोड़ी ही देर में ये मुकाबला शुरू होने वाला है।
0: चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, और एशियन गेम्स में और किन किन खेलों में क्या क्या सफलताएं हमारे हाथ लगी है उन पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, बात कर लेते हैं ई स्पोर्ट्स की। तो भारत की पारितोष पोपो चैंपियंस प्रतियोगिता के अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। उन्होंने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। पारितोष ने मंगोलिया के मुख जोरिंग गनबोल्ट को 3-0 से और सिंगापुर के मुनजुन जस्टिन कोहो को 3-2 से हराया। उसके बाद उन्होंने चीनी ताइपे के ज्यू आंगको से 3-0 और थाईलैंड के तारा राक से 3-2 का हार का सामना भी उन्हें करना पड़ा। बात करते हैं कैनो स्प्रिंट की, तो पार्वती और प्रसन्ना ने मिक्स्ड कयाक डबल्स 500 मीटर सेमीफाइनल्स के क्वालिफाई कर लिया है, और भारत की पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार ने अपनी हीट में 1:52.676 समय देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब ये भारतीय जोड़ी मेडल तय करने वाले फाइनल में जगह बनाने के लिए सेमीफाइनल में मुकाबला करेंगी। बात कर लेते हैं फेंसिंग की, यानी कि तलवारबाजी की। भवानी देवी और श्रेया गुप्ता वुमेन्स सेबर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारत की भवानी देवी और श्रेया गुप्ता, जिन्हें पहले राउंड में बाई मिला था, वुमेन्स सेबर इंडिविजुअल प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। ओलंपियन भवानी देवी ने शुरुआती राउंड में मंगोलिया की ओलेन को 15-8 से हराया, और अब उनका मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन की सिल्वर मेडलिस्ट राव जुई से होना है। भारत की महिला कबड्डी के बारे में भी थोड़ा सी जानकारी कर लेते हैं। ग्रुप ए के मुकाबले में मेजबान जापान के खिलाफ हाफ टाइम तक 32-13 की बढ़त बना ली थी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने पहले हाफ में 2 बार ऑल आउट किया और ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाने की ओर बढ़ी रही। एथलेटिक्स की अगर बात करें तो अनिमेश कुजूर पुरुषों की 100 मीटर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तीसरे स्थान पर रहते हुए पुरुषों की 100 मीटर सेमीफाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। उन्होंने 10:36 का समय दर्ज किया और सेमीफाइनल मुकाबला कल होने वाला है। 7 स्पर्धाओं में 3 के बाद पूजा अनामिका और 8वें और 9वें स्थान पर रहें। भारत की पूजा ने हेप्थलॉन के शॉट पुट में 11.44 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ 4th स्थान हासिल किया और 624 अंक जोड़े। अनामिका ने 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 8वां स्थान हासिल किया और 605 अंक हासिल किए। 3 स्पर्धाओं के बाद पूजा 2385 अंकों के साथ हेप्थलॉन स्टैंडिंग के 8वें पर रही, जबकि उनकी हमवतन अनामिका 2376 अंकों के साथ 9वें स्थान पर रही।

0: बहुत ही रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए की महिला टीमों ने बहुत ही कांटे का मुकाबला खेला। इंडिया ए की महिला ने 338 रन 6 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने दो गेंद रहते ही यह मुकाबला जीत लिया। तनिषा सिंह ने 37 रन बनाए 49 गेंद खेल के, प्रिया पुनिया ने 36 रन का योगदान दिया, 32 गेंदे उन्होंने सामना किया। यास्तिका भाटिया ने शानदार शतक लगाया और 112 रन की पारी खेली, वो केवल 84 गेंदों में। वहीं तेजल हसब्रनिस ने 60 रन बनाए 66 गेंद खेल के। अनुष्का शर्मा ने 60 रन का योगदान दिया। निकी प्रसाद शून्य पर आउट हुई। वहीं मिन्नू मिनी ने 3 रन बनाए और साइली सात घरे ने 12 रन का योगदान दिया, अतिरिक्त 18 रन। वहीं टायला ब्लेमिक जो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज थी, उन्होंने 0 विकेट लिए। डार्सी ब्राउन ने 3 विकेट लिए। लिली मिल्स ने 1, मिली इलिंगवर्थ ने 2 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ए की महिला टीम ने जब इस लक्ष्य का पीछा किया तो 339 रन बनाने थे। तालिया विल्सन ने 79 रन बनाए, निकोल फॉल्टम ने 12 रन, अनिका लिराइड ने 54 रन, चार्ली नॉट ने 63 रन, कैटी मैक ने 2 रन का योगदान दिया। टेस फ्लिंटॉफ 38 रन बनाकर आउट हुई। हेली सिल्वर होम्स ने 47 रन और लिली मिल्स ने 11 गेंदे खेलकर 12 रन बनाए। वहीं भारत की ओर से गेंदबाजी में साइली सात घरे ने 10 ओवर में 69 रन दिए और 2 विकेट लिए। अक्षिता भगत ने 1 भी विकेट नहीं लिया, 5 ओवर उन्होंने गेंदबाजी की। अमनदीप कौर ने 8 ओवर में बहुत ज्यादा 71 रन दिए। वहीं दूसरी ओर वैष्णी शर्मा ने 73 रन पर 1 विकेट लिया। मिन्नू मनी ने 3 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को बहुत परेशान किया। निकी प्रसाद ने 2 विकेट चटकाए। लेकिन ये विजेता मुकाबला बहुत रोमांचक था और ऑस्ट्रेलिया 49.3 ओवर तक संघर्ष करती रही, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारतीय महिला ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया महिला ए टीम को बहुत परेशान किया और अंत तक कांटे का मुकाबला रहा, रोमांचक मुकाबला रहा। और इससे पहले हमारी भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला जीता था और अभी जो सीरीज है वो 1-1 की बराबरी पर चल रही है। हालांकि एक अनौपचारिक सीरीज है, लेकिन अभी ये फाइनल मैच बताएगा कि ये सीरीज कौन जीतेगा। लेकिन उम्मीद है कि भारत की महिला टीम बहुत शानदार प्रदर्शन करेगी।
1: बिल्कुल, इस वक्त तो भारतीय महिला टीम जो है ना वो हर जगह पर परचम लहरा ही रही है अपना, और ये बड़े गर्व की बात है कि महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं, बल्कि अपने पूरे विश्व में अपना नाम ऊंचा कर रही हैं। तो अभी रुख कर लेते हैं दोबारा से एशियन गेम्स की तरफ। तो कल कौन कौन से गेम्स होने वाले हैं इस पर डाल लेते हैं नजर। तो 25 सितंबर यानी कि कल भारत के लिए जो है बहुत ही बेहद व्यस्त समय रहने वाला है। भारतीय खिलाड़ी कई खेलों में उतरेंगे और कुछ स्पर्धाओं में पदक के लिए भी मुकाबला होना है। सबसे ज्यादा नजरें होंगी एथलेटिक्स पर। महिला हेप्थलॉन में भारतीय खिलाड़ी लॉन्ग जंप, जेवलिन थ्रो और 800 मीटर में चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा महिला 400 मीटर, पुरुष 400 मीटर और पुरुष 100 मीटर में भी भारतीय एथलीट एक्शन में होंगे। पुरुष 100 मीटर और 400 मीटर में सेमीफाइनल के साथ पुरुष 100 मीटर का फाइनल भी कल होना है। पुरुष 10,000 मीटर, पुरुष हैमर थ्रो, महिला शॉटपुट और महिला पोल वॉल्ट के फाइनल भी कल होने हैं। हॉकी में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान जापान से होगा। ये पूल बी का मुकाबला है और भारत के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला रहने वाला है। शूटिंग में भी भारत के लिए पदक के मौके रहेंगे। 25 सितंबर को यानी कि कल मिक्स टीम पिस्टल और पुरुष 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन जैसी स्पर्धाएं भी पदक मुकाबला निर्धारित करेंगी। बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला सिंगल्स, डबल्स, मिक्स डबल्स के मुकाबले उतरेंगे। वहीं टेबल टेनिस, स्क्वैश में भी भारतीय खिलाड़ी अपनी चुनौती को आगे बढ़ाएंगी। स्विमिंग में भी एक्शन रहेगा और इसके अलावा फेंसिंग, सर्फिंग, कैनो स्प्रिंट और ई स्पोर्ट्स में भी भारत की भागीदारी कल रहने वाली है। तो ये है कल का हाल। कल क्या होने वाला है, कल कितने मेडल्स हमारी झोली में आके गिरेंगे, ये कल ही निर्धारित होगा।
0: जी, तो भारत के लिए हाँ बहुत ही शानदार खबरें अलग अलग खेलों से। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए एक और शानदार खबर है कि भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के पुरुष टीमों के बीच जो अनौपचारिक मुकाबला खेला जा रहा है उसमें भारत ए ने बहुत ही मजबूत पकड़ बना ली है। मैच में भारत ए ने पहली पारी में 334 रन बनाए, जिसमें कुशाग्र ने 113 रन की शानदार शतकीय पारी खेली। तनिष कोटियन ने 69 रन बनाए। साई सुदर्शन 57 रन और कोरी रॉकी चौली

वहीं दूसरी ओर भारत और ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीमों के बीच खेले जा रहे 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला में

0: जो विकेट लिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 4 विकेट, टॉड मर्फी ने 3 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ए की पहली पारी बुरी तरह लड़खड़ा गई और 171 रन पर उनकी पूरी टीम आउट हो गई, जिसमें जेसन सांगा ने 46 रन और शम्स मुलानी ने 4 विकेट देकर 67 रन दिए। तुषार देशपांडे ने 2 विकेट लेकर 32 रन दिए, वहीं तनुष कोटियन ने 2 विकेट 31 रन पर दिए। अब दूसरी पारी में भारत भी थोड़ा लड़खड़ाई और 199 रन पर आउट हो गई। अभी ताजा खबरें मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 55 रन बना लिए हैं और उन्हें अभी जीत लंबी तय करनी है, लेकिन भारत का शिकंजा इस मैच पर कस गया है। विजेता यह भी एक अनौपचारिक मैच है, लेकिन भारत ए की टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए की टीम को बहुत ही अपने शिकंजे में ले लिया और कल अंतिम दिन है, ये 4 दिवसीय मैच है
1: जी जी।
0: ये इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए की टीमों के बीच खेले जाने वाला जो मैच है, 4 दिवसीय टेस्ट मैच है। आज मैच का तीसरा दिन था, कल चौथे दिन भारत को लग रहा है कि ये जीत आसानी से मिल जाएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो अनिश्चितताओं की टीम है और क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। अब कल देखना ये होगा कि ये मैच कौन जीत।
1: बिल्कुल, इंतजार रहेगा कि कुछ अच्छी खबरें हमें सुनने को मिलें
0: जी।

चलिए अब आपको लिए चलते हैं शतरंज की दुनिया में। इस समय दुनिया के करीब 200 देशों के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी उज्बेकिस्तान के समरकंद में आमने सामने हैं। 46वां फिडे चेस ओलंपियाड जो कि 15 सितंबर से शुरू हो चुका है और 27 सितंबर तक ये चलने वाला है। ओपन्स और वुमेन्स दोनों वर्गों में यहाँ पर रिकॉर्ड संख्या में लोग जो खिलाड़ी हैं वो भाग ले रहे हैं। फिडे के 151 टीमें जो हैं वो इसके लिए पंजीकृत हुई हैं। कुल 11 राउंड इसमें खेले जा रहे हैं। बात करते हैं शुरुआती अगर बात करें तो भारत ने ओपन सेक्शन में थाईलैंड के खिलाफ 3-1 की जीत से शुरुआत की थी। वुमेन्स टीम ने भी मुकाबले में डोमिनिकन रिपब्लिक को 4-0 से हराया था। इसके बाद छठवें राउंड की बात आई तो ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि उज्बेकिस्तान अपने घरेलू मैदान पर शानदार प्रदर्शन कर रहा था। सातवें राउंड की बात करें तो भारतीय ओपन टीम के सामने था इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को 2.5 से हराकर शानदार वापसी की। और वुमेन सेक्शन में भी भारत ने जर्मनी के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 3.5 की जीत दर्ज की। तो छठे राउंड की हार के बाद भारतीय टीमों ने अगले ही राउंड में मजबूत प्रदर्शन किया और उज्बेकिस्तान ओपन सेक्शन सबसे ऊपर बनी हुई है। दूसरी तरफ भारत समेत कई टीमें उज्बेकिस्तान का पीछा भी कर रही हैं। वुमेन सेक्शन में बात करें तो सातवीं राउंड में भारत ने जर्मनी को हराया। इसी राउंड में चाइना और कजाकिस्तान का मुकाबला भी 2-2 से ड्रॉ रहा, जिसके बाद शीर्ष स्थान की लड़ाई और भी ज्यादा खुलकर सामने आ गई। भारत की टीम में अनुभवी कोनेरू हम्पी के साथ युवा खिलाड़ी दिव्या देशमुख, वैशाली वंतिका जैसी खिलाड़ी हैं, इसलिए भारतीय टीम की नजर आखिरी राउंड के प्रदर्शन तक पर भी जारी रहने वाली है। अब आगे मुकाबले इसी तरह से चल रहे हैं। भारत ने शुरुआत तो शानदार की, बीच में उज्बेकिस्तान के खिलाफ थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन सातवें राउंड में ओपन और वुमेन्स दोनों टीमों ने जीत के साथ वापसी की। अब नजरें आठवें राउंड पर रहने वाली हैं, तो देखना होगा कि ओपन और वुमेन्स दोनों वर्गों में क्या भारत गोल्ड जीत पाएगा, तो इस पर अब नजरें रहने वाली हैं।

जी विजेता, तो क्रिकेट में भी भारत का बहुत अच्छा हाल है। इंडिया ए जो है कल जीतने की कगार पर है। बहुत ही शानदार खेल उन्होंने दिखाया दोनों पारियों में। अनौपचारिक क्रिकेट खेलों में भी भारत आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जो दिल्ली के डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्टेडियम में 65वां सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल का फाइनल खेला जा रहा है, उसमें अंडर 17 में SCE की टीम बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने असम को भी 3-0 से हरा दिया था, और उसके अलावा क्वार्टर फाइनल में छत्तीसगढ़ को 8-0 से हराया, जम्मू कश्मीर को 7-0 से, और गुजरात को 4-0 से उसने मात दी। इसका मतलब यह है कि वो एक तरह से अजेय टीम बनकर उभरी है और बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है अंडर 17 सुब्रतो कप फुटबॉल में। अभी

0: हम देख रहे हैं कि ये ताज़ा हाल जो चल रहा है वहाँ पर बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आए हुए हैं, स्कूली बच्चे भी इस मैच का मज़ा लेने के लिए आए हुए हैं। सुरेश रैना अभी देख रहे थे हमें स्क्रीन पर, तो अभी मैच शुरू होगा तो बहुत ही रोमांचक मैच होने की उम्मीद हो रही है। दूसरी तरफ जो केरल की टीम है उसने भी शानदार प्रदर्शन किया और नॉकआउट चरणों में बहुत अच्छे से उन्होंने खेला है। आज जो ये खिताबी जंग है देखना है कि केरल की टीम जीतेगी या CISCE की टीम जीतेगी, लेकिन इतना तय है कि ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने जा रहा है। BR अम्बेडकर स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ है और दर्शकों का उत्साह देखने लायक है। मैच का लाइव प्रसारण हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब बात अन्य खबरों की तरफ भी थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि कजाकिस्तान में होनी है 24 अक्टूबर से 1 नवंबर तक, इसके लिए इंडियन रेसलिंग स्क्वाड का बहुत कुछ फैसला हो चुका है, जिनमें दीपांशी महिला की, अगर महिला वर्ग की बात करें तो 50 किलोग्राम में दीपांशी, 53 में निशो मीनाक्षी, 55 किलोग्राम में, 57 किलोग्राम में सिमरन, 59 किलोग्राम में मनीषा, 62 किलोग्राम में तपस्या मानसी, 65 किलोग्राम में रजनीता, 68 किलोग्राम में सृष्टि, 72 किलोग्राम में तनु शर्मा और 76 ग्राम में काजल जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं बात करें अगर फ्री स्टाइल की तो वहां पर 57 किलोग्राम में राहुल, 61 किलोग्राम में निखिल, 65 किलोग्राम में सुजीत, 70 किलोग्राम में विशाल, 74 किलोग्राम में यश, 79 किलोग्राम में सौरभ यादव, 86 में पुष्पेंद्र दलाल, 92 किलोग्राम में सचिन, 97 में विक्की और 125 में जसपूरन सिंह और रजत रूही। अभी ट्रायल हालांकि इनका होना बाकी है, लेकिन ये जो है टीम स्क्वाड तैयार हुई है भारत की तरफ से सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 जो कि कजाकिस्तान में होने वाला है।
0: जी विजेता, एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारतीय महिला खिलाड़ी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन कर रही है, वो चाहे कोई भी खेल हो, चाहे वो हॉकी हो, क्रिकेट हो या अन्य खेल हो। जैसा कि हमने बताया कि ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ महिला भारतीय ए टीम ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और बहुत ही रोमांचक मुकाबला, केवल 3 गेंद रहते ही ऑस्ट्रेलिया जीत पाई है। उससे पहले का मुकाबला भी भारत नहीं जीता था। अब तीसरा मुकाबला देखना है कि कितना रोमांचक होगा। लेकिन हमारी यास्तिका भाटिया की जो 112 रन की पारी थी वो भी बहुत कम गेंदों पर, बहुत ही शानदार पारी यास्तिका ने खेली है। और ये जो ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ सिर्फ 0.3 गेंदों के रहते वो हारे हैं, लेकिन उनकी हार भी जीत ही थी और पहला मैच तो वो जीत ही गए थे। अब इस सीरीज का, अनौपचारिक सीरीज का अंतिम मैच जो होगा उसमें भी भारत की उम्मीदें बहुत अच्छी हैं। भारतीय महिला ए टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है।
1: चलिए अब थोड़ा से नजर डाल लेते हैं कि आज जो एशियन गेम्स में हुआ उसमें मेडल्स की रेस में हम जो भारत है वो कहां पर खड़ा हुआ है।
0: जी,
1: तो जी बात कर ले सबसे पहले तो इंडिया के खाते में अभी तक 1 गोल्ड आया है जो हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। इसके अलावा 6 सिल्वर मेडल हमारे हाथ लगे हैं, ब्रोंज 18 ब्रोंज हमारे हाथ लग चुके हैं। तो इस तरह से 15 मेडल अब तक हम जीत चुके हैं, यानी कि भारत की झोली में 15 मेडल अब तक आ चुके हैं और इस तरह से भारत जो है वो 14वें पायदान पर खड़ा हुआ है। और उम्मीद ये करते हैं कि ये जो पायदान है ये धीरे धीरे कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारी भारत के खाते में खुलें, और अगर इनमें रंग बदल पाए, यानी कि अगर गोल्ड का रंग हमारे भारत को मिले तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा खुशी की बात हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरह से हमारा जो ये गेम है एशियन गेम्स आगे बढ़ रहा है। लगातार हमारे खिलाड़ी जो है वो वहाँ पर अपना प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, अपने भारत का नाम रोशन करने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
3: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा

0: परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणी ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में कुल लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उत्तर कुंजी 1 अक्टूबर को बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित होने की उम्मीद है। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसमें विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ अन्य तीनों देशों के विदेश मंत्री भी शामिल हुए। संयुक्त बयान में कहा गया कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट से 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज अनंत जीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। रोशिबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। एथलेटिक्स में जय कुमार, अंशा बाबू, मानु टीएस और रशदीप कौर की मिक्स टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेश कुजूर और गुरविंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। स्क्वाश में अभय सिंह और वीर चोटरानी पुरुष सिंगल्स, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। टेबल टेनिस में मानुष शाह पुरुष सिंगल्स, श्रीजा अकुला और सिंड्रेला दास महिला सिंगल्स और दिया चिताले तथा यशस्विनी घोरपड़े महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गए हैं। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 6 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदकों के साथ 14वें स्थान पर है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट है। बिहार, झारखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा का अनुमान है। गोवा और महाराष्ट्र सहित रायलसीमा में अगले 3 दिन तूफान की भी आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल और माहे और मराठवाड़ा में भी तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said, service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle, even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi.
0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेवा भावं जीवनस्य परम पुरुषार्थत्वेन प्राख्यापयत्। सेवा परमो धर्म इति न्यायः सर्वथा अनुसरणीयः मुख्य संकल्पः इत्यपि असौ सबलम् अकथयत्। संयुक्त राष्ट्र महासभायाः उपवेशने विदेश कार्य मंत्रिणा डॉ एस जयशंकरेण फिपेक विदेश मंत्रिमंडलस्य समलंकृता द्वितीय पीठिका। प्रशासनेन प्रोदीरितम्।

0: भारतम स्वाभ्यंतर आवश्यकतानां 99.2% जंगमदूरवाणी यंत्राणि स्वदेशे एव संपादयति। चिकित्सा स्नातकोत्तर प्रवेशार्थम NBEMS संस्थया नीट PG परिणामः समुद्घोषितः। ओडिशा पश्चिम बंग प्रभृति पंच राज्येषु अतिवृष्टिपरा रक्तवर्णीय संचेतना ऋतु विज्ञान विभागेन प्रख्यापिता। अपि च एशियाई क्रीडासु पुरुष कबड्डी स्पर्धायां अंतिम समूह क्रीडायां चीनी ताइपे दलं पराभूय भारतम् उपांत्य चक्रे प्रवेशं प्रासाधयत्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। वडनगर वाराणसी सेवा यात्रा प्रसंगे प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सेवाभावः जीवनस्य परम पुरुषार्थत्वेन प्रतिपादितः। तेन प्रोदीरितं यत् राजनीति शीर्षं प्राप्तेनापि अधिकारिणा सेवा परमो धर्म इति न्यायः सर्वथा न विस्मरणीयः। साक्षादाभास्य संभाषणे तेन सेवा प्रवृत्तिः सर्वनागरिकेषु समाहूता।
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: प्रधानमंत्री प्रख्यापयत् यत् सेवा भावः एव राष्ट्र विकासस्य मुख्य प्रवर्तक बलम् अस्ति। तेन सबलं प्रोक्तं यत् PM किसान निधिः वा PM सूर्य घर योजना वा एतादृशीनां अनन्तानां जनकल्याण परियोजनानां अन्तिम जन प्रापण सामर्थ्यमेव तासां सफलतायाः मुख्यं प्रमाणम् अस्ति।
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: राष्ट्र निर्माण व्रत धारिणः वयम् विकसित भारत रचनायाः संकल्प सिद्ध्यै प्रवृत्ताः इति प्रधानमन्त्रिणा प्रोदीरितम्। 47.2 वर्षे विकसित भारत निर्माणाभियाने युवकानां मुख्य सामर्थ्यं सर्वजनैः पूर्ण शक्त्या समुन्नेतव्यम् इति तेन साध्ववाची।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: न्यूयॉर्क नगरे 88वें संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रसंगे विदेश कार्य मंत्री एस जयशंकरेण फिपिक विदेश मंत्रिमंडलस्य द्वितीय उपवेशनम् समलंकृतम्। तेन सहभागी देशैः सह क्षेत्रीय सहयोग संवर्धनाय दृढ़ संकल्पः प्रख्यापितः। 23-2000 वर्षे उद्घोषितायाः प्रधानमंत्री मोदिनः 12-सूत्रीय कार्ययोजनायाः प्रगतिमधिकृत्य सम्भूय समीक्षा प्रोदीरिता। प्रमुख रक्षा अध्यक्षः जनरल NS राजा सुब्रह्मण्यः अद्य न्यगादीत् यत् युद्धकलायाः परिवर्त्यमान स्वरूपानुसारं भारतस्य सैन्य अधिग्रहण तंत्रस्य द्रुत परिवर्तनं सर्वथा अनिवार्यम्। नवदिल्ल्यां रक्षा शिखर सम्मेलने संबोध्य तेन समदीदृशी यत् प्रौद्योगिकी दत्त सामग्री उद्योगानां समवाय सम्बन्धेनैव रक्षा पारिस्थितिकी तंत्रं सुदृढं भवति। तेन प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी उद्योग संशोधनानां त्रिवेणी संगमेन रक्षा पारिस्थितिकी तंत्रं अभूतपूर्वां प्रतिष्ठां प्राप्स्यति। संचार विघ्नेष्वपि अप्रतिहता कृत्रिम प्रज्ञा एव भावि युद्धानां जय हेतुः संभविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम्

0: इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदिल्ल्यां पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया PAFI 50-60 इत्यस्य त्रयोदश वार्षिक अधिवेशनस्य उद्घाटन सत्रे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी विभागस्य सचिवः एस कृष्णन वर्यः प्रतिपादितवान् यत् भारतवर्षम् अधुना देशस्य स्वदेशीयायाः चलदूरभाषमाङ्गल्यस्य प्रायः 99.2% भागं स्वयमेव निर्माति। तेन विशदीकृतं यत् भारते प्रतिवर्षं 30 वा 32 कोटि परिमिताः चलदूरभाषाः उत्पद्यन्ते। सहैव विश्वस्य 5 प्रमुखाः चलदूरभाषनिर्माणसंस्थाः अधुना भारते उपस्थिताः सत्यः अत्रैव स्वकीययन्त्राणां निर्माणं सोत्साहं कुर्वन्ति। आयुर्विज्ञान राष्ट्रिय परीक्षा मण्डलेन अद्य नीट पीजी 50-60 इत्यस्याः प्रतिष्ठित परीक्षायाः परिणामः उद्घोषितः। परीक्षा एषा समग्रे अपि भारतवर्षे गते अगस्त मासस्य 30 दिनाङ्के 50-60-70 इत्यस्य शैक्षणिकसत्रस्य विविध चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमेषु यथा हि MD, MS, DNB द्रवीभूत षण्मासिक पाठभेदेषु तथा PG मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमेषु प्रवेशार्थं सोत्साहं समायोजिता आसीत्। मण्डलेनानेन विज्ञापितं यत् सर्वे अपि परीक्षार्थिनः अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनाङ्कादारभ्य अग्रे वा स्वकीय संगणकीय पट्टिकायाम् आसाद्य आत्मनः अंकपत्रं स्वीकर्तुं पारयिष्यन्ति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य पश्चिम बंग तेलंगाना छत्तीसगढ़ तटीयांध्र प्रदेश ओडिशा राज्येषु अतिभीषण वृष्टेः संभावनाम् अधिकृत्य रेड अलर्ट इति संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विज्ञान विभागेन बिहार झारखंड विदर्भ सिक्किम राज्येषु च अद्य अतिवृष्टि परं पूर्वानुमानं प्रकटितम्। एतदतिरिच्य अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु असम मेघालय पूर्वीय मध्य प्रदेश पूर्वीय उत्तर प्रदेश कर्नाटक केरल माहे मराठवाड़ा क्षेत्रेषु च अतिवृष्टेः संभावना प्रकटिता। ग्रेटर नोएडा मंडलस्थे यमुना द्रुत मार्गे ह्यः अर्धरात्रौ संवृत्तायां दारुणायां यानाग्नि दुर्घटनायां न्यूनातिन्यूनं 9 यात्रिणः मृत्युमुपगताः। आरक्षक सूचनानुसारेण दुर्घटना एषा जेवर आरक्षक स्थानान्तर्गत दयातानपुर ग्रामस्य समीपे मध्यरात्रौ समजनी। आरक्षकैः प्रोक्तं यत् मृतकानां 9 यात्रिणां अभिज्ञान प्रक्रिया सम्प्रति साध्या न जाता। जापान देशे समायोजितासु एशियाई क्रीडा 50-60 इत्येतासु भारतस्य पुरुष कबड्डी दलं स्वकीयायाम् अन्तिमायां वर्ग अ प्रतिद्वन्द्वितायां चीनी ताइपे दलं 37-31 इति सुस्पष्ट अंकांतरालेन पराजय्य उपांत्य स्पर्धायां प्रविष्टम्। भारतेन क्रीडारम्भादेव स्वकीयं प्रभुत्वं संस्थाप्य मध्यानन्तरं यावत् 23-11 इति सुदृढ़ अग्रता गृहीता। उत्तरार्धे च पुनरपि 14-10 इत्यंकैः तदैव वर्चस्वं निरन्तरं परिपालितं। वर्गचक्रे भारतस्य एषः अनुक्रमात् 4th विजयः अस्ति इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम। तो वंदना बहन हम हाजिर हो गए हैं ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर के
1: जी।
0: और देखिए आज गुरुवार का दिन है
1: और हमारे पास देखिए एसएमएस भी बहुत सारे आ गए हैं
0: जी।
1: लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ चर्चा के विषय भी हैं कि जो हम अपने भाइयों से करेंगे। जैसे कि आज एक विश्व समुद्री दिवस है और इसके बारे में कहते हैं ना कि जब ये शुरुआत हुई थी ये 17 मार्च 1978 को मनाया गया था ये पहली बार। और इस दिन आईएमओ कन्वेंशन में लागू होने वाले 20वीं वर्षगांठ को चिन्हित के लिए चुना गया था और तिथि का बदलाव बाद में हुआ और शुरुआत में इसे मार्च में मनाया गया था लेकिन बाद में इसे सितंबर के तीसरे गुरुवार को मनाने लगे।
0: बिल्कुल, तो ये तो रही जानकारी भाई विश्व समुद्री दिवस के बारे में। और देखिए पूरे देश भर में सेवा संकल्प अभियान 2026 का औपचारिक शुभारंभ हो गया है वंदना बहन। और देखिए ये राष्ट्रव्यापी अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर के 17 अक्टूबर तक 2026 तक पूरे महीने जो है ये चलाया जा रहा है। और इस अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन और जन सेवा में 25 वर्ष यानी कि रजत जयंती पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित किया जा रहा है
1: जी। बिल्कुल, और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे जो युवा हैं और हमारे जो नागरिक हैं उनको सेवा समर्पण और राष्ट्र निर्माण के कार्यों से जोड़ना। और मुख्य संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी का यही है कि सेवा से समाज, संकल्प से विकसित भारत। उन्होंने कहा है कि सेवा ही हमारा मुख्य मकसद होना चाहिए।
0: बिल्कुल, और देखिए उन्होंने कई प्रकार की योजनाएं भी चलाई हैं। जैसे एक योजना ऐसी भी है कि एक जिला और एक उत्पाद भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों की एक महत्वपूर्ण पहल रही है ये, जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान करना और उसे वैश्विक बाजार में एक ब्रांड के रूप में स्थापित करना है।
1: बिल्कुल, और साथ साथ और भी गतिविधियां हैं जैसे स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, जन जागरूकता और सामाजिक दायित्व।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो इस संकल्प अभियान के तहत विभिन्न प्रकार के जो है ये दायित्व हम जो है निभा रहे हैं। और भाई अब कार्यक्रम को शुरू करते हैं और एसएमएस भी हमारे पास में काफी आ चुके हैं वंदना बहन। और आज के हमारे पहले कलाकार हैं अमित तेवतिया और इनके लिए भी हमारे पास में एसएमएस आ चुका है। और ये एसएमएस हमें मिला है गांधीनगर गुजरात से, भेजने वाले हैं सुरेश राठौड़ और इनका पूरा परिवार। और ये एसएमएस हमारे पास में आया है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से, भेजने वाले हैं रवि कुमार राहुल और इनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमारे पास में आया है गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से, भेजने वाले हैं रमेश कुमार कंबोज और इनका पूरा परिवार।
1: और मेरे पास है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। और आदरणीय है हमारे पास टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से विजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार।
0: ये एसएमएस हमारे पास में आया नूरमेल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, भेजने वाले हैं मुसरत जहानाज और इनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमारे पास में आया है दादरी गेट भिवानी से, भेजने वाले हैं कृष्ण मेहरा और इनका पूरा परिवार।
1: मेरे पास पराली छत्तीसगढ़ से है नीतीश कुमार देवगन और बागपत से है संजय डिगारिया।
0: और ये एसएमएस हमें मिला है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से, भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग और इनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमारे पास में आया है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले अखिलेश कुमार साहू और इनका पूरा परिवार। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी बिहार से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू और इनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमारे पास में आया है आदर्श नगर मेलोट पंजाब से, भेजने वाले हैं राज शर्मा और इनका पूरा परिवार। कुगदा कुमारी छत्तीसगढ़ से हमें एसएमएस भेज रहे हैं बलराम बया और इनका पूरा परिवार।
1: और मेरे पास है हरगोविंद नगर पंजाब से सुरविंदर सूद और अनीता सूद और इनका पूरा परिवार।
0: ये एसएमएस हमारे पास में आया है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं रोशनलाल देवांगन और इनका पूरा परिवार। जमानिया गाजीपुर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश जायसवाल और इनका पूरा परिवार। सहारनपुर से फरमाइश भेज रहे हैं कुमार हेड़ा से सैयद मसरूर और इनका पूरा परिवार। ये एसएमएस हमारे पास में आया है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से, भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। कनेरा मोहल्ला पटियाला से फरमाइश भेजने मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है गांव मायचा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से, भेजने वाले हैं कंचित शर्मा, सतपाल शर्मा, मास्टर बनी सिंह, मास्टर देवेंद्र सिंह, सर्वेश गिरी महाराज, कुमारी तनु और शिव कुमार शर्मा और पवन शर्मा की। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर अमित कुमार तेवतिया की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा रहेगा महाभारत का।

0: जाना मेरे,
1: जाना हो तीर जाना मेरे गुरु धुर जाना। अभी हमारे सभी बहन भाई सुन रहे थे ये रागिनी अमित तेवतिया की आवाज़ में भाई, और किस्सा था महाभारत का, और महाभारत में भी वैराट पारु से आपने ये रागिनी सुनी अभी हमारे सभी श्रोताओं ने।
2: और देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अपने भाइयों को बताने के लिए कुछ और भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
1: बिल्कुल।
2: और इसमें यही है कि एक नारी जो है वो जगत का निर्माण करती है, सृष्टि का निर्माण करती है, अगर उसको ही नहीं बचाया जाएगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर

0: और देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अपने भाइयों को बताने के लिए कुछ और भी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
1: बिल्कुल
0: और इसमें यही है कि एक नारी जो है वो जगत का निर्माण करती है, सृष्टि का निर्माण करती है, अगर उसको ही नहीं बचाया जाएगा तो संसार नष्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि अगर एक बेटी जन्म लेती है तो दो परिवारों का संरक्षण करती है वो।
1: बिल्कुल, देखिए
0: तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये बहुत ही बढ़िया योजना है, जो हमारे उनके स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल देखिए कहते हैं ना कि पढ़ेंगी बेटियां तो बढ़ेंगी बेटियां।
0: बिल्कुल
1: निश्चित रूप से आपने इस बहुत अच्छी बात कही है कि जब हमारी बच्चियां शिक्षित होती हैं
0: जी,
1: तो अपना परिवार तो संपन्न करती ही हैं, जहां पर जाती हैं शादी होकर
0: वो
1: के उस
0: भी
1: परिवार को भी
0: जी
1: बहुत
0: बिल्कुल।
1: हाँ संभाल लेती हैं और
0: और
1: अच्छे प्रकार
0: देखिए
1: से अपने परिवार को चलाती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: और देखिए हमारी जो कन्याएं हैं उनके लिए एक विशेष योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें उनके माता पिता बेटियों के भविष्य और उच्च शिक्षा के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोल सकते हैं।
1: बिल्कुल, तो ये तो रही जानकारी भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में। और देखिए अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं यशपाल, और यशपाल के लिए भी हमारे पास में काफ़ी SMS आ चुके
0: जी
1: हैं वंदना बहन। और ये SMS हमें मिला है भाई मेरठ कैंट से भेजने वाले दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमें SMS भेज रहे हैं जो सुनना चाहते हैं यशपाल से रागनी। और ये SMS हमें मिला है दतरंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं हीरामणि वर्मा और इनका पूरा परिवार, गांव ढाणी लाल खां नोहर से फरमाइश भेज रहे हैं जावेद खां अरमान खान उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है लेलोड़ा जिला बागपत से भेजने वाले हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनका पूरा परिवार।
0: मेरे पास भी है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर और उनका पूरा परिवार, और छत्तीसगढ़ से हैं कमलेश साहू और उनका पूरा परिवार, और छत्तीसगढ़ से ही है राष्ट्रपाल गजभिये और इनका पूरा परिवार।
1: करावल नगर दिल्ली से फरमाई भेज रहे हैं रामनाथ प्रजापति और इनका पूरा परिवार। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाई भेज रहे हैं विक्रम कडवासरा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है वंदना बहन भोपालगढ़ राजस्थान से भेजने वाले हैं धर्मेंद्र छिपा और इनका पूरा परिवार। एकता कॉलोनी रोहतक से भी हमारे पास में फरमाइश आई है भेजने वाले हैं सीताराम कांगड़ा और इनका पूरा परिवार। वडिंगखेड़ा पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मिंटू टॉम्स और इनका पूरा परिवार। जटवाड़ा गाजीबाद से हमारी फरमाइश भेजी है शीशपाल अकेला और उनके पूरे परिवार ने। पटेल नगर मेलोट से फरमाइश भेज रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया और इनका पूरा परिवार।
0: जी हाँ, और करनाल हरियाणा से हैं विजेंद्र कुमार जयजान उनका पूरा परिवार, और उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और उनका पूरा परिवार, और पदमपुर जिला गंगानगर राजस्थान से हैं मेहर अरोरा और उनका पूरा परिवार।
1: धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से फरमाई भेज रहे हैं निशार सलमानी और उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे भाई है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं मुकेश शर्मा और उनका पूरा परिवार। गांव नथाना पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं हरजिंदर सिंह छिंदा और उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में यह है लख नादौन जिला सिवानी मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं भाई लाडला जी चौबे और इनका पूरा परिवार।
0: जी
1: तो सुनते हैं सभी की फरमाइश पर अमित कुमार यशपाल की आवाज़ में ये रागनी।

0: वो भी हमारे भाई सुन रहे थे यशपाल की आवाज में ये रागनी, और किस्सा था चंद किरण का
1: जी।
0: और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं बदन सिंह और कल्याण सिंह, और इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ चुके हैं। वंदना बहन, ये SMS हमें मिला है साले भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं जीतू ध्रुव और इनका पूरा परिवार। वडाली देशमुख से फरमाइश भेज रहे हैं राजेश

0: हिसार से हैं राम राजकुमार डुंडी और उनका पूरा परिवार। और ये है मेरे पास मुल्तानी ढांगा पहाड़गंज से अनिल मोहर और उनका पूरा परिवार।
1: नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाई भेज रहे हैं पीएस नाहवकर उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है खुर्जा उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा और इनका पूरा परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं लालगिरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास आई है आसाम से। भेजने वाले हैं हितेंद्र दास और इनका पूरा परिवार। जीटीबी मार्केट अहमदगढ़ मंडी पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद अनवर अंसारी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास आई है सूरतगढ़ राजस्थान से। भेजने वाले हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से भी हमारे फरमाइश आई है। भेजने वाले हैं जॉन डिकेस्टो और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है ग्राम पंचायत बढ़ेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा और इनका पूरा परिवार। गाँव खोखरावली श्री गंगानगर से फरमाइश भेज रहे हैं विनोद बारसा और इनका पूरा परिवार। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं साहजी बोड़खे और इनका पूरा परिवार।
0: बिल्कुल। और कोटवा नारायणपुर पावा पट्टी से हैं ओम प्रकाश और उनका पूरा परिवार और गाजीपुर से हैं प्रतीक राय और उनका पूरा परिवार।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर बदन सिंह और कल्याण सिंह की आवाज में ये रागनी।
2: अरे सुन।

0: तो वंदना बहन, अभी हमारे भाई सुन रहे थे मदन सिंह और कल्याण सिंह से, ये रागनी और किस्सा था भाई दुष्यंत शकुंतला का। और इसी रागनी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक शिवनंदन लाल।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भाव हर व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। श्री मोदी वडनगर से वाराणसी तक यात्रा कर रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर रहे थे।
2: सेवा, यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनेक योजनाओं की पहचान अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सेवाओं के रूप में बनी है। उन्होंने विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने का आह्वान किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। नीट पीजी 2026 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। 30 अगस्त को देश भर में आयोजित परीक्षा में लगभग 2,66,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवार 1 अक्टूबर या उसके बाद आधिकारिक वेबसाइट से अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता, दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है। जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन

और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को अत्यधिक बल प्रयोग, मनमानी गिरफ्तारियों, संचार अवरोध और शांतिपूर्ण समूहों के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल से दबाया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार में आज 1.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 1,248 अंक गिरकर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 384 अंक की गिरावट के साथ 23,063 पर दर्ज हुआ। जापान एशियाई खेलों में आज भारतीय एथलीट सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ के फाइनल में कांस्य पदक जीत लिया है। अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने निशानेबाजी के मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। रोशिबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायान की डबल स्कल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। जय कुमार, अंशा बाबू, मानू टीएस और रशदीप कौर की मिक्स्ड टीम ने 4x400 के फाइनल में और अनिमेष कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं परवीन ने 65 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को हमारी नमस्कार। और जैसा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे बार बार कहते हैं कि भाई आप खेती बाड़ी के साथ साथ और बहुत सारे काम हैं जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उद्देश्य हमारा यही है कि आपकी जो आमदनी है वो बढ़े और लागत है वो कम आए। बात दुग्ध उत्पादन की करें तो लाखों हमारे भारतीय ग्रामीण परिवारों के लिए डेयरी एक सदियों से पुरानी परंपरा है। दुग्ध किसी भी अन्य कृषि वस्तु की तुलना में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान देता है।
4: आज हम बात करेंगे खेती के साथ साथ उस काम की भी जो लाखों ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी का सहारा है, पशुपालन और डेयरी। जरा सोचिए, सुबह का समय है, पशुपालकों ने दूध दुहा और दूध से भरी हुई बाल्टी लेकर कलेक्शन सेंटर की ओर चल पड़े। लेकिन असल में शशि, दूध की असली कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि दूध की क्वालिटी, उसकी टेस्टिंग, समय पर चिलिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फिर मार्केट तक उसकी पहुँच, इन सभी कड़ियों का मजबूत होना डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल सही कहा कोमल आपने, और इसीलिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम के बारे में हम अपने किसान बहन भाइयों को बताएं तो ये भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की

0: योजना है जिसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करना और साथ ही संगठित बाजार तक पहुंच बढ़ाना है।
1: सबसे पहले बात करते हैं हम दूध के संग्रह की, यानी कि मिल्क के कलेक्शन की। तो जब आप दूध को सही ढंग से व्यवस्थित करते हैं, उसे कलेक्ट करते हैं, उसकी साफ सफाई

0: और परीक्षण सुविधाओं का निर्माण और मजबूती करना, और साथ ही देश भर में नई डेयरी सहकारी समितियों का गठन और साथ ही उनका विस्तार करना है।
1: बिल्कुल, और यही वजह है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम को एक ऐसी व्यवस्था मजबूत करने के प्रयास के रूप में समझा जा सकता है जिसमें पशुपालक का दूध केवल गांव की सीमा तक ना रहे बल्कि एक संगठित डेयरी वैल्यू चेन का हिस्सा बन सके। तो आज की बात को बस एक पंक्ति में याद रखिए साथियों, दूध की असली ताकत सिर्फ उसकी मात्रा में नहीं, उसकी क्वालिटी और उसकी पूरी डेयरी जर्नी को मजबूत बनाने में है। और जब ये कलेक्शन से लेकर मार्केट तक की कड़ियां मजबूत होंगी तो उनसे जुड़े पशुपालकों के लिए भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एक्सेस और डेयरी सेक्टर में आगे बढ़ने के अवसर भी मजबूत होंगे।
0: तो कोमल, ये तो बात रही राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम की, और हमारे वो किसान बहन भाई बागात है जिनकी, और फलों की तुड़ाई हो चुकी है, और उसके बाद कुछ ऐसे समसामय कार्य होते हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो अगली फसल है उनको अच्छी मिले, उसका दाम भी अच्छा मिले। तो फलों की तुड़ाई के बाद वो अपने बाग का प्रबंधन कैसे करें, कौन कौन सी कृषि क्रियाएं होती हैं, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
1: और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर चवलेश कुमार, आप

0: मानवीय प्रवृत्ति है कि हम एक बार फल तोड़ते हैं तो अपने बागों को, अपने खेतों को थोड़ी देर के लिए हम अनदेखा कर देते हैं, जब तक नई फसल ना आए। मैं किसान भाइयों से यही बोलना चाहता हूं कि जितना हमने फूल आने से लेकर फल लगने और फल लगने के बाद उसके तुड़ाई में जितना हमने देख रेख किया है, उतना ही देख रेख हमें फल की तुड़ाई के बाद भी अपने बागों की करनी है, क्योंकि यह समय होता है अपने बाग को अगली फसल के लिए तैयार करने का। और यदि हम इसमें अनदेखा करेंगे तो हम अगला जो फसल है शायद जो पिछली फसल है उसकी तुलना में हम कम ले पाए। इसलिए फल उत्पादन या फल की तुड़ाई के बाद भी हमें बागों का बहुत ही अच्छा प्रबंधन करना है। और इसमें बहुत सारी फसलें हैं हमारे, जैसे उत्तरी भारत, तो जैसे आम, आम हमारी प्रमुख फसल है जिसकी तुड़ाई हो चुकी है, हमने लगभग जुलाई तक अपने आम को तोड़े हुए हैं। अब हमारी जो बाग है या आम के पेड़ है वो अगली फसल के लिए तैयार हो रही है। तो मैं किसान भाइयों को यही बतलाना चाहता हूँ कि ये समय है कि अपने पेड़ों को, अपने फल के पेड़ों को, और या समुचित रूप में बोलूं तो ये बागों को हमें ऐसा बनाना है कि ये टिकाऊ उत्पादन करे या एक सस्टेनेबल फ्रूट प्रोडक्शन करे, जिसमें दोनों चीज हो, एक तो बोलते हैं उपज और दूसरी है गुणवत्ता। जिन किसान भाइयों ने अभी तक न्यूट्रिशन, जो हम बोलते हैं खाद, खाद नहीं डाला है अपने खेतों में, तो वो खाद की एक समुचित मात्रा जरूर उपयोग करें, जिसमें हम बोलते हैं कि अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, आजकल केचुए की खाद का भी उपयोग बढ़ा है। तो जैसे भी आपकी उपलब्धता हो, आप 15 से 20 किलो अच्छी सड़ी हुई गोबर खाद का प्रयोग करें, और साथ ही साथ कुछ जैसे फर्टिलाइजर बोलते हैं कि जो इमिडिएट रूप में पौधों को प्राप्त हो सके, तो इसके लिए एक निर्धारित मात्रा है, जैसे हम लोग फिक्स करते हैं पेड़ों के लिए 50 ग्राम और 100 ग्राम, ये जो नत्रजन है, फास्फोरस है और पोटास की मात्रा है, इसमें हम एज वाइज बढ़ाते हैं और ये 10 साल में जाके एक फिक्स हो जाता है, जो बोलते हैं कि 1 किलो नत्रजन, 1 किलो पोटास और 500 ग्राम फास्फोरस के रूप में ये फिक्स होता है। तो 10 साल के बाद हम उसको उस रेट से नहीं बढ़ाते और 10 साल के ऊपर जो पौधा है उसमें ये फिक्स मात्रा में हम डालते हैं। और इसके डालने की यह विधि की पहले पौधे की कैनोपी को अच्छे से देख लें, और जितने भी हमारे खाद हैं, फर्टिलाइजर हैं, उसको डालते समय ये ख्याल रखना है कि पौधे की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। हमें तने पे खादों का उपयोग नहीं करना है, तनों से समुचित एक दूरी बना ले। जैसे अपने एक पैर का एक उदाहरण बताता हूँ कि वहां पे हम स्केल नहीं ले जा सकते, तो अपने पैर को रखें जहां हमारा उंगली हो और लास्ट टो हो, तो वहां से आप शुरू करें। ऐसा नहीं कि तने पे हम खाद या फर्टिलाइजर का उपयोग करें, और हल्की खुदाई करके उस खाद को और उर्वरक को आप उपयोग करें। और ख्याल रखें कि जैसे बारिश का सीजन है तो बारिश ठीक है, लेकिन जैसे ही हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो पानी का उपयोग जरूर करें। जैसे हमने खाद दिया और उर्वरक दिया, उसके बाद पानी जरूर डालें पौधों में।
1: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि बागों का प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि हमारे किसान जो हैं आने वाली फसल के लिए तैयारी कर सकें, उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। लेकिन हम कई बार ये देखते हैं कि बाग में सूखी शाखाएं पड़ी होती हैं, रोगग्रस्त प्लांट जो हैं उनके भी पार्ट्स कई बार बाग में ही रह जाते हैं, तो तुड़ाई के बाद जो बगीचे की साफ सफाई है वो कितनी ज्यादा जरूरी है?
0: यह बहुत ही नितांत आवश्यक है। जैसे हम बोलते हैं ना, घर में सैनिटेशन, साफ सफाई, ये रोगों को नहीं लाता है ना, तो उसी प्रकार हम अपने बागों की साफ सफाई करें। तो सड़े गले फल क्या होते हैं कि बहुत सारे कीड़ों को बुलाते हैं, बहुत सारे बीमारियों को बुलाते हैं, यदि हम उसको वैसे ही छोड़ दे। जैसे आपको बताना चाहूंगा कि आम में, अमरूद में बहुत सारे फ्रूट फ्लाई होते हैं, यदि हम वैसे छोड़ दें तो उसमें जो कीड़ों की संख्या पनपने लगेगी। तो मेरा किसान भाइयों से यही अनुरोध है, जब भी आप बिना देरी किए हुए जितने भी आपके फल सड़े हुए रहे होंगे या जो गिर गए होंगे, उनको आप तुरंत ही, जैसे कोई फल गिर गया हो जो आपके बाजार के लिए, आपके खाने के लिए उपयोगी ना हो, आपको लग रहा है कि इसमें कुछ कीड़े हैं या बीमारियां हैं, उसको आप तुरंत ही बागों से हटाए और एक दूरी पे ले जाकर, या तो बड़ा गड्ढा तैयार करें और उस तैयार गड्ढे में उसको बिल्कुल ले जाके आप मिट्टी में दबाना शुरू कर दें। और ये जो प्रक्रिया है बहुत जल्दी करना है, आपको बिल्कुल भी समय नहीं देना है। दूसरी बात, आपने एक अच्छी बात रखी कि टहनियां, जिसमें बीमारियों का अंदेशा होता है या जिसमें कीड़े हैं, हमें ये ज्ञात होता है कि ये शाखाएं अच्छे नहीं चल रही हैं, तो मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि जो भी आपको लग रहा है कि सूखी डालियां हैं या आपको लग रहा है कि ये टहनी अच्छे से बढ़ नहीं रही है, उसके पत्ते अच्छे हरे नहीं है, तो वैसे टहनियों को आप एक नियमित लेंथ पे कट करें, जहां से वो हेल्दी ना लगे उस पूरे ब्रांच को आप कट कीजिए, काटने के बाद उसमें एक कॉपर ऑक्सीक्लोराइड करके फफूंद नाशक दवाई है, उस दवाई को एक पेस्ट, जैसे हम सिंपल तरीके से हम बोलते हैं कि पहले हमारे पास एक पेस्ट आता था, उसको पाउडर फॉर्म में होता, तो हम जैसे उसको पेस्ट बना के ब्रश करते थे, वैसे उसको पेस्ट बनाना है और उसको ब्रश में लगा के उस कटे

0: के भाग में पूरी तरह लेप लगाना है। इससे क्या
1: जी
0: होगा, कोई भी फंगस है उसका फिर से उस पर प्रकोप नहीं आएगा। और किसान भाइयों को मैं इसी के साथ ये बताना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी टहनियां जो जमीन से लग रही हो, दूसरी है कि ऐसी शाखाएं जो छाया दे रही हो, वैसे टहनियों को आप जल्द से जल्द निकाल दें। और जब भी आप ऐसे टहनियों को निकालते हैं, काटते हैं, तो उस जगह पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक फफूंद नाशक का जरूर उपयोग करें। ये संक्रमण को रोकता है, वहां से कोई भी संक्रमण को आने नहीं देगा।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे बाग में से तुड़ाई किसानों ने कर ली, बागबानों ने कर ली, और उसके बाद आता है एक प्रूनिंग का समय, वो कितनी जरूरी है और कैसे वो प्रूनिंग करनी चाहिए कि कहीं बहुत ज्यादा प्रूनिंग ना हो जाए जिससे कि हमारे बागों को नुकसान पहुंचे, पेड़ों को नुकसान पहुंचे, और फल की तुड़ाई के बाद जो प्रूनिंग है वो किस वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिए और किन शाखाओं को हटाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है?
0: एक इसेंशियल हम बोलते हैं कि जब भी बागों की बात आती है, तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग दो शब्द हैं। तो ट्रेनिंग में एक क्या होता है कि ट्रेनिंग हम इंसानों में, या अपने सर्विसेज में भी बात करते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब ये होता है, जैसे हम पौधों को भी ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि उनको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना जिससे आगे चल के, चाहे आम का पौधा हो, अमरूद का पौधा हो, नींबू का पौधा हो, ये अपना इतना आधार बना ले कि जो भी फल लगे उसको अच्छे से सहन कर पाए।
1: जी
0: यदि हम ट्रेन अच्छा नहीं करेंगे पौधों को, तो उनकी बढ़वार किसी भी दिशा में जा सकती है, उनका आकार, उनका फ्रेमवर्क इतना अच्छा नहीं हो पाएगा कि वह फलों के भार को सहन कर पाए।
1: जी
0: तो इसमें क्या होता है कि यदि ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई, तो आपका जो रो टू रो है, प्लांट टू प्लांट का जो एक स्पेस देते हैं, वो मेंटेन नहीं रहेगा। दूसरी चीज, वो कोई भी दिशा में चलेगा, जिसमें मशीन मशीनीकरण, आजकल ट्रैक्टर चलाना है और बहुत सारे मशीनीकरण का उपयोग करते हैं अपने बागों में, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो ट्रेनिंग हम इनिशियल ईयर में करते हैं, जैसे 1 से लेकर 5 साल तक एक अच्छी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो सभी चारों दिशाओं में शाखाओं को बढ़ाना, 1 मीटर की दूरी पे पेड़ को कट करना ताकि सभी शाखाएं चारों दिशा में अच्छे से फैल जाए, तो ये ट्रेनिंग का आधार है। दूसरा जो हमारा विषय है प्रूनिंग, प्रूनिंग हमें पौधों की प्रजाति या फसल के आधार पे निर्धारित करता है। जैसे आम है, आम में बहुत ज्यादा प्रूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं में जो फूल लगते हैं, वो पुराने शाखाओं में हम बोलते हैं कि फिजियोलॉजिकली मैच्योर शाखाओं में आते हैं, जिसके लिए 8 से 9 महीने की मैच्योरिटी बहुत जरूरी होती है। तो आम में किसान भाइयों को बहुत ज्यादा प्रूनिंग की जरूरत नहीं है। प्रूनिंग उन शाखाओं को करनी है जो छाया दे रही हो। तो मैं किसान भाइयों को ये बोलना चाहता हूँ कि उन शाखाओं को निकालें जो एक दूसरे के ऊपर आके वहां छाया उत्पन्न कर रही हो, कि ऐसे शाखाओं को निकालना है जो वो अंधकार सा बना रहा हो, उसको हटाना है ताकि वहां पूरी तरह अच्छे से जो सूर्य की किरणें पहुंच पाए। जैसे सूर्य की किरणें पहुंचेंगी, वहां पे जो कीड़े और बीमारियों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट निर्मित हो रहा है वो हटता है। इससे हम इन चीजों से निजात पाते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल निकालते रहना। और

निकालना है जो वो अंधकार सा बना रहा हो, उसको हटाना है ताकि वहां पूरी तरह अच्छे से जो सूर्य की किरणें पहुंच पाए। जैसे सूर्य की किरणें पहुंचेंगी वहां पे जो कीड़े और बीमारियों के लिए जो माइक्रो क्लाइमेट निर्मित हो रहा है वो हटता है, इससे हम इन चीजों से निजात पाते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल निकालते रहना। और दूसरी कि जो नीचे जमीन से लगी हुई शाखाएं उनको भी बिल्कुल निकालना, क्योंकि वो उपयोगी नहीं है। उसको नहीं निकालेंगे तो आप खाद पानी और जो भी चीजें करना है वो आप अच्छे से नहीं

0: है। जैसे मैं बात करूं कि अमरूद की या आम की, नींबू की, सभी फसल को एक उपयुक्त अनुपात में पोषण चाहिए। जैसे हम अपने लिए बोलते हैं कि पोषित फल खाना है, हमें हमें वो अनाज खाना है जिसमें पोषण हो, तो उसी प्रकार हर फल के पौधे को पोषण की आवश्यकता है। यदि हम इसे अनदेखा करेंगे तो जो आज हम सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो नहीं होगा। किसान भाई, अपने बागों में आपने अनुभव किया होगा कि कई किसान क्या होते हैं कि फसल लेते जाते, लेकिन एक समय आता है जैसे 4 से 5 साल के बाद वो हमारे पास शिकायत लेके आते हैं कि जी मेरा अमरूद था बहुत अच्छा फसल दे रहा था लेकिन आज नहीं दे रहा है, आम के बाग बहुत अच्छा फसल देता था लेकिन आज वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं उपयुक्त पोषण, उसमें से कम उपज है, कम गुणवत्ता वाले फल है, उसका कारण ये हो सकता है। इसलिए हमें पोषण का उपयुक्त अनुपात में हर समय या हर सीजन में हमें उपयोग करना जरूरी है। जैसे आपने बोला कि हम कैसे जाएं, कैसे पोषक तत्वों का मैनेजमेंट करें, तो पहला तो होता है कि जब भी हम बाग लगाते हैं तो अपने जमीन की न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग करवाइए, उसका क्या पीएच होगा, क्या आपका पानी सही है, क्या आपका जमीन सही है, उसमें कितने ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है, तो इसके प्रोफाइलिंग तो हम बाग लगाने से पहले पहले करते ही हैं। लेकिन क्या होता है कि हर साल हमें ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिशन अपने बागों में लगाना जरूरी है, देना जरूरी है। जब भी हम फल लेते हैं तो उसमें जो हमारे बाग हैं या पेड़ हैं, इन न्यूट्रिशन को, इन पोषण को उपयोग करते हैं, तो अल्टीमेटली जो हम बोलते हैं कि हम फल तोड़ रहे हैं तो उसके रूप में वो न्यूट्रिशन जाता है। तो उनको ही भरपाई करने के लिए जैसे सबसे अच्छा चीज़ तो है कि ठीक है, आपका जमीन का प्रोफाइल आपके पास होता है, आपके पास रहता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी है। लेकिन जैसे कि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर को भी हम ज़्यादा प्रमोट नहीं करते कि ये सस्टेनेबल वे नहीं है, तो इसलिए हम मानते हैं कि जैसे ग्रीन मैन्यूरिंग है, बीच बीच में हम किसान भाइयों को बोलते हैं कि आप जैसे फसल नहीं है तो ग्रीन मैन्यूरिंग कीजिए, जैसे ढैचा लगाइए जो बीच में जो खाली जगह है उस, और उसको लगभग 30 से 35 दिन में पलटवार कीजिए, तो उसके क्या है, ये हरित खाद के रूप में आएगी। पहला चीज, मूंग को भी लगाते हैं लोग, मूंग को भी हरित खाद के रूप में उपयोग कीजिए। ये क्या है कि ये नत्रजन फिक्स करने वाले हैं, तो इससे जो नत्रजन की मात्रा अच्छी होगी, और फिर जब आप पलटवार करते हैं तो उसमें काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ न्यूट्रिएंट भी आते हैं, तो आप हरित खाद है इसका उपयोग जरूर करिए। तो ये बहुत सारा जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद है, केचुए की खाद है, तो इसके तौर पे हम या हमारी जो निर्भरता है गोबर की खाद या वर्मी पे उसको कम कर सकते हैं। तो ये एक सस्टेनेबल अप्रोच है अपने बागों में पोषण देने का। तो मैं सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध करूंगा कि इन चीजों का आप उपयोग जरूर करें। साथ ही साथ कभी कभी देखा गया है कि जिंक या बोरान की भी कमी होती है। जिंक और बोरान बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फलों में, खास करके जैसे अमरूद है तो बोरान होता है कि हम बोलते हैं कि फल फट रहे हैं तो बोरान का एक समुचित मात्रा होना चाहिए जमीन में, तो बोरान और जिंक की मात्रा भी बीच बीच में उपयोग कर सकते।
1: डॉक्टर साहब कहते हैं ना कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, तो साथियों वैसे ही हमारे पेड़ पौधों के लिए भी बहुत जरूरी है कि उन्हें भी सही पोषक तत्व जो है वो सही समय पर मिलते रहें। और सिंचाई और ड्रेनेज की बात करें तो डॉक्टर साहब, बाग में हम कई बार देखते हैं कि पानी की कमी की समस्या भी होती है और कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग भी हो जाती है। तो डॉक्टर चवलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि तुड़ाई के बाद इरिगेशन और ड्रेनेज मैनेजमेंट में जो है हमारे बागवानों को क्या ख्याल रखना चाहिए।
0: तो मैं किसान भाइयों को यही बोलना चाहता हूँ कि जैसे बारिश का सीजन होता है, जैसे अभी हमने देखा कि जुलाई और अगस्त में बहुत बारिश हुई, तो उस समय क्या है, पानी का भराव ना होने दे, उनको जितना जल्दी हो सके अपने बागों से ड्रेन करके निकालना है, बिल्कुल खड़े नहीं होने देना है सादे शब्दों में। दूसरा चीज है पानी की आवश्यकता, तो इस समय पानी को आप 10 से 15 दिन, जैसे भी आपके पास ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर या जो भी बेसिन इरिगेशन कर रहे हैं आप, फ्लड इरिगेशन जो खुला छोड़ने वाली पानी है उनको अवॉइड करें, इससे पानी की भी खपत ज्यादा होती है, तो समुचित मात्रा में पानी का उपयोग और पानी अपने बागों को देते रहे।
1: बिल्कुल, यानी पानी देना मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पानी की जरूरत को समझना असली मैनेजमेंट है डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब, चलते चलते आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जब बागों में फलों की तुड़ाई हो गई तो उसके बाद कुछ कीट और रोग भी होते हैं जो कि हमारे बाग में पीछे रह जाते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग किस तरीके से करें जिससे कि उन्हें फैलने से रोका जा सके, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से कीट और रोग का नियंत्रण नियंत्रण करना चाहिए बागवान।
0: तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि फल की तुड़ाई होने के बाद भी वे अपने बागों में नियमित रूप से जाएं। और बहुत सारी चीजें आती है, जैसे अंगूर है, अभी उत्तरी भारत में अंगूर है, तो उसमें एंथ्राक्नोज, पाउडी मिल्डू, डाउनी मिल्डू, ये पूरे अच्छे से आते हैं। फिर ऐसे आम में बात करें तो एंथ्राक्नोज, फिर पाउडी मिल्डू, बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। जैसे अभी मैं बोलूंगा मिली बग, किसान भाई हमें मार्च में आएंगे और मिलेंगे और बोलेंगे कि वो सफेद कीड़ा आएगा, तो इन सब का मैनेजमेंट हमें

0: अभी करना है, पहले अच्छे से जुताई करवा लीजिए अपने खेतों की, और जहां जहां कैनोपी एरिया है उसमें जैसे क्लोरोपायरीफास है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको वहां ड्रेंचिंग कीजिए, ताकि उसके जो अंडे हैं या जो लार्वी और जो बनेंगे वो पूरी तरह नष्ट हो जाएं, तो आगे जो आप फसल लेंगे उसके लिए काफी ही लाभप्रद होगा। उसमें कम से कम जैसे कोई फंगस वाली जो चीज आ रही है तो उसके लिए आप फंजीसाइड का उपयोग करें, और यदि आपको मालूम नहीं हो पा रहा है कि ये क्या रोग है या क्या कीट है, तो आप अपने निकटस्थ जितने भी KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां जाके जितने भी हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप सलाह लेके एक उपयुक्त मात्रा में कीटनाशक हो चाहे रोगनाशक हो उनका उपयोग करना है, ना हमें कम और ना ही ज्यादा।
1: तो हमारे जितने भी किसान मित्र या बागबान हमें सुन रहे हैं उनसे हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि फलों की तुड़ाई के बाद अपने बागों में प्रबंधन करें, इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज जो भी हैं जो समसामयिक कार्य, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पोषक तत्व प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, बगीचे की साफ सफाई करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर चवलेश आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब कोमल अपने किसान बहन भाइयों को सुनवाते हैं एक लोकगीत, कलाकार हैं पुष्पा गोसाई।

0: अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
1: तो ये तो बात थी मौसम की, लेकिन इसके साथ साथ अपने किसान मित्रों को ये भी बता देते हैं शशि कि वो इस समय अपनी खेती में कौन कौन से काम कर सकते हैं। ये जो समय चल रहा है ना, ये धान की फसल की रोपाई और किस्म के अनुसार बाली निकलने और दाना बनने की अवस्था है, और ये जो चरण है ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि इस समय में पानी की कमी होने के कारण से जो दाने हैं वो ठीक प्रकार से भर नहीं पाते, तो इसकी वजह से बालियों में दाने की संख्या और आकार दोनों घट जाते हैं और उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है किसान भाइयों।
0: इसके अलावा किसान बहन भाइयों, इस समय कपास की फसल पर रस चूसक कीटों का प्रकोप अधिक देखा जाता है। इनमें मीली बग, जैसिड माहू, सफेद मक्खी, रेड कॉटन बग, हरा तेला, भूरी सुंडी और बालों वाली सुंडी प्रमुख है। ये कीट पत्तियों और तनों से रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं, जिससे उनकी वृद्धि और फल धारण क्षमता घट जाती है। रेड कॉटन बग के अंडों को नष्ट करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें और खेत के आसपास उगी घास को नष्ट करें।
1: किसान साथियों, इस समय गन्ने पूरी वृद्धि की अवस्था में है और तेज हवा या तूफान की स्थिति में फसल के गिरने की आशंका ज्यादा रहती है। इससे बचाव के लिए गन्ने की दूसरी तीसरी बंधाई जरूर कर लें, और बंधाई हेतु सूखी पत्तियों का उपयोग करना अधिक लाभकारी माना जाता है, क्योंकि वो पौधे को अच्छी तरह से सहारा देती हैं और जकड़ कर रखती हैं। खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहे ताकि नमी संतुलित बनी रहे और फसल की बढ़वार प्रभावित ना हो।
0: किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही मौसम आधारित कृषि सलाह की, और अब किसान बहन भाइयों आपको इंतजार होगा आजादपुर मंडी के बाजार भाव का। तो सबसे पहले बात करते हैं सब्जियों के भाव की।
1: सब्जियों की बात करें तो आलू 13 रुपए प्रति किलो, प्याज 32, टमाटर का भाव रहा 24 रुपए प्रति किलो, वहीं बैंगन 29 रुपए प्रति किलो, पत्ता गोभी 21 रुपए प्रति किलो, खीरा 24 रुपए प्रति किलो, घिया 11 रुपए प्रति किलो, भिंडी 20 रुपए प्रति किलो।
0: और अब बात करें फल के भाव की, तो सेब बिका 102 रुपए प्रति किलोग्राम, केला 19 रुपए प्रति किलोग्राम, अमरूद 70 रुपए प्रति किलोग्राम, पपीता 23 रुपए प्रति किलोग्राम। तो किसान बहन भाइयों, ये आजादपुर मंडी का बाजार भाव। और अब कोमल समय हो चुका है अपने किसान बहन भाइयों से अनुमति लेने का, लेकिन अनुमति लेने से पहले अपने किसान बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि उनको आज का कार्यक्रम किसान वाणी कैसा लगा, इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है
1: feedback@gmail.com।
0: इसी के साथ कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। किसान बहन भाइयों को हमारी
1: नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। मैं हूँ दीप्ति और गजल की महफिल लेकर एक बार फिर हाजिर हैं हम आपको सुनवाएंगे बेहतरीन गजलें।

अपनी गजल अभी आपने सुनी पंकज उधास साहब की पुरसुकून आवाज में, और एक बार फिर इसी खूबसूरत आवाज को हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं और साथ में कर रहे हैं ये इल्तिजा।

तो बस इसी चाहत के साथ, इसी कल फिर मिलने की चाहत के साथ इस कार्यक्रम को खत्म करने की इजाजत चाहूंगी। आप बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के संग।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, सीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में सद्भावना सम्मेलन में न्याय, सद्भाव और मानक सेवा पर आधारित भारत का आह्वान दोहराया। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया और दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज 9वें राष्ट्रीय पोषण माह और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली में लगभग 10,870 आंगनवाड़ी केंद्र हैं और इनमें कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पालना केंद्रों से जुड़ी कार्यकर्ताओं को भी इस सम्मान पहल में शामिल किया जा रहा है। श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि आंगनवाड़ी बहने बच्चों की देखभाल, गर्भवती महिलाओं तक सेवाएं पहुंचाने, टीकाकरण में सहयोग और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार अगले 2 वर्षों में आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर और स्थायी भवनों में विकसित करने पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी और उनकी कार्य परिस्थितियों में सुधार का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनवाड़ी बहनों के सम्मान, सशक्तिकरण

0: और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
1: आने वाले 2 साल में हमारी जितनी आंगनवाड़ी है वो हमारी पक्की खुद की बिल्डिंगों में होगी। पहले चरण में हमारे जितने स्कूल थे नगर निगम के, हमने अपनी आंगनवाड़ी को वहाँ शिफ्ट करना शुरू, बाकी की आंगनवाड़ियों को भी हम इसी तरीके से बेहतर जगह पे नई कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी तो नई कंस्ट्रक्शन करेंगे और हर सुविधा को देंगे।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत हैदरपुर स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। शिविर में क्षेत्रवासियों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह और स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
2: इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हैदरपुर में लगभग 5000 गज भूमि पर 12वीं तक के नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में सामुदायिक भवन और छठ घाट का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में निरोग धाम विकसित करने की दिशा में भी काम किया जाएगा, जहां आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों पद्धतियों से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में हैदरपुर क्षेत्र के AU ब्लॉक और AO ब्लॉक की झुग्गियों के लिए आवास निर्माण से संबंधित टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण में आयुर्वेदिक अस्पताल क्षेत्र की झुग्गियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने झुग्गी वासियों को आश्वासन दिया कि क्षेत्र की एक भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी और दिल्ली सरकार का उद्देश्य किसी को हटाना नहीं बल्कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं केवल अस्पतालों तक सीमित न रहे बल्कि उन्हें नागरिकों के करीब लाया जाए ताकि उन्हें समय पर जांच और उचित उपचार मिल सके। उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही सशक्त दिल्ली की नींव है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में आयोजित सद्भावना सम्मेलन को संबोधित किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता सामाजिक सुधार से अलग नहीं हो सकती। उपराज्यपाल ने कहा कि महात्मा गांधी, डॉ BR अम्बेडकर, पंडित मदन मोहन मालवीय और सरदार तेजा सिंह समुद्री ने अपने अपने तरीके से जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। इसके अलावा उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत के आह्वान को दोहराया। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत 30 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं। 31 अगस्त से 23 सितंबर के बीच फॉर्म 6 के 1,14,073, फॉर्म 6A के 216, फॉर्म 7 के 1,960 और फॉर्म 8 के 41,897 आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिए रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। दावों और आपत्तियों का निपटारा 29 अक्टूबर तक किया जाएगा। वहीं अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और यूट्यूब पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: दिल्ली राज्य कैंसर संस्थान में जरूरी दवाओं की उपलब्धता के बारे में हाल ही में प्रकाशित मीडिया रिपोर्टों का खंडन करते हुए बताया गया है कि सभी जरूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। संस्थान ने बताया कि लगभग 90% दवाएं उपलब्ध हैं और स्टॉक की लगातार निगरानी की जा रही है। विभाग ने स्पष्ट किया कि मीडिया रिपोर्ट में संस्थान में दवाओं की उपलब्धता की पूरी और वर्तमान स्थिति को सही तरह से प्रकाशित नहीं किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार DSCI के साथ ही राजधानी के सभी सरकारी अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर लगातार बारीकी से नजर रख रही है। दिल्ली नगर निगम में नेता सदन और स्थायी समिति सदस्य जय भगवान यादव ने आज उत्तरी क्षेत्र स्थित राजन बाबू अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर इलाज और अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। श्री यादव ने ब्रोंकोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड कक्ष और लैब का भी जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था सुधारने, बिजली के लटकते तार ठीक करने और पेड़ों की छटाई के निर्देश दिए। साथ ही अस्पताल के कामकाज को सुचारू बनाने के लिए पर्याप्त मिनिस्ट्रियल स्टाफ की तैनाती के भी निर्देश दिए गए।

0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज हिंदू राव अस्पताल का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों से बातचीत कर दवाइयों की उपलब्धता और उपचार व्यवस्था की जानकारी ली तथा सफाई, प्रकाश और सड़क की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए।
1: ICU में 8 बेडेड है, इसको 18 किया जाने का प्रावधान। इसके साथ साथ जो एक रेजिडेंस ब्लॉक है वहाँ पे एक 200 से अधिक बेड का नया एक ब्लॉक बनाया जाएगा, जिसमें से हमारे पेशेंट को और सुविधाएं मिलेगी, आसपास के लोगों को, दिल्ली के लोगों को।
0: श्री वाही ने लेबर रूम, बाल चिकित्सा, आपातकालीन ब्लॉक और अन्य वार्ड का भी निरीक्षण कर उनके उन्नयन और मरम्मत कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे करने के निर्देश दिए। श्री वाही ने कहा कि हिंदूराव अस्पताल जैसे प्रमुख अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ मरीजों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी निगम की प्राथमिकता है। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत आज दिल्ली गेट स्थित बाल भवन में नया रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निगम ने बताया कि केंद्र पर जरूरतमंद लोगों के लिए दोबारा इस्तेमाल किए जा सकने वाले कपड़े, किताबें, खिलौने और बर्तन एकत्र किए जाएंगे। इसका उद्देश्य उपयोगी वस्तुओं के पुनः इस्तेमाल को बढ़ावा देना और कचरे को कम करना है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज राजधानी में विकेंद्रीकृत ठोस कचरा प्रबंधन और राजधानी को कचरा मुक्त बनाने पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने बताया कि इस दौरान कचरा पैदा करने वाले बड़े संस्थानों द्वारा कचरे को स्रोत पर ही शत प्रतिशत अलग करने, वार्ड स्तर पर प्रोसेसिंग करने और नियमों का सख्ती से पालन करने पर बल दिया गया। दिल्ली नगर निगम के दिल्ली को कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत आज सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। उपमहापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली को कूड़े से आजादी केवल एक अभियान नहीं बल्कि स्वच्छ दिल्ली के निर्माण के लिए जन भागीदारी से जुड़ा संकल्प है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: भारतीय रेलवे ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच एक नई दैनिक रेल सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है। कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल जाने वाली रेलगाड़ी संख्या 14153 कानपुर सेंट्रल से रात 8:40 पर प्रस्थान करेगी। ये गाड़ी अगले दिन सवेरे 4:50 पर आनंद विहार पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी और इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। उन्होंने आज नई दिल्ली में विश्व संचार हिंदुत्व का नाम की किताब जारी करने के बाद ये बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श होगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग स्वच्छता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान 6.0 चलाएगा। इसका उद्देश्य कार्यस्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देना, लंबित मामलों का तेजी से निपटारा करना और शासन में सुधार करना है। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। एक रिपोर्ट।
3: नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था भी बदल रही है। उन्होंने नई अर्थव्यवस्था के 3C यानी कम्प्यूट, कम्पेटेबिलिटी और कोलेबोरेशन का उल्लेख किया। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि स्टार्टअप, विश्वविद्यालय, इंजीनियर, विद्यार्थी और प्रौद्योगिकी कंपनियां देश की आत्मनिर्भरता और रक्षा विनिर्माण में योगदान दे सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा कि इसके वास्तविक मूल्य का खुफिया जानकारी विश्लेषण, मिशन योजना, रसद, युद्धाभ्यास और निर्णय समर्थन में इसके उपयोग से पता चलता है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया है कि कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एशियाई खेल 2026 में रजत पदक जीतने वाली वुशु खिलाड़ी रोशिबीना देवी और कांस्य पदक विजेता भारतीय रोइंग जोड़ी सतनाम सिंह और सलमान खान को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती रेखा गुप्ता ने महिलाओं की सांडा 60 किलोग्राम स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली रोशिबीना देवी के लगातार प्रदर्शन, साहस और जुझारूपन की सराहना की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आंगन का मिलन कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने हैदरपुर के अस्पताल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम में सद्भावना सम्मेलन में न्याय, सद्भाव और मानव सेवा पर आधारित भारत का आह्वान दोहराया। दिल्ली नगर निगम ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत बाल भवन में नया रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल केंद्र शुरू किया और दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से आजादी अभियान के अंतर्गत सूरजमल विहार में विशेष सफाई अभियान चलाया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आपका फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका लेकर हम हाजिर होंगे इस संदेश के बाद।
5: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
6: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
5: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
6: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
5: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
6: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
4: सलाम, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका में। और आज फिर एक बार हाजिर हूँ मैं गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर। मैं यानी आपके साथ ही आपकी मितवा, आपकी दोस्त, आपकी अपनी दीप्ति, और हाजिर हूँ लेकर के आपको सुनवाने वाले बहुत खूबसूरत गीतों की एक प्यारी सी माला पिरोकर साथ में करेंगे कुछ प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी बातें, कुछ कहेंगे अपनी, कुछ सुनेंगे आपकी, और शुरू करेंगे इस कार्यक्रम को इस खूबसूरत से गीत के संग जिसको आवाज तो दी है अलका याग्निक साहिबा ने, लेकिन पर्दे पर खूबसूरत अदाकारी की है ऐश्वर्या राय ने। तो स्वीकार कीजिए मेरा।

लीजिए जी, हमारा सलाम भी आप तक पहुंच गया और आपका हमने प्रोग्राम में वेलकम भी कर लिया। लेकिन एक बात तो बताइए, क्या इस गाने को सुनकर कुछ हुआ दिल में? भाई मुझे तो इस खूबसूरत से कॉम्बिनेशन को, जो कि ऐश्वर्या राय और

अभिषेक बच्चन का है ये कॉम्बिनेशन, पर्दे पर देख करके वाकई कुछ कुछ हुआ। खैर, जब हमने ये गीत सुना तो साथ में मेरे दिमाग में एक और बात आई कि देखिए ना, मोहब्बत पे चल पड़ने का कितना आसान सा तरीका है ना, पहले सलाम कर दो फिर आगे की देखी जाएगी। उसी ही तरीके से जब मोहब्बत के रास्ते पे चल पड़ो तो पहला एहसास क्या आता है मन में, पहला एहसास जो कि आपको मोहब्बत का फील करवाता है, वो शायद यही तो होता है कि कुछ कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है।

0: कार्यक्रम में एक बार फिर समय इस छोटे से संदेश का।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका, आपकी अपनी दोस्त दीप्ति पाठक के संग। बातें कर रहे हैं हम मोहब्बत की, प्यार की, इश्क की, और कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं उसमें। कब लगता है कि कुछ कहा जाए, कभी लगता है कुछ कह नहीं सकते, कभी लगता है मिल गए या कभी लगता है बस मिलना ही तो बाकी है। तो देखिए उसी कुछ कुछ वाली फीलिंग को हम और आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं आपको कुमार सानू साहब की आवाज़ में।

कैसी कैसी फीलिंग्स आती हैं उसमें। कब लगता है कि कुछ कहा जाए, कभी लगता है कुछ कह नहीं सकते, कभी लगता है मिल गए या कभी लगता है बस मिलना ही तो बाकी है। तो देखिए उसी कुछ कुछ वाली फीलिंग को हम और आगे बढ़ाते हैं, सुनवाते हैं आपको कुमार सानू साहब की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत।

भी सच है कि कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, उनका बस साथ होना, करीब होना ही काफी होता है। और जब कोई दिल के इतने करीब हो जाए तो फिर उसकी याद भी साथ साथ चल ही पड़ती है, हर पल हर घड़ी। बस इसी एहसास को, इसी खूबसूरत एहसास को अपने दिल में, अपने दिमाग में सदा जवां रखिए। इसी खूबसूरत एहसास को इस गीत में फिर से जी लीजिए।

दोस्तों, कुछ लोग ज़िंदगी में कुछ ऐसे शामिल हो जाते हैं कि जिनका साथ किसी भी ख़ास मौके, किसी ख़ास बात की पहचान का इंतज़ार नहीं करता। वो दूर हों तो भी उनकी मौजूदगी आपको आसपास ही फील होगी। उनकी एक बात, उनका एक ज़िक्र चेहरे पर मुस्कान ले आएगा, और ज़िक्र होते ही जाने क्यों दुनिया बहुत खूबसूरत सी लगने लगती है, सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगता है। लेकिन प्यार क्या सिर्फ किसी को चाहने का नाम है? ये प्यार सिर्फ किसी को चाहने का नाम तो नहीं? और कभी कभी मन में ये सवाल भी तो उठता है कि जिसे हमने अपनी दुनिया में इतनी खास जगह दे रखी है, क्या उसकी दुनिया में भी हम उतने ही खास हैं? इसी सवाल, इसी खूबसूरत कश्मकश को सोचते सोचते, उस खूबसूरत इंसान को याद करते करते, दिल में और भी बहुत से खूबसूरत जज्बात हैं जो उठते हैं। तो चलिए देते हैं उन्हीं जज्बातों को आवाज़ इस गीत के जरिए।

तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। वैसे दोस्तों, मेरा मानना है कि कभी कभी ना किसी के आने भर से जिंदगी का रंग रूप ही बदल जाता है। जो बातें कल तक अधूरी सी होती थी, अधूरी सी लगती थी, उनमें एक खास चमक नजर आने लगती है। वो कहते हैं ना, किस्मत कब किस मोड़ पर कोई खूबसूरत कहानी लिखते किसे पता, बस एक मुलाकात होती है और लगता है जैसे बरसों से यही तो अपना था। हाँ, मन में ये सवाल भी आता है कि क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर ऊपर वाले की कोई खास मेहरबानी हो गई है। और शायद कुछ मुलाकातों का मतलब वक्त बीतने के साथ साथ समझ में आता है। जब किस्मत सचमुच मुस्कुरा दे तो उसका जिक्र भी कुछ खास हो जाता है। ऐसा लगता है कोई आसमान पर चमकता हुआ सा सितारा था जो दिखाई दिया और हमारा हो गया।

पर दोस्तों सच में कभी कभी ना किसी का मिलना किस्मत का तारा सा चमका देता है। एक मुलाकात होती है और लगता है कि अच्छा जिंदगी इतनी खूबसूरत भी हो सकती थी। चेहरे पर मुस्कान थोड़ी सी ज्यादा रहने लगती है, छोटी छोटी बातों में खुशियां ज्यादा मिलने लगती हैं, कल की फिक्र थोड़ी कम और आने वाले कल से उम्मीद थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। और शायद यही तो है प्यार की शरारत, जिंदगी वही रहती है, नजरिए में रंग भर जाते हैं। और जब साथ सही हो तो सफर भी खूबसूरत और मंजिल का इंतजार भी। तो इसी इंतजार को, इसी सफर को बनाए रखते हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत। और इसी मुस्कान, इसी उम्मीद और थोड़ी सी प्यार भरी मस्ती और शरारत के संग आज के रोलर कोस्टर राइड को गीत मालिका की हम यहीं पर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। सेंसेक्स 1248 अंक गिरकर 73,581 पर हुआ बंद। जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशिबिना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स्ड स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: श्री मोदी ने कहा कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और प्रत्येक व्यक्ति में अंतर्निहित होनी चाहिए।

0: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला में आज बात मिशन कर्मयोगी की।
2: मिशन कर्मयोगी की शुरुआत सितंबर 2020 में की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय मूल्यों पर आधारित और वैश्विक दृष्टिकोण रखने वाली भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों की क्षमता और कौशल को मजबूत करना तथा सिविल सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत सिविल सेवाओं को नियम आधारित व्यवस्था से भूमिका आधारित व्यवस्था की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सही व्यक्ति को सही समय पर सही जिम्मेदारी देना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT प्लेटफॉर्म पर 1,70,00,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। इस प्लेटफॉर्म पर विभिन्न विषयों, कार्यों और व्यवहार संबंधी क्षमताओं से जुड़े 6,500 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े 200 से अधिक पाठ्यक्रम भी शामिल हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
3: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे।
2: आकाशवाणी समाचार से बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी की स्थापना विकसित भारत 2047 के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से और उच्च गुणवत्ता के साथ हासिल करने की दृष्टि से की गई है।
4: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक है उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज इस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए iGOT प्लेटफॉर्म पर हर वर्ष निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना जरूरी है। इन पाठ्यक्रमों को उनकी वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में दर्ज किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% किया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार

0: हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
1: A good book opens a window of ideas, history and experience. It invites us to think, not only to think, to question. Not only to question, to understand and sometimes to look at familiar subjects from a new perspective.
0: प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजासुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। उन्होंने युद्ध क्षेत्र में हथियारों के रखरखाव और मरम्मत के साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया। जनरल सुब्रमणि ने कहा कि युद्ध की अर्थव्यवस्था बदल रही है।
2: The character of war,
3: युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है और हमें भी खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। इसके लिए हमारी औद्योगिक व्यवस्था, खरीद प्रक्रिया और कार्य प्रणाली में भी तेजी से बदलाव जरूरी है, ताकि हम बदलती युद्ध परिस्थितियों के साथ कदम मिला सकें।
2: With the changing character of war.
0: भारत ने मजबूत व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों को पारस्परिक रूप से लाभकारी बनाने के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के आर्थिक मंत्रियों की बैठक और आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों के परामर्श में भाग लिया। इस दौरान आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की चल रही समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय, जब वो उचित समझे, SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। एक रिपोर्ट।
4: गहरे डिप्रेशन ने कोरापुट, गजपति, मलकनगिरी, गंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ जिलों को प्रभावित किया है, जिससे 37 ब्लॉक, 127 ग्राम पंचायतें और 273 ग्राम प्रभावित हुए हैं। 20 वाड़े वाले 5 शहरी इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने बताया है कि 8,082 लोगों को जोखिम वाले इलाकों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। सरकार ने 2400 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम चालू कर दिए हैं। उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स NDRF और फायर सर्विस के टीमों को तैनात किया गया है और राहत सामग्री का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग ने कल व परसों भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1,248 अंक लुढ़ककर 73,581 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 384 अंक फिसलकर 23,063 पर स्थिर हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 21 पैसे कमजोर होकर 95.96 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
0: आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने सहित कई कारणों से शेयर बाजार में गिरावट आई है।
6: आज स्टॉक मार्केट में जो हमने गिरावट देखा है, उसके कुछ प्रमुख कारण ऐसे हैं। सबसे पहले जो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़े, दूसरा है बॉन्ड्स की जो यील्ड्स हैं, उसमें बढ़ोतरी की वजह से एक नर्वसनेस आई। पर सबसे महत्वपूर्ण जो घटना आज हुई है वो IRDA जो रेगुलेटरी बॉडी है बीमा क्षेत्र में, उन्होंने एक डिस्कशन पेपर निकाला है जिसमें वितरण में जो कमीशन होते हैं उसमें कटौती के बारे में बात की है।
0: और अब जापान एशियाई खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
7: एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत

0: पदक जीत लिया है। वहीं रोशबीना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया।
1: अच्छा लगा, ये मेरा थर्ड एशियन गेम्स मेडल है, उसके लिए भी मैंने काफी मेहनत किया है। चैलेंजिंग ये था कि मैं इस बार भी गोल्ड लाने का, पर मैं नहीं दिला पाया। नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत करके जो भी गलतियां हैं वो सुधार के वापस आएंगे।
0: निशानेबाजी में अनंतजीत सिंह और पारिनाज धालीवाल ने स्कीट मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सतनाम सिंह और सलमान खान ने नौकायन की डबल स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अनिमेश कुजूर और गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर दौड़ के सेमीफाइनल में जगह बनाई। सीमा ने महिलाओं की 10,000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। हॉकी में भारतीय पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मुक्केबाजी में परवीन ने 65 किलो के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। स्क्वाश और टेबल टेनिस के अलग अलग वर्ग में खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है।
2: जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में मानवाधिकारों के उल्लंघन और सामाजिक आर्थिक अभाव का मुद्दा उठाया गया है। कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला। सरकार ने घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटाया। ओडिशा में दक्षिणी भागों और उससे सटे उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में गहरे दबाव के प्रभाव से मूसलाधार बारिश जारी। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने 4x400 मिक्स रिले दौड़ और वुशु में रोशबीना ने रजत पदक जीते। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। डबल स्कल्स रोइंग और मिक्स स्कीट निशानेबाजी में भी कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
4: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने है। एक गाँव का अच्छा प्रयोग दूसरे गाँव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
4: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना देश की हर बात।

0: शब्दों में नहीं देंगे, हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि चाहे वो पीएम किसान हो या पीएम सूर्य घर योजना, खिदमत ही सबसे बड़ा मुहर्रिक है, और ऐसी बेशुमार स्कीमें हैं जो सफ़े आखिर तक खिदमत की फराहमी के लिए बनाई गई हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि यह खिदमत का जज्बा ही है जिसकी बदौलत 4 करोड़ गरीब लोगों को मुस्तकिल मकानात मिले हैं।
0: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है, वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते हो तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है, और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: हुकूमत ने खुर्दनी तेल की घरेलू कीमतों में इस्तेकाम पैदा करने के मकसद से दरामद किए जाने वाले सभी खुर्दनी तेलों पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी BCD में कटौती की है। इस कदम से खुर्दनी तेल की बैन अल-अक़वामी कीमतों में तेजी से हो रहे इजाफे के दौरान ग्राहकों को राहत मिलेगी और महंगाई के बढ़ते दबाव से निमटने में मदद मिलेगी। सार्फिन के उमूर, खुराक और अवामी निज़ाम तकसीम की वजारत ने बताया कि सूरजमुखी के खाम तेल पर लगने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 0, जबकि सोयाबीन के खाम तेल और खाम पाम तेल पर आयद होने वाली बेसिक कस्टम्स ड्यूटी 10% से घटाकर 5% कर दी गई है। वजारत ने मजीद कहा कि हुकूमत ने रिफाइंड खुर्दनी तेल पर आयद होने वाली BCD में कटौती की है, साथ ही साथ खाम तेल और रिफाइंड खुर्दनी तेलों के दरमियान इम्पोर्ट ड्यूटी के फर्क को 19.25% पर बरकरार रखा है। वजारत ने मजीद बताया कि खुर्दनी तेलों की BCD पर की गई कटौती में उनकी आमद के बाद मजीद कमी आ सकती है, जिससे घरेलू सप्लाई चेन के जरिए फवायद की मुंतकली में मदद की उम्मीद है। इस दौरान हुकूमत ने खुर्दनी तेल के अंजुमनों और सनती शराकत दारों को एडवाइजरी जारी की है ताकि इम्पोर्ट ड्यूटी में की गई कटौती से होने वाले फायदों के ग्राहकों तक पहुंचने को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है, और इस पुख्ता अज़्म का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नज़रिए के तहत हुकूमत साल 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने के खातिर अनथक काम कर रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि मिशन कर्मयोगी के जरिए इस नज़रिए को किस तरह बरूएकार लाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मिशन कर्मयोगी का आगाज सितंबर 2020 में एक ऐसी सिविल सर्विस के तसव्वुर के साथ किया गया था जो मुस्तकबिल के तकाजों से हम आहंग हो, भारतीय अकदार से जुड़ी हो और आलमी नुक्ता नज़र की हामिल हो। इस मिशन का मकसद सरकारी अफसरान की सलाहियतों और महारतों को मजबूत बनाना और सिविल सर्विस को शहरियों पर ज़्यादा मरकूज बनाना है। मिशन कर्मयोगी के तहत iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 120 करोड़ से ज़्यादा रजिस्टर्ड सार्फिन हैं और मुख्तलिफ शोबों, फंक्शनल और रवैया जाती सलाहियतों से मुतालिक 6,500 से ज़्यादा कोर्सेज दस्तयाब हैं। इनमें मस्नूई ज़हानत, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मुतालिक 200 से ज़्यादा कोर्सेज भी शामिल हैं, जिनका मकसद सरकारी अफसरान को डिजिटल मालूमात और महारतों से आरास्ता करना है। एक तकरीब से ख़िताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का मकसद सरकारी अफसरान को शहरियों पर मरकूज बनाना है।
0: हम मिशन कर्मयोगी के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस ट्रेनिंग के पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि कर्मचारियों का सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। इस ट्रेनिंग कोर्स को अपडेट करते रहने की जरूरत है। हम एक ऐसा सिस्टम तैयार कर सकते हैं जिससे ट्रेनिंग कोर्स को बेहतर बनाने के लिए लोगों के सुझाव मिलते रहे। टेक्नोलॉजी हर किसी तक सही और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचाकर सबको आगे बढ़ने का समान अवसर दे रही है।
2: आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सलाहियत साजी कमीशन की चेयरपर्सन एस राधा चौहान ने कहा कि मिशन कर्मयोगी का आगाज 2047 तक विकसित भारत के अज्म को पूरा करने के विजन के साथ किया गया।
3: विकसित भारत का जो एक आशावादी हमारे लक्ष्य है, उनको समय से प्राप्त करना, गुणवत्ता के साथ प्राप्त करना, और सबसे अहम बात जो हमारे नागरिक हैं उनको गुणवत्ता युक्त सर्विसेज किस तरह से हमारे लोक सेवक प्रदान करें।
2: तमाम मरकजी सरकारी मुलाजमीन और ऑल इंडिया सर्विसेज AIS के अफसरान के लिए अपने मुतालिका शोबों में iGOT कर्मयोगी पर सालाना मुकर्रर कोर्सेज मुकम्मल करना जरूरी है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश और मुत्तसला जुनूबी ओडिशा में बने हवा के गहरे दबाव की वजह से ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस तेज बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया और सैलाब जैसी सूरत हाल की वजह से सड़कों पर आमोदरफ्त मुतासिर रही। इस दौरान रियासती हुकूमत ने राहत और इनखला से मुतालिक इकदाम तेज कर दिए हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा के मुख्तलिफ हिस्सों में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। वहीं कल और हफ्ते के रोज भी मूसलाधार बारिश जारी रहने का इम्कान है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
4: गहरे दबाव की वजह से उड़ीसा के 6 जिलों कोरापुट, गजापति, मलकानगिरी, गुंजाम, नवरंगपुर और रायगढ़ के 37 ब्लॉक्स, 127 ग्राम पंचायतें और 273 गांव मुतासिर हैं। वहीं 20 वार्ड समेत 5 शहरी इलाके भी इस मौसमी सूरत हाल से मुतासिर हैं। मलकानगिरी में पानी के सड़कों और पुलों के ऊपर से बहने की खबर है। वहीं जिले में मिट्टी के तोदे खिसकने से कनेक्टिविटी मुतासिर हुई है। हुकूमत ने 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम्स को फॉल किया है और राहत साजो सामान की फराहमी को यकीनी बनाते हुए कुदरती आफात से निपटने की ओडिशा की फोर्स NDRF और फायर खिदमत टीमों को तैनात किया है। एहतियाती कदम के तौर पर गजपति, नवरंगपुर और कालाहंडी में कल स्कूल और आंगनवाड़ी मराकज बंद रहेंगे। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद इमरान।
1: इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने कल छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, जैली हिमालय, मगरबी बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी शदीद बारिश का इम्कान है। वहीं महकमा मौसमियात ने कल दिल्ली में मतला अबर आलूद रहने की भी पेशगोई की है। बेंचमार्क घरेलू इक्विटी इशारिया में 1.8% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट आई है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सेंसेक्स 1,249 पॉइंट्स गिरकर 73,581 पर, जबकि निफ्टी 384 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 23,063 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वसी मार्केट में मिड कैप इशारिये में 2.3% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि स्मॉल कैप 100 में 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान ज़र मुबादला बाज़ार में भी आज रुपए की कदर में 21 पैसे की गिरावट आई और ये डॉलर के मुकाबले 95 रुपये 95 पैसे के करीब बंद हुआ। दिल्ली से आयुषी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: मेडिकल साइंस इम्तहानात के कौमी बोर्ड NBEMS ने आज अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट PG 2026 के नतीजों का ऐलान कर दिया है। तालीमी साल 2026-27 के लिए बराह रास्त 6 साल कोर्सेज MD, MS, DNB, DRNB और PG डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए इम्तहानात मुल्क भर में 30 अगस्त को मुनक्कद कराए गए थे। NBEMS ने कहा है कि उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 1 अक्टूबर से अपना इनफरादी स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। NBEMS ने मजीद बताया कि वेबसाइट पर अगले महीने की 1 तारीख को आंसर की अपलोड किए जाने का इम्कान है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक्वामी मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA के इजलास के मौके पर एंटीगुआ एंड बरबूडा के वजीर आजम गैस्टन ब्राउने के साथ मीटिंग की। सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और आबोहवा की तब्दीली की रोकथाम में ताउन जारी है। उन्होंने दौलत मुश्तरका हुकूमत के सरबराहों की मीटिंग CHOGM की कामयाबी के लिए भारत के मजबूत अज़्म का इजहार किया। सेक्रेटरी मगरिब सिबी जॉर्ज ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के मौके पर G7 चेयर फ्रांस की जानिब से मुनक़िद G7 तरक्याती वुज़रा के दूसरे इजलास में शिरकत की। अपने खिताब में जनाब जॉर्ज ने इंसानियत पर मरकूज और जामे तरक्की की राह अपनाने पर जोर दिया जो सर्वोदय के उसूलों पर मबनी है। भारत की तरक्याती शराकतदारी का हवाला देते हुए सेक्रेटरी मौसूफ ने भारत के इस मौकफ को उजागर किया कि तरक्की महज माली इमदाद फराहम करने का नाम नहीं है, बल्कि इसका मकसद मकामी सलाहियतों को फ़रोग देना और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत को मजबूत बनाना भी है। जापान के आइची नगोया में जारी एशियाई खेलों 2026 में सीमा कुमारी ने खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ में मुल्क के लिए कांसे का तमगा जीता है। उन्होंने आज शाम ये तमगा हासिल किया। पिछले 16 साल में एशियाई खेलों में खवातीन के 10,000 मीटर दौड़ मुकाबले में भारत का ये पहला तमगा है। इस दौरान वुशु में भारतीय खिलाड़ी रोशी बीना देवी नावरेम ने खवातीन के साथ

0: किलोग्राम जुमरे में चीन की जियांग जियायो को 2-0 से शिकस्त के बाद चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इस दौरान मर्दों के डबल स्कल्स में सलमान खान और सतनाम सिंह ने आज कांसे का एक तमगा जीतकर आईची नगोया में एशियन गेम 2026 के दौरान अपनी रोविंग मुहिम का अख्ताम किया। भारतीय जोड़ी नगरागोवा इंटरनेशनल रेगेटा कोर्स में 6:13 और 25 मिली सेकेंड के साथ तीसरे नंबर पर रही। चीन के यी यूडी और नी येड 6:09 और 77 मिली सेकेंड के साथ पहले नंबर पर रहे और उन्होंने सोने का तमगा जीता। वहीं उज्बेकिस्तान के खिलाड़ियों ने 6:10 और 49 मिली सेकेंड की कारकर्दगी के साथ चांदी का तमगा अपने नाम किया। ये मर्दों के डबल स्कल्स में भारत का पहला एशियन गेम्स तमगा है। इस दौरान निशानेबाजी में आनंदजीत सिंह नरुका और परिनाश ढालीवाल की जोड़ी ने मिक्स्ड स्कीट टीम मुकाबले में कांसे का तमगा जीता है। मिक्स्ड स्कीट टीम मुकाबले में एशियाई खेलों की तारीख में भारत का यह पहला तमगा है। भारतीय जोड़ी ने 48 में से सिर्फ 4 निशाने गंवाए और जनूबी कोरिया के साथ बराबरी पर रही। इस दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों में तमगा जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम मोदी ने कहा है कि खिदमत का जज्बा मुल्क की तरक्की के लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक है। वजीर आजम ने 25 करोड़ शहरियों को गुर्बत की सतह से बाहर लाने के लिए हुकूमत की इख्तराई स्कीमों को उजागर किया। हुकूमत ने घरेलू कीमतों को कम करने के लिए खाम खुर्दनी तेलों पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में कटौती की है। ओडिशा में जनूबी इलाकों और मुत्तसिला शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में हवा के गहरे दबाव के बायस शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। सेंसेक्स 1248 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 73,581 पर बंद हुआ। और जापान में एशियाई खेलों में भारत ने मिक्स्ड रिले दौड़ और वुशु में चांदी के तमगे जीते हैं। सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा अपने नाम किया है, जबकि डबल्स स्कल रोविंग और मिक्स्ड स्कीट शूटिंग टीमों ने भी कांसे के तमगे जीते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: कंट्री वाइड ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया।
2: नमस्कार, आभार, अभिनंदन महोदय। कार्यक्रम में आपका अभिनंदन।
3: नमस्कार
2: महोदय, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कवच प्रणाली क्या है और ये कैसे काम करता है।
3: साधारण तरीके से ट्रेनें चलती हैं
2: जी,
3: तो उसमें ड्राइवर को सिग्नल देखना पड़ता है और सिग्नल अगर हरा है तो वो चलता रहता है, अगर लाल है तो उसको ट्रेन रोकनी पड़ती है। लेकिन कई बार बारिश में अंधड़ तूफान या कुछ घुमाई पर सिग्नल होते हैं या अन्य कई कारण होते हैं जिसमें कि या कभी ड्राइवर भी ऐसी स्थिति में होता है कि मान लो उसे नींद लग गई तो वो सिग्नल को फॉलो नहीं कर पाता है और ऐसी स्थिति में दो ट्रेनों के टकराव की संभावना बनी रहती है
2: जी।
3: ये एक हम बोलते हैं कैब बेस्ड सिग्नलिंग। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि पहली बात तो ये कि जो भी सिग्नल का वो है वो ग्रीन है कि लाल है कि, उसके लिए ड्राइवर को बाहर झांकने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस इंजन से वो चला रहा है उसके सामने जो डिस्प्ले रहता है उसमें उसको पता लग जाता है ये हरा है कि लाल है, कि उसकी सिग्नल की एस्पेक्ट बोलते हैं क्या है एस्पेक्ट है, तो उसके हिसाब से उस ट्रेन की स्पीड निर्धारित करनी पड़ती है। और दूसरा स्टेप आता है कि उसने देख लिया कि मेरा लाल है लेकिन उसके बाद उसको ब्रेक लगाना है, उसने ब्रेक नहीं लगाया या उसने ब्रेक लगाने की कुछ की को फेल हो गया ब्रेक, तो उस कंडीशन में जब दो गाड़ियां काफी नजदीक आ जाती हैं तो उनका ये स्वचालित प्रणाली से ये दोनों ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और वो एक दूरी पर आकर रुक जाएंगी और एक जो दुर्घटना होती है उससे वो बच जाएंगी। और इसका जो उपकरण होता है वो हर इंजन में, हर लेवल क्रॉसिंग में, हर रेलवे स्टेशन में रखा रहता है और एक ऑप्टिक फाइबर एक होता है जिससे कि डाटा ट्रांसफर होता है, वो पूरे उस जिस क्षेत्र में इसका कवरेज होता है उसमें इसको लगा दिया जाता है और उसके बाद वो उसको पूरा सुरक्षित रूप से डाटा को भेजता है और संचालित करता है और उसकी वजह से जो ट्रेनों की घटनाएं होती थी पहले, अब एक बार ये पूरा कवरेज हो जाएगा तो वो पुरानी बात हो जाएगी, फिर ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी।
2: कवच 4.0 में नया क्या जोड़ा गया है जिससे सुरक्षा जाल को और मजबूती मिल सके?
3: इसमें कवच जो 4.0 है ये पुराने कवच के ऊपर एक स्टेप और आगे है। एक तो देखिए ये आपको बताएं, ये

0: अति सुरक्षा वाला वो है, उपकरण है। और इसमें एक SIL 4 बोलते हैं, एक जो सेफ्टी के कई मापदंड होते हैं, इसमें SIL 4.0 का जो मापदंड है वो सुनिश्चित किया गया है। और इसकी जो कम्युनिकेशन प्रणाली है, जो एक से दूसरे इंजन को और एक स्टेशन से किसी आने वाली ट्रेन के इंजन को और के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसमें एक सेफ्टी का एक हायर लेवल पे इसको ले जाता है। और जो डाटा ट्रांसफर होता है उसकी जो गति होती है, जो चाहे वो डाटा आपका एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जा रहा हो, चाहे एक स्टेशन से दूसरी ट्रेन के ऊपर जा रहा हो या एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन की तरफ जा रहा हो, डाटा का जो एक संचालन होता है उसका एक जो सुरक्षा का लेवल है वो एक स्तर और आगे बढ़ जाता है। और जो कुछ गैप्स रह जाते हैं थे पुराने जो कवच 3.0 के पहले वाले वर्जन में, वो कवच 4.0 में उन सभी को एलिमिनेट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया है। अब ये पूर्णतः सुरक्षित प्रणाली बन गई है।
1: दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे व्यस्त रेल मार्गों पर जो कवच 4.0 को 2633 किलोमीटर में चालू किया जा चुका है, तो इन मार्गों पर इसके संचालन से रेल यात्रियों को सुरक्षा और परिचालन के स्तर पर किस प्रकार का लाभ मिलने की उम्मीद है?
0: आपसे मैंने बताया कि वो
1: जी
0: सुरक्षा तो बढ़ती ही है, इसके साथ इसमें एक डाटा भी एक हमको मिलता है ट्रेनों का। देखिए अभी जैसे एक हमारा डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डिजिटल हो गया है और हर जगह हम डिजिटल दुनिया का प्रयोग करते हैं, तो आप कवच को जो कवर्ड एरिया है उसमें आप ये समझिए कि रेलवे भी डिजिटली कंट्रोल हो गई उस एरिया में। तो ये 2660 किलोमीटर का जो एरिया है ये अब डिजिटली कंट्रोल्ड है। आप किसी मनुष्य के एक्शन पे उसके ऊपर निर्भर नहीं है, आप उस पूरे सेक्शन में एक स्वचालित प्रणाली जो कि मनुष्य की जो मानवीय गलती होती है उसके होने के पश्चात भी आपको दुर्घटना नहीं होने देगी। ये इसका एक उदाहरण है। एक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो प्रणाली है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कोई भी नई आजकल जो तकनीक होती है
1: जी
0: उसका एक IP होता है, जो उसके मौलिक अधिकार किसके पास हैं।
1: जी
0: तो नॉर्मली जो ET जो एक यूरोपियन प्रणाली थी उसके मौलिक अधिकार उनके पास रहते हैं, वो लोग अपना डिजाइन नहीं देते। तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो भारत जैसे देश हैं उनको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है उस प्रणाली को खरीदने के लिए। तो
1: जी
0: ये जो हमने स्वचालित प्रणाली स्वदेशी बनाई है उससे एक तो पैसा भी हमारा कम लगा है, कल हम इसको अपनी खुद की प्रणाली को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और आगे चल के जो इसका अगला वर्जन आएगा उसमें AI से भी लिंक हो जाएगा ये, क्योंकि ये इतना ह्यूज डाटा
1: जी
0: जनरेट करेगा ये
1: जी
0: सिस्टम कि एक मनुष्य के लिए उसका एनालिसिस करना असंभव होगा। तो उसको एनालिसिस के लिए भी एक AI एजेंट लगेगा, उससे जो हमारे सेफ्टी के अलावा जो हमारे ऑपरेटिंग है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। और हमको ऐसी उम्मीद है कि हमारे लिए पॉसिबल होगा कि हर 2 मिनट में या 2.5 मिनट में एक के बाद एक ट्रेन चला सकें। इससे हमारी जितनी ट्रेनें चलाने की क्षमता है किसी एक पर्टिकुलर रेल खंड की उसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। अब आपको एक बता दूं कि 95% कोयला जो भी पावर हाउस में जाता है वो भारतीय रेल उसका वहन करती है। और ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और ये कवच सिस्टम है
1: जी
0: इसकी वजह से जो हमारी ट्रेनों की संख्या है उसमें काफी वृद्धि हुई है और हमारी जो देश की जो एक इकोनॉमी है उसको एक बहुत बड़ा संबल मिला है।
1: आम जनता के आवाजाही और आवागमन मैं कहूँ तो उस पर कितना ये सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएगा?
0: आपने देखा होगा कि एक आदमी जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके पास कई ऑप्शन रहते हैं। वो रोड से भी जा सकता है, अपना हवाई जहाज से भी जा सकता है, शिपिंग से भी जा सकता है, कई तरह के उसको है। लेकिन ये माना गया है कि जो रेलवे का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये अपने आप में एक बहुत सुरक्षित तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने का, आवागमन का। उसमें ये कवच भी आपने लगा दिया तो कवच से उसको ऐसी एक सुरक्षा की एक शील्ड मिल गई है जिससे कि यात्री जब ट्रेन के अंदर रहता है तो उसको, जैसे अधिकतर लोग बोलते हैं कि ट्रेन का सफर बस के सफर के कंपैरिजन में ज्यादा आनंददायक होता है और आरामदायक होता है, और हवाई जहाज के कंपैरिजन में, एयरलाइंस के कंपैरिजन में हमारे जो रेट्स हैं वो भी बहुत कम होते हैं। तो रेलवे में हम कोई भी अच्छा काम करते हैं, रेलवे में कोई भी एक जिससे कि नई ट्रेनें चला पाए, ज्यादा ट्रेनें चला पाए, उसका फायदा आम जनता को मिलता है क्योंकि वही इस प्रणाली को सबसे ज्यादा यूज करती है और उसमें आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। दूसरा फायदा क्या होता है कवच से, कवच लगाने के बाद नॉर्मल हमारी ट्रेनें चलती हैं 110 किलोमीटर पे, 110 या 130 पे, कहीं कहीं पर अधिकतर जगह 110 है, कहीं कुछ कुछ जगह 130 है। लेकिन एक बार कवच प्रणाली लगा देते हैं तो ये आपके लिए संभव हो तो हो पाता है कि आप अपनी ट्रेनों को 160 की गति पे चला सकें, 160 और उसके ऊपर भी चला सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो ट्रेनों की गति बढ़ जाती है कवच लगाने के बाद, उससे कितनी ट्रेनें आप निकाल सकते हैं एक समय में उसकी संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी होती है, और वो भी एक सुरक्षा के साथ। ये नहीं कि आपने ट्रेनें बढ़ाई और सुरक्षा को एक तरफ दरकिनार कर दिया, आप इसमें ट्रेनों की गति बढ़ती है, आम आदमी गंतव्य स्थान पे जल्दी पहुंचेगा, सुरक्षित तरीके से पहुंचेगा और आराम तरीके से पहुंचेगा।
1: यानी समय की भी बचत है, सुरक्षा भी है और एक तरीके से कहें तो टेक्नोलॉजी में भी विस्तार है। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना

0: चाहूंगी कि दूर दराज के क्षेत्रों की जो कनेक्टिविटी है, माल ढुलाई और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को अगर हम देखें, उसे किस प्रकार से बढ़ावा मिलेगा कवच से?
1: भारतीय रेल एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि एक हम जैसे आम भाषा में बोलते हैं मिक्स ट्रैफिक चलता है। जिस लाइन से कोयले की ट्रेन गुजरती है उसी लाइन से मेल एक्सप्रेस की ट्रेन भी गुजरती है, उसी यात्री से यात्री गाड़ियां भी जाती हैं। हालांकि हमने एक पहल की है कि एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया है बिहार में सोनपुर तक और नीचे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक, जिसका भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उद्घाटन भी किया था। तो उससे काफी फ्रेट जो हमारी मालगाड़ियां उनका उसमें चलाने लग गए हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी जो नेटवर्क है उसमें मिक्स ट्रेन चलती है, उसमें मेल एक्सप्रेस भी चलती है, पैसेंजर ट्रेन भी चलती है। और जैसे मैंने बताया कि जो मालगाड़ियां हैं उस पर हमारी देश की जो इकोनॉमी है वो निर्भर करती है। अगर ज्यादा ट्रेनें चलेंगी, ज्यादा माल ढुलाई होगी तो कारखानों तक रॉ मटेरियल पहुंचेगा, पावर हाउसेस में कोयला पहुंचेगा और हमारे जो एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो उसमें हमको ज्यादा हम देश से निर्यात कर पाएंगे, जो आयातित चीजें उनको जल्दी तक खपा पाएंगे। तो उससे पूरी एक बहुत बड़ा पुश मिलता है पूरी इकोनॉमी को, जो कि कवच से संभव होगा। और एक जैसे मैंने बताई थी कि ये प्रणाली सबसे बड़ा खूबी यह है कि हमारी स्वदेशी है, इसकी वजह से हमारा खर्चा भी नहीं है। और जैसे आजकल के युग में देखा कि जब इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पूरी दुनिया में तो कोई भी किसी का टेक्नोलॉजी बंद कर सकता है, इसको कोई ब्लॉक नहीं कर पाएगा क्योंकि ये हमारा खुद का है और इसको हम दूसरे को बेच के पैसा भी कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल, आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं और सुर्खियों में देखते हैं कि रेल के जो एक्सीडेंट्स होते हैं कहीं पर धुंध लग जाने से, कोहरे की वजह से हो जाते हैं, जो कि कवच जैसी जो प्रणाली है वो बचाती है इस तरह के एक्सीडेंट होने से, और खास करके एक्यूरेसी, जैसा आपने मुझे बताया अभी कि एक्यूरेसी बढ़ाती है और स्पीडिंग जिससे बढ़ती है। तो ऐसे में अगर हम देखें किस तरह से ट्रेन एक्सीडेंट के जो केसेस हैं उसमें भी थोड़े से जो रेट्स हैं वो कम होंगे?
1: अगर आप हमारा इतिहास निकालेंगी रेलवे का तो उसकी संख्या बहुत ही मेजर गिरावट आई है। उसमें उसके कई आधारभूत कारण हैं। हमने ट्रैक की क्वालिटी, अपने जो रोलिंग स्टॉक बोलते हैं जो डब्बे कोचेज उसकी क्वालिटी, और हमारी सिग्नलिंग प्रणाली, हमारी सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग सिस्टम्स, हमारे जो चालक गण हैं उनके ऊपर एक निगरानी, उनकी ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग और सुरक्षा संबंधित जो उपकरण हमने लगाए हैं उससे एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। और जो आज की तारीख में जो एक्सीडेंट्स हैं वो बिल्कुल नगण्य हो गए हैं अगर हम उसको पिछले कुछ पुराने वर्षों से उसकी तुलना करें तो।
0: लेकिन ये किस तरीके से रेलवे सुनिश्चित करेगा या सरकार सुनिश्चित करेगी कि ये छोटे छोटे जो शहर हैं उस तक भी ये सिस्टम उसी तरीके से पहुंच पाए, कनेक्टिविटी वैसी ही रहे?
1: देखिए, मैंने आपको शुरू में सबसे पहले बोला था कि ये जो कवच प्रणाली है ये अपना जहां भी कवच जाता है ये अपना खुद का ऑप्टिक फाइबर केबल लेके जाता है, और एक नहीं दो, तो एक पेयर जाता है, दो ऑप्टिक फाइबर केबल उस, चाहे वो कितना भी अंदरूनी गांव हो, कितना दूर दराज का इलाका हो, उस तक ही हमारे ऑप्टिक फाइबर केबल चलाए जाते हैं। और इसका हमारी जो आम जो नेटवर्क इशू है उससे कोई कनेक्शन नहीं है, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। और ये हमारे कवच के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं ये दो ऑप्टिक फाइबर केबल। उसके अलावा हर कुछ दूरी पे रेडियो टावर बनाए जाते हैं, हर स्टेशन के ऊपर एक रेडियो एंटीना रहता है। और हम अब इसको कोशिश कर रहे हैं कि LTE और 5G में भी इसको ले जाएं। तो इसके, लेकिन इसका जो भी नेटवर्क होगा वो हमारे बाकी जो हम, आप और हम जिस मोबाइल फोन से बात करते हैं उसके ऊपर निर्भर नहीं है। ये इसका जो संचालन प्रणाली है वो अपने आप में एकदम अलग है, और वो जहां जाएगा वो अपना खुद का केबल लेके जाएगा, अपने खुद के रेडियो टावर्स लेके जाएंगे, अपने खुद के दूसरे उपकरण लेके जाएंगे, जिससे कि चाहे इलाका महानगर का हो चाहे दूर दराज का हो सुरक्षा का लेवल दोनों जगह बराबर हुआ।
0: जी महोदय, देश भर में इस तकनीक को लागू करने में क्या आपकी नजर में कोई चुनौतियां भी हैं कि ये चुनौती आ सकती है?
1: चुनौतियां भी हैं क्योंकि इसमें दो चार चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती तो ये है कि इसमें बजट का काफी खर्चा आता है, एक किलोमीटर करने में करीब करीब 50 लाख रुपए खर्चा आता है, एक जो हमारे इंजन में उपकरण में लगाया जाता है उसमें 50 लाख रुपए का उपकरण आता है। उसके अलावा जो कंपनियां ये, क्योंकि SIL 4 जो होता है, सुरक्षा का जो लेवल है 4 का, SIL 4 बोलते हैं उसको हमारी रेलवे की भाषा में, तो जिन कंपनीज के पास उसका उस लेवल की टेक्नोलॉजी है वही इसको लगा सकती है। और ऐसी कंपनी जो कि इसको लगा सकती हैं वो आज की तारीख दिन में सिर्फ 4 या 5 ही हैं। तो जैसे जैसे वो कंपनी जो जिनके पास ये तकनीकी है वो बढ़ेगी, उस दिशा में हमारा जो RDSO है, हमारी रेलवे बोर्ड है, हमारी मिनिस्ट्री है, ये काफी प्रयास कर रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियां इस काम के लिए सक्षम हो सके और एक बार और उनका सक्षम जो सक्षमता का जो सर्टिफिकेट है वो हमारे आरडीएसओ द्वारा दिया जाता है और जैसे जैसे उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा कि वो भी इस काम को कर सकती है और ज्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में आएंगी तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड है वो भी बहुत तेजी से बढ़ेगी।
0: महोदय, रेलवे में जो रिफॉर्म्स चल रही हैं उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कवच 4.0

0: क्वाइस प्रणाली और क्वाइस प्रणाली से कनेक्ट करते हैं, तो हमारी जो यात्री ट्रेनें हैं, जो हमारी मालगाड़ियां हैं, उनके प्रचालन में भी एक अद्भुत आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा और एक ओवरऑल रेलवे को एक मेजर पुश मिलेगा डिजिटलाइजेशन की डायरेक्शन में।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कवच 4.0 के माध्यम से मजबूत होती रेल सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व मध्य रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक ललित चंद्र त्रिवेदी और आकाशवाणी संवाददाता प्राची प्रिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: Countrywide.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्यघर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की।
2: ए गुड बुक ओपन्स ए विंडो ऑफ आइडियाज, हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंस। इट इनवाइट्स अस टू थिंक, नॉट ओनली टू थिंक, टू क्वेश्चन, नॉट ओनली टू क्वेश्चन, टू अंडरस्टैंड एंड समटाइम्स टू लुक एट फैमिलियर सब्जेक्ट्स फ्रॉम ए न्यू पर्सपेक्टिव।
0: सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने वनस्पति तेल या स्टार्च से बने कृत्रिम पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। प्राधिकरण ने कहा है कि डेयरी संदर्भ में एनालॉग श्रेणी के अंतर्गत पहले से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों को अपने नामकरण, लेबलिंग या विपणन में पनीर शब्द का उपयोग बंद करना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणि ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर निर्वाचन आयोग के कामकाज और विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर लगाए गए आरोपों के लिए आलोचना की। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम निर्वाचन आयोग को किसी भी समय जब वह उचित समझे SIR आयोजित करने का स्पष्ट अधिकार देती है। जापान एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशेबिना देवी ने वुशु के 60 किलो सांडा स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 17 पदकों के साथ 15वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
3: Prime Minister Modi said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said Seva Parmo Dharm, service as the highest duty, should remain the guiding principle. During the interaction, Seva Yatris shared their experiences with the Prime Minister. Defence Minister Rajnath Singh has said that it is essential to keep ground reality and national interest in mind for a good security policy. He was addressing an event organized by a media house in New Delhi. The defense minister said that a holistic approach must be adopted to address the challenges related to national security. The minister acknowledged that without diplomacy, military preparations can lead to confrontation and security dilemma. The government has reduced the basic customs duty on major imported crude edible oils with a view to moderating domestic edible oil prices. This provides relief to consumers and mitigate inflationary pressures arising from the sharp increase in international edible oil prices. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the basic customs duty on crude sunflower oil has been slashed to nil, while on soy, bean oil and palm oil has been reduced from 10% to 5%. The ministry said the government has simultaneously reduced the applicable basic customs duty on the refined edible oils while maintaining an import duty differential of 19.25% between crude and refined edible oils. India reaffirmed its clear and consistent support for the two-state solution to resolve Israel-Palestine conflict. Secretary West C.B. George attended the high-level ministerial meeting of the Global Alliance for the implementation of the two-state solution in New York

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आप को हम सुनवा रहे थे जावेद खान की गजलें। ये आकाशवाणी दिल्ली का
1: कॉल कर रही है।
0: इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं पंडित निर्मल डे का ध्रुपद धमार गायन। राग है मियाँ की मल्हार।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित निर्मल्या डे का ध्रुपद धमार गायन, राग था मियाँ की मल्हार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 11 बजने को है, कुछ ही पलों में अब आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हिंदुत्व तो किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि ये सबको साथ लेकर चलता है। नई दिल्ली में पुस्तक विश्व संचार हिंदुत्व का लोकार्पण करते हुए उन्होंने युवाओं से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को पढ़ने, उस पर सवाल करने और उसे समझने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति ने भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मामलों और अहम सामाजिक मुद्दों पर किताबें और शोध पर आधारित साहित्य प्रकाशित करने की इसकी परंपरा की प्रशंसा की। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर 0 कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने युद्ध के बदलते स्वरूप के अनुरूप भारत की रक्षा अधिग्रहण प्रणाली तेजी से अनुकूलित करने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में जनरल सुब्रमणी ने रक्षा इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी, डेटा और उद्योग के एकीकरण के महत्व का उल्लेख किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि आर्थिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की

0: जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, समय हुआ है 11:10 और 53 सेकंड। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे, ये हमने लिया था फिल्म क्रांति से, और गायक कलाकार थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश। इस गीत की फरमाइश की थी पद्मा टाकीच नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह है, पल्लवी शाह है, प्रखर शाह है, कुशल शाह है, नीति शाह है, सुरभि शाह है, अश्विन शाह है, मंगलाबेन शाह है, राजेंद्र जी शाह है। ग्राम ममता, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। और गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस, मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश राजवर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू। और कार्यक्रम का जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, ये है फिल्म का नाम अंदाज अपना अपना। गायक कलाकार हैं विक्की मेहता और बहरोज चटर्जी।

0: हेलो जी सनम, हम आ गए। बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था अंदाज अपना अपना, विक्की मेहता और बहरोज चटर्जी के स्वर में सजा। बहुत ही सुंदर गीत अभी आपने सुना और इसकी फरमाइश की थी नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। शास्त्री नगर वीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता अनिकेत भटकर। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। इनका मैसेज एक बार पहले भी पढ़ा जा चुका है। और इसके अलावा श्रोता पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, डी के अलवी। धनौरा बिटाली महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे पहले एक ये संदेश।
1: एक कदम लोकतंत्र के नाम।
2: यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो फॉर्म 6 भरकर आज ही अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराएं।
1: फॉर्म 7 गलत या अपात्र नाम पर आपत्ति दर्ज करने हेतु प्रावधान।
2: फॉर्म 8 से मतदाता सूची में अपनी जानकारी करें दुरुस्त बार बार।
1: फॉर्म 6, 7 और 8 भरें 30 सितंबर 2026 तक। मतदाता सूची को सही और अद्यतन बनाएं।
2: मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है पेइंग गेस्ट। कलाकार हैं किशोर और आशा। संगीत दिया है एसडी बर्मन साहब ने। 1957 की प्रदर्शित ये बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अपने समय की मशहूर फिल्म रही है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का बहुत ही सुंदर गीत।

पेइंग गेस्ट फिल्म के इस बहुत ही खूबसूरत गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने। जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बाड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे, उत्तम जमदाड़े, गांव बिटोड़ा, भोयर, तहसील मंगरूल पीर, जिला बाशिम, पश्चिमी विदर्भ से योगीराज मस्के, श्री हरि मस्के, इंदुमती मलहार, कविता मोहन, विशाल, कुशल, गोपाल, श्याम, गोविंद मस्के और साथी। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से राज पैलेस मऊनाथ भज्जन, उत्तर प्रदेश से राजेश राज वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू, सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना, नाजिया, इब्राहिम, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा,

आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और गीत। फिल्म का नाम है ये दिल आशिकाना, गायक हैं कुमार सानू।

श्रोताओं, किसी कारणवश वो गीत हम आपको नहीं सुनवा पा रहे हैं, आइए सुनते हैं एक और गीत फिल्म बॉर्डर से। गायक कलाकार हैं सोनू निगम।

इस गीत को सुनना चाहा था भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल साहू, चंपा साहू, दुर्गाई सेलू से चंदू कुलकर्णी, हेमलता और सी आर कुलकर्णी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस वाकर, निर्मला वांकर, विशाल न्हांकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मुन्हेकर, छोटी बलिया फिल्म मुंबई सिटी से गीता, और बड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोरा, मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशूफ अब्बासी, मंसूर कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, सैयद शारिक अली, मेराज अंसारी, बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, आश अहमद बागवान, गुन्नौर से आदिल कुमार तस्दीक, अली मुजफ्फर अली, बहुत ही श्रोता हमारे बराबर मैसेज कर रहे हैं, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना, एसके पप्पी, पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, वीर शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर खटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, जिला नांदेड़ येटाला महाराष्ट्र से संकल लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शुभम प्रसाद जायसवाल, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी जायसवाल, राखी जायसवाल, तृप्ति जायसवाल, और अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीप्ति मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, अनारकली बाजार जगराओं से ही सुनील पाठक, कमल पाठक, दीप्ति मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक, फालजिका पंजाब खेड़ा परिवार से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाड़ी खेड़ा, शालनी खेड़ा, तेवानशी खेड़ा, बाड़ी खेड़ा, आर बी खेड़ा, जीवन सिंह, बूक समस्त खेड़ा परिवार, पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सचिन अग्रवाल, डी के अलवी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्ती फिल्म में अभी आप सुन रहे मोहम्मद रफ़ी साहब को, और इस गीत की फरमाइश की थी बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुमित रमेश शाहू, डुमरा बिहार से डब्लू अंसारी।

सोनू मदीबा और दानिश अंसारी ने गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, और अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, ये दिल आशिकाना का, फिल्म का शीर्षक गीत। आवाज है कुमार शानू की।

कुमार शानू को अभी आप सुन रहे थे फिल्म ये दिल आशिकाना में, और इस गीत की फरमाइश की थी एयरपोर्ट रोड बंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और संजना परी खर्चे, स्वाति प्रियाग चौधरी, कुमारी लड्डू देविका चौधरी। इसी के साथ ये आपकी फरमाइश कार्यक्रम फिल्म संगीत का अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर मध्य

0: रात्रि के 12 बजने को हैं। अब समाचार होंगे। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होंगे। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। जय हिंद। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। सरकार ने घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क घटा दिया है। कच्चे सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क घटाकर शून्य कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे ताड़ के तेल पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर 5% कर दिया गया है। परिष्कृत खाद्य तेलों पर लागू सीमा शुल्क को भी घटा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब $20 ट्रिलियन की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में भाग लिया। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बारबुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। जापान एशियाई खेलों में एथलेटिक्स में 4x400 मिक्स्ड रिले स्पर्धा में भारतीय टीम ने रजत पदक जीत लिया है। वहीं रोशिबीना देवी ने वुशु

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 12:10 कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुरों का सफरनामा कार्यक्रम।

नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफर नामक कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। और दोस्तों, जब भी 90 के दशक की रोमांस, पहली मोहब्बत की मासूमियत और एक मीठी सुरीली मुस्कान वाली आवाज की बात होती है तो दिल में एक ही नाम गूंजता है, उदित नारायण झा, जिनकी आवाज में वो मिठास है जो उदास चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दे। जी हाँ, आज का ये सफर नाम रहेगा उदित नारायण की जिंदगी, उनके करियर, उनके व्यक्तिगत संघर्षों और उनके उन अनगिनत गानों के नाम जिन्होंने हमारी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को यादगार बना दिया। तो चलिए, बिना किसी देरी के सफर की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मुंबई की सड़कों पर अपनी आवाज़ का जादू चलाने वाले उदित नारायण का शुरुआती सफ़र कितना चुनौतीपूर्ण था। इनका जन्म 1 दिसंबर 1955 को हुआ। पिता हरि कृष्ण झा एक किसान थे और माता भुवनेश्वरी देवी एक लोक गायिका थी। उदित नारायण को गाने की प्रेरणा अपनी माँ से ही मिली। बचपन में रेडियो नेपाल पर नेपाली और मैथिली लोक गीत गाकर इन्होंने अपने सुर साधे थे। और 1978 में उदित नारायण को भारतीय विद्या भवन से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए म्यूजिक स्कॉलरशिप मिली और वे मुंबई आ गए। मुंबई का वो दौर बेहद संघर्षपूर्ण था। एक छोटे से कमरे में रहना, स्टूडियो के चक्कर काटना और अपने मौके का इंतजार करना।

सुरों का सफरनामा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज बातचीत करेंगे उदित नारायण की। जी हाँ, संघर्ष के दिनों में उदित नारायण ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उन्हें पहली फिल्मी ब्रेक 1980 में मशहूर संगीत निर्देशक राजेश रोशन ने फिल्म 1920 में दिया। खास बात ये थी कि अपने पहले ही फिल्मी गाने मिल गया में उन्हें अपने आदर्श मोहम्मद रफी साहब के साथ माइक साझा करने का मौका मिला। हालांकि इस ब्रेक के बाद भी इन्हें एक बड़े हिट की तलाश में कई सालों तक कड़ा परिश्रम करना पड़ा। वे कोरस गाते रहे, छोटे छोटे रोल और जिंगल्स गाते रहे, लेकिन इनका इरादा पक्का था। चलिए आपको सुनवाते हैं ये एक और खूबसूरत गीत उदित नारायण की आवाज में।

खूबसूरत गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साल 1988 भारतीय सिनेमा में एक नया मोड़ आया। फिल्म आई थी कयामत से कयामत, और इस फिल्म के साथ आमिर खान और जूही चावला के साथ साथ

दो नए सितारे चमके, आनंद मिलिंद का संगीत और उदित नारायण की मखमली आवाज। इन्होंने इस फिल्म के सारे गीत गाए और पापा कहते हैं के लिए इन्हें अपना पहला फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। इसके बाद तो जैसे 90 का पूरा दशक उदित नारायण की आवाज का दीवाना हो गया। चाहे शाहरुख खान का रोमांस हो, आमिर खान की मासूमियत या फिर सलमान खान का चुलबुलापन, हर सुपरस्टार की ऑन स्क्रीन आवाज बन गए उदित नारायण।

के साथ। दोस्तों, उदित नारायण की गायकी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? उनकी वो निष्कपट मुस्कान। जब वे गाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हर शब्द मुस्कुरा रहा हो। अब बात करते हैं उनके व्यक्तिगत जीवन और परिवार की। उदित नारायण का विवाह दीपा नारायण से हुआ, जो खुद भी एक बहुत बेहतरीन गायिका हैं, और उनके बेटे आदित्य नारायण को तो आप सब जानते ही हैं। आदित्य ने बचपन में ही फिल्म अकेले हम अकेले तुम में अपने पिता के साथ गाना गाया था, और आज वे खुद एक स्थापित गायक और टेलीविजन होस्ट हैं। चलिए सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

आप सुन रहे थे गीत उदित नारायण और आदित्य नारायण की आवाजों में। दोस्तों, उदित नारायण की बहुमुखी प्रतिभा का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि भारत और विदेश की कई भाषाओं में अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। उन्होंने नेपाली, मैथिली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, बंगाली, गुजराती और उड़िया जैसी 34 से अधिक भाषाओं में 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए हैं। उनके नाम एक ही दिन में कई भाषा में गाने रिकॉर्ड करने का भी रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी आवाज हर भाषा और हर संस्कृति में उतनी ही मिठास के साथ घुल जाती है।

दोस्तों, जब प्रतिभा इतनी विशाल हो तो पुरस्कार और सम्मान खुद ब खुद कदम चूमते हैं। उदित नारायण के का नाम कई ऐसे कीर्तिमान हैं जो उन्हें भारतीय संगीत जगत का अनमोल रत्न बनाते हैं। भारत सरकार ने उन्हें 2009 में पद्मश्री और 2016 में माफ कीजिएगा 2016 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड्स, उन्हें 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं, मितवा, जाने क्यों लोग, छोटे छोटे सपने और ये तारा वो तारा। 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स इन्होंने अपने नाम किए। वे एकमात्र ऐसे मेल प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने लगातार 3 दशकों यानी 80, 90 और 2000 में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है।

उदित नारायण सिर्फ एक गायक नहीं हैं, वे हमारी यादों का, हमारी पहली मोहब्बत का और भारतीय संगीत के स्वर्णिम इतिहास का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा हैं। 2000 के दशक में भी तेरे नाम, वीर ज़ारा और गदर जैसी फिल्मों से उदित नारायण ने साबित कर दिया कि असली सुर कभी पुराने नहीं होते। आज के दौर में भी जब उनका गाना मैं निकला गड्डी लेके दोबारा रिक्रिएट होता है तो पूरी पीढ़ी झूम उठती है। उनकी सादगी, उनकी प्यारी मुस्कान और उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में गूंजती रहेगी। समय पंख लगाकर उड़ता है दोस्तों, और ये सफर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। आज के शो सुरों का सफरनामा में बस इतना ही। मैं कीर्ति अब आपसे इजाजत लेती हूँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए हमारे अन्य कार्यक्रम AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। जाते जाते

0: इसी गीत के साथ सुरों का सफरनामा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। ये आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात्रि के 1 बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: अभी तो मरने वाला।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा है कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है। और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका मजबूत करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है और 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था करीब 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की दूसरी बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। आगरा के फतेहाबाद से बीजेपी विधायक छोटे लाल वर्मा का कल नोएडा के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बताया जा रहा है कि वे पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित थे। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में सुधार नहीं होने पर परिवार उन्हें आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जा रहा था। रास्ते में उनकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें नोएडा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे लाल वर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटे लाल वर्मा का निधन बेहद दुखद है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिवार को ये दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की। तंजानिया से कांगो जा रही एक नाव कल टांगानिका झील में उलट गई। हादसे में करीब 41 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों के अनुसार नाव में लगभग 100 लोग और सामान लदा हुआ था। 49 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश जारी है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। मध्य रात्रि के 1:10 कार्यक्रम गीत सुनहरे लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति।

और इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलते हैं कुछ पुरानी यादों में और उन दशक पे जहाँ ये गीत आज भी आपके दिल में बसे हुए हैं, और इन गीतों के माध्यम से उन यादों को हम ताज़ा करते हैं। तो चलिए सुनवाते हैं ये पहला गीत।

अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म प्यासा सावन से लता मंगेशकर की आवाज़ थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आशीर्वाद से, मन्ना डे की आवाज़ है और संगीत वसंत देसाई ने दिया था।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत फिल्म आवारा से मुकेश की आवाज में। गीत के बोल शैलेंद्र के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का।

और अब सुनते हैं सुरैया व मोहम्मद रफ़ी की जुगलबंदी फिल्म दास्तां से, ये गीत शकील बदायूं के लिखे बोल और संगीत नौशाद का।

लता मंगेशकर व अन्य साथियों की आवाज़ों में फिल्म मुगले आजम से आपने सुना था ये गीत। अब आइए आनंद लेते हैं किशोर कुमार की आवाज़ का फिल्म अजनबी से, आनंद बख्शी की लिखी बोल और संगीत आर डी बर्मन का।

अगला गीत फिल्म हीरा पन्ना से गीत सुनहरे कार्यक्रम में आपके लिए आ रहा है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, संगीत आर डी बर्मन ने दिया था। आइए सुनते हैं पन्ना की तमन्ना।

और अब कार्यक्रम अंत की ओर। जी हाँ, तो अब समय है इस कार्यक्रम के आखिरी गीत का, और वो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म है वो कौन थी, राजा मेहदी अली खान के लिखे बोल, संगीत मदन मोहन ने दिया था, लता मंगेशकर की आवाज में। आइए सुनते हैं लग जा गले।

0: इसी गीत के साथ अब गीत सुनहरे कार्यक्रम यही संपन्न होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल रात्रि के 2 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं

0: देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि एक अच्छी सुरक्षा नीति के लिए जमीनी हकीकत और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखना आवश्यक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों का सामना करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान एंटीगुआ और बर्बुडा के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण और जलवायु परिवर्तन सहयोग के क्षेत्र में प्रगति जारी है। भारत ने इसराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए 2 राष्ट्र समाधान का समर्थन दोहराया है। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग 2 राष्ट्र समाधान लागू करने के लिए वैश्विक गठबंधन की उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने फ्रांस की अध्यक्षता में हुई G7 विकास मंत्रियों की 2री बैठक में भाग लिया। इससे पहले श्री जॉर्ज ने घाना, जर्मनी और फ्रांस द्वारा आयोजित क्षतिपूर्ति न्याय संबंधी उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। श्री जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा है कि भारत का नदियों के साथ संबंध हजारों वर्ष पुराना है। देश के शहर सभ्यताएं, साहित्य, संगीत, कला और परंपराएं नदियों से गहराई से जुड़ी रही हैं। श्री संधू ने कल नई दिल्ली में 7वीं नदी उत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। नदी उत्सव के तहत 6 प्रदर्शनियां इस महीने की 30 तारीख तक हर रोज सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शकों के लिए खुली रहेंगी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4था उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू होगा। इस 5 दिन के आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये व्यापार मेला 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। भारत पहली बार UCI रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। वर्ष 2032 में होने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए पुणे को मेजबान शहर चुना गया है। यह फैसला महाराष्ट्र और पूरे देश की खेल महत्वाकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी से अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग मानचित्र पर पुणे की पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है। तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.

बाघ को जन्म देने वाला बागवान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

0: इसी के साथ गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए हमारे साथ यार लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा भावना देश की प्रगति की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। उन्होंने कहा है कि सरकार की अभिनव योजनाओं ने 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला है। श्री मोदी ने वडनगर से वाराणसी तक की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल संवाद के दौरान ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि पीएम किसान योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी अनगिनत योजनाएं देश के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना के फलस्वरूप ही 4 करोड़ गरीब लोगों को स्थायी घर मिल सके हैं। श्री मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बताई।
2: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी। और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत

0: को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना बहुत जरूरी है और इसमें सेवा संकल्प यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली।
1: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज चौथा उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो शुरू होगा। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित ये ट्रेड शो 29 सितंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों के सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आरोग्य मंथन 2026 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि आरोग्य मंथन में देश के डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए कई पहलों का शुभारंभ भी किया जाएगा। इनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रजिस्ट्री, मोबाइल ऐप और अन्य शामिल हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में स्कूलों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के प्रतिभागी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस पहल से युवाओं को अपने समुदायों में मौजूद समस्याओं की पहचान करने का अवसर मिलेगा। इसमें 5 राष्ट्रीय विषय स्वच्छ और सतत भारत, समृद्ध किसान, समृद्ध भारत, स्वस्थ और समावेशी भारत, शिक्षित और कुशल भारत तथा सुरक्षित भारत शामिल होंगे। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। पुणे नगर निगम ने पर्यावरण अनुकूल विसर्जन के लिए 35 घाट, 69 कृत्रिम कुंड और 648 लोहे के कुंड तैयार किए हैं। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने तथा शांतिपूर्ण और व्यवस्थित विसर्जन में सहयोग करने की अपील की है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि 2000 रुपए से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी को किए जाने वाले UPI लेनदेन पर लगने वाला व्यापारी छूट दर यानी MDR कोई उपकर या अधिकार नहीं है। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिणी ओडिशा में बने गहरे कम दबाव के प्रभाव से ओडिशा के कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा जारी है। अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में
2: संभावना है।
1: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष पी एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi has said the spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
0: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उन सब विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
3: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchandise

जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। समय हुआ है 3:10। आइए सुनते हैं अब कार्यक्रम गजल गीत। कार्यक्रम गजल गीत में सबसे पहले हम आपको सुनाने जा रहे हैं जगजीत सिंह के स्वर में एक बहुत ही खूबसूरत गजल।

EIR लाइव न्यूज 24x7 पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजल गीत, और अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गजल। कलाकार हैं पंडित अनूप जलोटा और निहारिका सिन्हा। गीत रचना है यानी कि गजल रचना मिर्जा गालिब की, और संगीत बद्ध किया है निहारिका सिन्हा ने।

0: गीत गजल कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ चेतन शर्मा। और एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं एक और ही बहुत खूबसूरत गजल। गुलकार हैं गुलजार साहब और कलाकार हैं भूपेन हजारिका।
1: मैंने भूपेंदा के गीतों का अच्छा अनुवाद नहीं किया, मैं जानता हूं, या वो जानते होंगे जिन्होंने ओरिजिनल असमिया सुना है। मैंने कोशिश की थी इसलिए कि अनुवाद मुमकिन नहीं है। किसी भी इलाके की शायरी का तर्जुमा तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन मैंने सिर्फ इतना किया है कि सुनने वालों को उकसाऊं कि वो इस शायर को, इस गायक को, इस संगीतकार को ढूंढें, तलाश करें और सुनें।

0: और इसी के साथ ही आज का गजल गीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। समय हुआ है 4:18।
1: नमस्कार, लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बी विजय श्री का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले सुनिए त्यागराज स्वामी की ये भक्ति रचना दशरथा नंदना।

और ये है आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, तुंगितीरा विराजम। ये रचना है कमलेश विठ्ठल दास की।

0: और इसी के साथ अब आज का अर्चना कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अनाघा एम नाम्बीसन का गायन। आपके संगत कलाकार हैं वायलिन पर जी उमा, मृदंगम पर हैं मनोहर बलत चंदीराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

0: कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे अनाघा एम नाम बीसन का गायन। वायलिन पर आपकी संगति की थी वी उमा ने। वंदे मातरम।
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयजशीतलां

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के अश्विन मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 25 सितंबर 2026। सुबह के 4:53 और 52 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

श्रोताओं आइए सुनते हैं अब प्रमुख प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय रहेगा अर्ध मत्स्येन्द्रासन। 5:20 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आप सुनेंगे सौरभ बनाऊधा का बांसुरी वादन, राग होगा नटभैरव।

सुबह 6:40 पर चिंतन कार्यक्रम का विषय रहेगा सफलता का दर्शन। संगीतिका कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 7:10, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे स्वाति मिश्रा का ये भजन।

0: गीतों भरी गुड मॉर्निंग हिंदी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:30 पर। 8:45 का समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे चंद्रनाथ भट्टाचार्य का सितार वादन। राग होगा मियां की तोड़ी। सुबह 9:15 पर आज आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा, जिसमें वार्ता का विषय रहेगा स्वच्छता के महत्व पर गांधी जी के विचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर कृष्णा मणि पाठक। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का समय रहेगा 9:30 और सुबह 10:10 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत, फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद। सबरस कार्यक्रम का समय रहेगा 11:10 और 11:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। अभी आप कार्यक्रम संबंधी सूचनाएं सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 5 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आज 4वीं उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी शुरू होगी। 5 दिन के इस आयोजन का उद्घाटन गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। बेहतरीन खरीदारी की शुरुआत यहीं से थीम पर आयोजित यह प्रदर्शनी 29 सितम्बर तक चलेगी। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उद्यमियों, निर्माताओं और निर्यातकों को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ना है। इस आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शक, करीब 1.5 लाख बिजनेस खरीदारों और 4.5 लाख से अधिक आम दर्शकों के शामिल होने की उम्मीद है। 85 देशों से 550 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खरीदार भी इसमें हिस्सा लेंगे। इस बार ऑस्ट्रिया, जापान, सिंगापुर, बेलारूस और वियतनाम साझेदार देश हैं। करीब 300 महिला प्रतिनिधि भी इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेंगी। आयोजन के दौरान चर्चा सत्र, फैशन शो और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आरोग्य मंथन 2026 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सुरक्षा और डिजिटल स्वास्थ्य के प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विषयों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी सम्मानित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी आज बेंगलुरु में सेवा प्रथम नवाचार चुनौती कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के युवा प्रतिभागी शामिल होंगे। प्रतियोगिता का राष्ट्रीय फाइनल दिसंबर में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भारत वैश्विक मूल्य और आपूर्ति श्रृंखला में अपनी भूमिका सुदृढ़ करने के प्रयास कर रहा है। नई दिल्ली में 13वें PAFI वार्षिक फोरम 2026 में उन्होंने कहा कि भारत आज $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है और $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

0: श्री गोयल ने कहा कि क्रय शक्ति के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है और इस आधार पर भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने समावेशी विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि भारत समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग के साथ साथ बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास के अधिकार पर समझौते को जल्द से जल्द अपनाने की वकालत की। श्री जॉर्ज ने सत्र को संबोधित करते हुए विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को लेकर भारत का रुख स्पष्ट किया। ये सत्र विकास के अधिकार संबंधी घोषणा की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। इटली की सरकार ने स्कूलों में बुर्का और नकाब पहनने पर रोक लगाने को स्वीकृति दे दी है। सरकार ने यह भी तय किया है कि किसी एक कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 30% से अधिक नहीं होगी जिन्हें इतालवी भाषा का बहुत कम ज्ञान है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि नियमों का उद्देश्य बच्चों को समाज में बेहतर तरीके से जोड़ना है। हालांकि विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। जापान एशियाई खेलों के सातवें दिन आज भारतीय खिलाड़ी कई स्पर्धाओं में पदक के दमखम आजमाएंगे। कबड्डी के सेमीफाइनल मुकाबलों में आज भारतीय पुरुष टीम का सामना थाईलैंड और महिला टीम का नेपाल से होगा। भारत के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने कल अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने कल 5 पदक जीते। पुणे में गणेश उत्सव के समापन पर आज गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके मद्देनजर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे और तेलंगाना में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said, whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
2: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
1: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The PM said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. Government sources has emphasized that merchant discount rate, MDR, on person-to-merchant UPI transaction above 2,000 rupees is not a cess or surcharge. Sources said not a single rupee of MDR goes to the government. They said that MDR stays within the payment ecosystem and around 96% of all UPI merchant transactions remain unaffected. Union Minister for Health and Family Welfare J.P. Nadda will commemorate 8 years of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and 5 years of the Ayushman Bharat Digital Mission at Arogya Manthan 2026 in New Delhi today. The program will feature a series of thematic deliberations focusing on key aspects of health assurance and digital health. The Ministry of Health and Family Welfare has said Arogya Manthan 2026 will also witness the launch of a number of initiatives aimed at further strengthening India's digital health and health assurance ecosystem. Education Minister Pralhad Joshi will inaugurate the Seva First Innovation Challenge in Bengaluru today. The Education Ministry said the initiative will encourage young people to identify problems

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। समय हुआ है 5:10 और 18 सेकंड। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें, जिसमें आज का विषय है अर्ध मत्स्येन्द्रासन।

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गूढ़ता पूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही

0: स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे। अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्धमत्स्येन्द्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्धमत्स्येन्द्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्धमत्स्येन्द्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है, मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्धमत्स्येन्द्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्धमत्स्येन्द्रासन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भावस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्धमत्स्येन्द्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें, योगा फॉर वेलनेस, जिसमें आज का विषय था योग अर्ध मत्स्येन्द्रासन।
2: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। The best of entertainment, information, education, अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी, रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज़ ऑन एयर ऐप।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

जी, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं सौरभ बनाउधा का बांसुरी वादन, राग है नट भैरव।